एफएम बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 की आश्विन माह की 23वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 15 अक्टूबर सन 2026। श्रोता, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सादर वंदे, सुप्रभात।

ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप

का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। अब से कुछ ही पलों में होंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर एक सभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री लेह स्थित कोशुक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दाह हनु खालसी ट्रांसमिशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोगिल्फ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के अंतर्गत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की भी घोषणा की। श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रुपए और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रुपए होगी।
2: दिव्यांगजनों के लिए जो पहले 80% थ्रेशोल्ड था डिसेबिलिटी पेंशन में एलिजिबिलिटी के लिए, उसको आधा करके 40% पर भी अब दिव्यांग पेंशन दिया जाएगा। पहले दिव्यांग पेंशन 18 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही दिया जाता था, अब जन्म से ही दिव्यांगजन को पेंशन में कवर किया जाएगा। 27 लाख दिव्यांगजन लाभार्थी होंगे। टोटल लाभार्थियों की संख्या बढ़ के करीब 3,20,00,000 हो जाएगी।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते SIOFA में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद लिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि समिति किसानों के प्रतिनिधियों, चीनी मिल संघों, राज्य सरकारों और अन्य विशेषज्ञों सहित सभी संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेगी। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1,370 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 AI और रोबोटिक्स लैब, 1,500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरुआत की। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहे और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित

0: न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अभी भी निलंबित है, वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी हैं। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज के 248 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत 19 ओवर और 3 गेंद में 9 विकेट पर 223 रन ही बना सका। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने मात्र 50 गेंदों में 102 रन बनाए, उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल में भारत चौथे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमिर चैनल है। लीजिए अब सुनिए चिंतन, विषय है छवि। छवि सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी। यह व्यक्ति के अपने संस्कार करता है। जो मनुष्य बेहतर काम करते हैं वे हमेशा याद किए जाते हैं। छवि धीरे धीरे बनती है, अपने कर्मों से बनती है। हम समाज में ऐसे अनेक लोगों को देखते हैं जो अपनी दिनचर्या में से समय निकालकर ऐसे परमार्थ के काम करते हैं जिसे साधारण लोग सोच भी नहीं सकते। ये लोग जब लीक से हटकर काम करते हैं तो इनकी समाज में विशिष्ट छवि बनती है और आदर के पात्र बन जाते हैं। हमने देखा है कि कुछ लोग घायल पशु पक्षी, बीमार बुजुर्ग, बेसहारा लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। यह उनकी उत्कृष्ट छवि को समाज में प्रस्तुत करता है। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए रचा जाता है। व्यवसाय हो, राजनीति हो, साहित्य हो, पत्रकारिता हो या जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र हो, छवि उसी व्यक्ति या संस्था की बनेगी जिसका जीवन सुचितापूर्ण होगा। इनका जीवन लोक कल्याण के लिए ही रचा जाता है। जिसके जीवन में करुणा की भावना होगी, जिसके जीवन में त्याग होगा, दान की भावना होगी, जो दान पुण्य करता रहेगा, जिसके मन में लूट का भाव ना हो, वही इंसान अपनी अच्छी छवि बना पाता है। इस्लाम में ज़कात का निर्देश है, हमें अपने लाभ का 10% परमार्थ में लगाना चाहिए। हम जब अकेले में होते हैं, अपने आप को साक्षी भाव से देखते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आत्मा हमें सराहती है तो हमारा जीवन पुण्य से भर जाता है और जो पुण्य करता है लोक छवि उसी की बनती है। हमारा जीवन सूरज की तरह होना चाहिए। सूरज इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन उसे देखता है या नहीं देखता। वह आता है अंधेरे के खिलाफ एक सार्थक हस्तक्षेप करके शाम को अस्त हो जाता है। हमारा जीवन भी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पसरे अंधेरे को दूर करने वाला होना चाहिए। अगर लोग ऐसा करते रहेंगे उनकी सुंदर लोक छवि अपने आप बनती रहेगी। आज सूर्य की प्रथम किरण के साथ हम ये संकल्प लेते हैं, ऐसी छवि बनाएंगे, करे जगत कल्याण, जब देखें दर्पण कभी हो खुद पर अभिमान।

श्रोता अभी आप सुन रहे थे चिंतन, विषय था छवि। यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अमीर चैनल है। लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम वंदना।

वरना सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए पहला भजन आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानसगान का आज का प्रसंग।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। अब से थोड़ी ही देर में 6:45 पर आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात। आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:50 पर। लोक संगीत के अंतर्गत आज आपको सुनवा रही है सुरेश पंड्या और साथी कलाकारों के गाए गरबा गीत।

सवेरे 7:20 पर आप सुन सकते हैं वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे डॉक्टर राजेश जोशी से वार्ता। वार्ता का विषय है वागड़ के तीर्थ।

दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से का प्रसारण समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। आज का हमारा विषय है नवरात्र। सवेरे 9:30 पर आप सुन सकते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10:00। शाम 5:05 पर आप सुन सकते हैं हमारे युवा श्रोताओं का अपना कार्यक्रम युवाणी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण समय रहेगा शाम 7 बजे।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।
1: खेती ने बात कार्यक्रम हमारा बाबा सब बहन ने बहनों ने सौराथी की रीता बहन राम राम राम राम। भाइयों बहनों, अपने सब कृषक हो, खेती बाड़ी हाथे हाथे पशुपालन भी कार्य करो, क्योंकि पशुपालन ने खेती एक बीजा थे के जुड़ेलो व्यवसाय है। खेती थी पशुपालन में फायदो है, ने पशुपालन थी की खेती में भी अपने फायदो है। आहार है अच्छो रहो जो है, संतुलित रहो जो है। तो आज अपने सौरा ऊपर पशु आहार ने बारे में चर्चा करो। पशु आहार मतलब ई भोजन रहे जे हमें जानवर ने आलो, ने इन्हें सेहत बल्ले ने अच्छी पैदावार बल्ले आलो, ताकि जे पशु है ई भी स्वस्थ रहे, ने इन्हें जे अंबा वाली जे नस्ल है ई भी स्वस्थ रहे अच्छी रहे। तो पशु आहार में सबसे पहले अपने ध्यान रखो है कि इन्हें मुख्य आहार है चारो। चारा में हरी घास, सूखो पत्तो, जो हरा पौधो आदि शामिल है, क्योंकि चारा में फाइबर की मात्रा खूब ज्यादा रहे। फाइबर खावा थी पशुओं ने जो पाचन क्रिया है ये खूब अच्छी थी जा, अटले एने दैनिक आहार में चारा शामिल करवो खूब जरूरी है। बीजू पशुओं ने आहार में रूप में दाना अलवजो है, क्योंकि दाना में अच्छी पौष्टिकता रहे, प्रोटीन रहे, प्रोटीन थी की इन्हने जो मसल्स है ये अच्छा रहे, इनमें दूध है ये अच्छा बढ़े, इन्हें स्वास्थ्य वाले खूब आवश्यक है। दाना में ही है मक्का ना दाना, जो चना या फिर बाजरा ना दाना भी अपने आली सको, इनकी पशुओं में एनर्जी बनी ली रहे, प्रोटीन एनन अच्छो इनकी प्राप्त था, दूध आलाने क्षमता भी बढ़ी जा, पशुओं जो वजन है ये भी सही रहे, अटले आहार में दाना ना शामिल करवो खूब जरूरी है। इन अलावा पशु आहार में खलियाल भी जो है, बिनोला है, सरसों की खली है, आ भी प्रोटीन ने एक अच्छो स्त्रोत है। इन अलावा बीजू सप्लीमेंट्स भी आलिश्यक है, जिनकी पूरक आहार रहे, जिनमें विटामिन है, खनिजों का मिश्रण है, इनकी जो जानवर ने मिनरल्स की जो कमी है ये पूरी था। तो इन अलावा अपने पशु आहार में सूखा गोला नारियल है ये भी आलिश्यक हो। इन हाथे हाथे पशु आहार में जे भी अपने इन्हें वाटो आला तो इनमें एक मुठ्ठी नमक भी मिला दे है, जिनकी की पशुओं में है कैल्शियम की कमी है ये भी पूरी था। कैल्शियम ने पूर्ति बल्ले बाजार में जे कैल्शियम ने बोतल मले या पाउच मले ई भी पशु आहार में शामिल करो, तो इन्होंने जे हड्डी है इन्होंने कमजोरी है ई भी दूर था, इन्हें हड्डी है मजबूत थाएगा। पशु बल्ले संतुलित आहार अटली जरूरी है, क्योंकि इन थी इन्होंने दूध उत्पादन बढ़े, ने जे दूध रहे इन्हें गुणवत्ता भी अच्छी था, मतलब दूध में वसा ने मात्रा है ये भी अच्छी थी जा। बीजू अच्छो पशु आहार होगा, संतुलित आहार होगा तो जानवर ने बीमारी थी की बचावे, ने पशुओं में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इन्हें भी बढ़ावे, अट्ले संतुलित पशु आहार आलो खूब जरूरी है। अने थी इन्हें प्रजनन क्षमता भी बेहतर थी जा, पशुओं जो वृद्धि है विकास है ये भी अच्छा था, अटले से युवा पशु है बछड़ा है इन्होंने भी अच्छा आहार आलो जो है, ताकि इन्होंने वृद्धि अच्छी था। इन अलावा जो गर्भवती है इन्होंने आहार भी अच्छा जो है, इनसे भी बच्चे थे हो इन्होंने पशुओं ने भी संतुलित मात्रा में आहार आलूंगा तो बच्चों भी स्वस्थ रहेगा ने माँ भी स्वस्थ रहेगा। तो पशु आहार में अपने आने बातों का ध्यान रखो है, जिनकी की पशुओं ने स्वास्थ्य अच्छो रहे, इन्होंने विकास अच्छो रहे, ने इन्होंने शरीर में जो भी पोषक तत्व की कमी हो ये पूरी था एवं

0: संतुलित आहार आलंगा तो पशु अच्छा रहेगा। इन हथियाती पशुओं में नियमित टीकाकरण ध्यान रखा जो जिंदगी अपने पशु घनी प्रकार की बीमारी थी बची सके। एट अपने पशु राखा तो पशुओं स्वास्थ्य न भी पूरु ध्यान रखू भी अपनी जिम्मेदारी है। सरा पर अपने आना बारा में आज बात करी थी पर सरा समय आज पूरा थी गये तो आस्ते रीताबेन ने आज्ञा आलो। राम राम राम राम।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे किसान भाइयों ने सुना पशुओं के आहार के विषय में सामान्य जानकारी। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे सुरेश पंड्या और साथी कलाकारों के गाए गरबा गीत।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत सुरेश पंड्या और साथी कलाकारों के गाए गरबा गीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।

0: ही आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर, 7:20 और वक्त हो चला है वातायन का। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे डॉ राजेश जोशी से वार्ता। वार्ता का विषय है वागड़ के तीर्थ मां त्रिपुरा सुंदरी।
1: राजस्थान के बांसवाड़ा जिले का ऐतिहासिक भगवती त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी उनमें से एक है। बांसवाड़ा से 20 किलोमीटर दूर तलवाड़ा के निकट उमराई गांव के पास वन्य क्षेत्र में स्थित यह देवी तीर्थ आज बांसवाड़ा जिले की पहचान बन चुका है। श्री त्रिपुरा सुंदरी का यह मंदिर कितना प्राचीन है इस संबंध में कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है, परंतु वर्तमान में मंदिर के उत्तरी भाग में सम्राट कनिष्क के समय का एक शिवलिंग होने की मान्यता है। अतः लोगों का विश्वास है कि यह स्थान कनिष्क के पूर्व काल से ही प्रतिष्ठित रहा होगा। कुछ विद्वान 3री शताब्दी के पूर्व से इसका अस्तित्व मानते हैं, क्योंकि पहले यहाँ गढ़पौली नामक ऐतिहासिक नगर था। गढ़पौली शब्द का एक अर्थ है दुर्गापुर। इस समय यहाँ उमराई नामक गांव है। शिलालेखों के अनुसार श्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर का जीर्णोद्धार लगभग 900 वर्ष पूर्व विक्रम संवत 1157 तदनुसार ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में पाताभाई चांदाभाई नामक लुहार ने कराया था। देवी मंदिर के पास भागी खान नामक स्थान है, जहां किसी समय लोहे की खदान थी। स्थानीय लुहारों द्वारा लोहा निकालने की यह बात विक्रम संवत 1102 अर्थात 1045 ईस्वी के आसपास की है। जनश्रुति के अनुसार देवी प्रकोप से एक बार वह खदान धस गई और अनेक लोग उसमें दबकर मर गए। यह फटी हुई खदान आज भी मंदिर के पास दिखाई देती है। देवी प्रसन्नार्थ पाताभाई नामक लुहार ने वहां स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और एक तालाब बनवाया, जिसे आज पातेला कहा जाता है। वर्तमान मंदिर का जीर्णोद्धार सर्वप्रथम 12वीं शताब्दी में होने के कुछ उल्लेख मिलते हैं। 16वीं शताब्दी में पुनः इस देवालय का जीर्णोद्धार कराया गया। 1873 ईस्वी में मंदिर प्रतिष्ठा समारोह हुआ। 20वीं शताब्दी में पुनः लुहार समाज के सौजन्य से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। शास्त्रों में त्रिपुरोपासना गोपनीय विद्या के रूप में वर्णित है, अतः स्थानीय देवी तीर्थ के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। परंतु बांसवाड़ा विधायक स्वर्गीय हरिदेव जोशी के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां आते जाते रहने के कारण यह देवी स्थान प्रकाश में आ गया। मंदिर को वर्तमान भव्य स्वरूप देने का कार्य 1977 ईस्वी में किया गया। इससे पूर्व यह देवी तीर्थ सामान्य झोपड़ीनुमा मंदिर के रूप में उमराई के बीहड़ वन्य प्रदेश में अवस्थित था, जिसके दीर्घकालिक संरक्षण में स्थानीय आदिवासी समाज की सहभागिता को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता। वर्तमान मंदिर में मुख्य द्वार और उसका परिकर चांदी से निर्मित है। गर्भगृह में काले पत्थर पर परम्बा की 18 भुजाओं वाली भव्य प्रतिमा प्रतिष्ठित है। सिंहवाहिनी राजराजेश्वरी त्रिपुरा की 18 भुजाओं में दिव्य आयुध है। भगवती की प्रतिमा के पृष्ठ भाग के प्रभा मंडल में 9 छोटी-छोटी देवी मूर्तियां हैं, जो सायुध स्ववाहनों पर आसीन है। मध्य में षोडशी त्रिपुरा और चारों ओर 9 देवियों का यह प्रभा मंडल तंत्र शास्त्रीय 10 महाविद्याओं से संबद्ध प्रतीत होता है। माँ के पृष्ठ भाग में 52 भैरवों और 64 योगिनियों की बहुत ही सुंदर मूर्तियां अंकित हैं। मूर्ति के नीचे पेड़ी पर श्रीचक्र अंकित है, जो त्रिपुरोपासना के बाह्य तथा अंतः पूजा का प्रतीक यंत्र है। श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया त्रिपुरा सुंदरी की अनन्य उपासक हैं और उनके राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनने के बाद इस शक्तिपीठ का कायाकल्प हुआ है। लौड़ी काशी बांसवाड़ा ही नहीं, संपूर्ण प्रदेश में शक्ति की भक्ति का एक नया दौर प्रारंभ हुआ है। मुख्यमंत्री ने त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ को पर्यटन के मानचित्र पर उभारने के लिए सौंदर्यीकरण की पहल की है। वर्तमान में मंदिर परिसर के भौतिक उन्नयन का कार्य प्रगति पर है और निश्चित ही आने वाले दिनों में यह क्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष में शाक्तवाद का परचम लहराएगा। सार्वभौमिक माँ के रूप में श्री त्रिपुरा सुंदरी की उपासना से मनुष्य के अभ्युदय और निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त होगा। त्रिपुरा मतोपासना वैदिक काल के समकक्ष मानी जाती है और संपूर्ण भारत में इसका प्रसार था। आद्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य की दिग्विजय के अनंतर संपूर्ण भारतवर्ष में शाक्तवाद की जो लहर उठी, उसी के परिणाम स्वरूप परम्बा शक्ति का महत्व बढ़ा। इसका स्पष्ट प्रमाण आद्य शंकराचार्य प्रवर्तित विभिन्न मठों में आज भी उसी परंपरा से त्रिपुर सुंदरी की श्रीचक्र के रूप में उपासना होना है। आद्य शंकराचार्य के गुहा प्रवेश करने के बाद शक्ति उपासना का अधिक प्रसार हुआ और इसी क्रम में

स्थानीय शक्तिपीठ भी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से प्रख्यात हुआ। वैदिक पंथ का अनुसरण करने वाले ब्राह्मणों के कारण लघु काशी कहे जाने वाले संपूर्ण वागड़ में यह देवी तीर्थ तरतई माता के नाम से जाना जाता है। वागड़ी के अनेक शब्द संस्कृत के मूल शब्दों के रूप में सुरक्षित हैं। तरतई शब्द त्रितई का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है त्रित्व, तीन से युक्त। सर्वम त्रयम त्रयम यस्मात् तस्मात् तु त्रिपुरा मता, अर्थात जिसमें सब कुछ तीन तीन की संख्या में विद्यमान हो, यथा वेदत्रयी, गुणत्रय, देवत्रय, तीन कूट, इच्छा, ज्ञान, क्रिया, तीन शक्तियां, कालत्रय आदि, वे ही भगवती त्रिपुरा हैं। लघुस्तव के चतुर्थ पटल के एक श्लोक में कहा गया है, देवानां त्रितयं त्रयी हुत भुजां।

अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश यह तीन देव अग्नि सूर्य चंद्र ये तीनों तेज मंत्र उत्साह और प्रभुता अथवा महाकाली महालक्ष्मी और महासरस्वती यह तीनों शक्तियां उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीन स्वर स्वर्ग मृत्यु और पाताल तीन लोक जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीन पद सुवर्ण रजत आदि तीन पुष्कर ऋक यजु साम तीन वेद अउम तीन वर्ण धर्म अर्थ काम तीन पुरुषार्थ आदि जहाँ भी तीन रूपों का समन्वित रूप हो वह सभी त्रिपुरा के नाम से अन्वित हो जाता है। त्रिपुरा सुंदरी की उपासना योग का उच्चतम स्वरूप है। यह साधना विशुद्ध आध्यात्मिक प्रेम और गंभीर एवं रहस्यात्मक परज्ञान का मूर्तिमान रूप है। शाक्त ग्रंथों में श्री महात्रिपुर सुंदरी को जगत का बीज और परम शिव का दर्पण कहा गया है। शास्त्रों में कहीं त्रिपुर सुंदरी तो कहीं त्रिपुरा सुंदरी शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु तत्वतः इनमें कोई अंतर नहीं है। त्रिपुरा शब्द तीन पुरों की शासिका की आख्या है और षोडशी के रूप में सौंदर्य की पराकाष्ठा ही भगवती आद्याशक्ति को त्रिपुरा सुंदरी के नाम से विभूषित करती है। त्रिपुरा शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। शक्ति महिम्न स्तोत्र में त्रिपुरा का अर्थ बताते हुए कहा गया है, तिसृभ्यो मूर्तिभ्यः पुरातनत्वात् त्रिपुरा, अर्थात जो ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों से भी पुरातन हो वही त्रिपुरा है। मन बुद्धि और चित्त रूपी तीन पुरों में निवास करने वाली शक्ति ही त्रिपुरा है। मनोबुद्धि तथा चित्तम पूरत्रयम् उदाह्यतम्। तात्विक दृष्टि से त्रिपुर अर्थात जागृत स्वप्न सुषुप्ति के स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर रूप तीन पुरों की जो साक्षिणी है वह निर्विशेषा नियति ही त्रिपुरा सुंदरी है। अनंत ब्रह्मांड जननी करुणामयी श्री राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की आराधना सभी के लिए कल्याणकारी है। मोक्ष और भोग यह दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, परंतु त्रिपुरा सुंदरी के उपासकों को यह दोनों सुलभ हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुराम्बा सेवकों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। लघुस्तव में कहा गया है यत्

ललिता राजराजेश्वरी षोडशी श्री विद्यादि नाम भगवती त्रिपुरा सुंदरी के ही हैं। 51 शक्तिपीठों में त्रिपुर सुंदरी का आविर्भाव एक कथानक से जुड़ा हुआ है। दक्ष की यज्ञाग्नि में दग्धा सती के पार्थिव शरीर को उन्मत्त शिव यहाँ वहाँ आकाश में लेकर भटक रहे थे। विष्णु ने बाण चलाकर उसके अनेक टुकड़े कर दिए। सती के शरीरांग जिन स्थानों पर गिरे वे स्थान कालांतर में शक्तिपीठ हुए। सती का दाया पैर जहाँ गिरा वह स्थान त्रिपुरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान त्रिपुरा राज्य के राधा किशोरपुर गांव के पास पहाड़ी पर स्थित है। त्रिपुरा की आनुषंगिक पीठ के रूप में बांसवाड़ा का त्रिपुरा सुंदरी मंदिर चमत्कारिक प्रख्यात देवी तीर्थ है। त्रिपुरा रहस्य आदि ग्रंथों में त्रिपुर सुंदरी की कथा उल्लिखित है। तदनुसार एक बार भंडासुर के उत्पात से जब जगत संतृष्ट हो गया तब देवताओं के आग्रह पर भगवती आद्याशक्ति त्रिपुरा सुंदरी के रूप में प्रकट हुई।

0: समस्त आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने आए भंड दैत्य के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में कामेश्वरास्त्र से भगवती त्रिपुरेश्वरी ने उसे भस्म कर दिया। भगवान शिव, दत्तात्रेय, परशुराम, दुर्वासा, गौड़पादाचार्य और श्री शंकराचार्य प्रभृति शाक्त उपासकों द्वारा प्रारंभ की गई त्रिपुरोपासना समस्त साधनाओं का मूलभूत है। यह साधना पूर्णतः वैज्ञानिक और अद्वैत दर्शन पर आधारित है। भगवती त्रिपुरा की उपासना श्री चक्र पर की जाती है। श्री चक्रम शिवयोर्वपुः, यह श्री चक्र शिव और शक्ति दोनों का शरीर है। भौतिक यंत्रों के समान यह श्री चक्र भी अध्यात्म विज्ञान के विद्वानों की आध्यात्मिक खोज का फल है। त्रिपुरा सुंदरी की बाह्य पूजा श्री चक्र पर और अंत पूजा देह में ही श्री चक्र की भावना करते हुए कुंडलिनी के जागरण द्वारा शरीरस्थ छह चक्रों का वेधन करने से संबद्ध है, जिससे अपार शांति, अपूर्व तेज और ओज का दिव्य समावेश होता है। अंत में जगत जननी माँ त्रिपुरा के श्री चरणों में अपराध क्षमापना के साथ यह निवेदन है।
1: पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला।

0: ಸಮುಚಿತಮಿದನ್ನೋ ತವ ಶಿವೇ ಕುಪುತ್ರೋ ಜಾಯೇತ ಕ್ವಚಿದಪಿ ಕುಮಾತಾ ನ ಭವತಿ.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत डॉक्टर राजेश जोशी से वार्ता. वार्ता का विषय था वागड़ के तीर्थ मां त्रिपुरा सुंदरी. ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है. ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है. 7:30 और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का.

0: मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फांसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। इसे संगीत से संवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाजों में फारूक कैसर का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना। बप्पी लहरी का संगीत था, फिल्म का नाम लहू के दो रंग।

0: मैं राजी हूँ गुजरिया, मैं राजी हूँ गुजरिया।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार आरटी बर्मन थे, फिल्म का नाम

हीरालाल पन्नालाल। हम है राहे प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। आइए इस कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं।

0: जानी दुश्मन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की, वर्मा मलिक के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गड्डी लेके
1: पिंजर, दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाँव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

बनफूल फिल्म का गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई। अब आज का हम है राही प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। मंत्रिमंडल ने 11 लाख से अधिक रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दी। सरकार ने गन्ना किसानों के मुद्दों की जांच और उचित उपाय सुझाने के लिए समिति गठित की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में आज तेज बारिश की संभावना। और वेस्टइंडीज ने चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर।

0: 24 रन से हराया, श्रृंखला 2-2 से बराबर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना, ऊर्जा बुनियादी ढांचे में सुधार करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और जल सुरक्षा को बढ़ावा देना है। वे इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर 640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नई यात्रा टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 298 किलोमीटर लंबे निम्मू पदुम दारचा सड़क मार्ग का लोकार्पण करेंगे। लेह के निम्मू को हिमाचल प्रदेश के दारचा से सुदूर जांस्कर घाटी के माध्यम से जोड़ने वाली यह सड़क लद्दाख के लिए एक वैकल्पिक संपर्क गलियारा प्रदान करती है, जिससे श्रीनगर लेह और मनाली लेह मार्गों पर आवागमन और आसान हो जाएगा। श्री मोदी 9 मेगावाट की हनु लघु जल विद्युत परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालसी टर्मिनेशन लाइन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिम सरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जल निकायों का भी उद्घाटन करेंगे। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11,40,000 से अधिक रेल कर्मियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस पीएलबी को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि सरकार ने इसके लिए 2009 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। पात्र कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए अधिकतम 17,951 रुपए का बोनस दिया जाएगा।
2: रेलवे के करीब 11,40,770 कर्मचारियों के लिए परफॉर्मेंस लिंक्ड बोनस 78 दिनों का बोनस कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये दीपावली का उपहार है रेलवे के सभी कर्मठ कर्मचारियों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करीब 2009 करोड़ रुपए का टोटल बोनस है।
0: इसमें रेलवे लाइन रखरखाव कर्मचारी, लोको पायलट गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, पॉइंट्समैन और मंत्रालय के कर्मचारी सहित ग्रुप सी के रेलकर्मी शामिल हैं। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को भी 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री सामाजिक सहायता योजना कर दिया गया है।
2: दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है वंचितों को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन
4: तो शुरू करें।

0: क्षमता के संदर्भ में चीनी के न्यूनतम विक्रय मूल्य में संशोधन की मांग की भी समीक्षा करेगी। जांच के अन्य प्रमुख बिंदुओं में शुगर रिकवरी की टेस्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा तंत्र और चीनी मिलों में गन्ने का वजन करने के मौजूदा तरीके भी शामिल होंगे। समिति मशीन से काटे गए गन्ने के वजन में से कटौती से संबंधित मौजूदा तरीकों की भी जांच करेगी और कटाई से होने वाले वास्तविक नुकसान यदि कोई हो तो उसका आकलन करेगी। यह किसानों के देय गन्ने के मूल्य पर वर्तमान तरीकों के वित्तीय प्रभाव का मूल्यांकन करेगी। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने दक्षिणी हिंद महासागर मत्स्य समझौते में भारत के शामिल होने को मंजूरी दे दी है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार इस समझौते से भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में मछली पकड़ने के अवसर बढ़ाने में सहायता मिलेगी। ये समझौता समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विजयवाड़ा के पुन्नमी घाट पर राष्ट्रीय सरस आजीविका मेले का उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय स्तर का ये मेला पहली बार दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए 1370 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि 5 लाख से अधिक विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 70 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि जारी की गई है। इस अवसर पर उन्होंने 10 एआई और रोबोटिक्स लैब, 1500 प्रिंटर, साइंस ऑन व्हील्स और 60 क्रोमबुक जैसी शैक्षिक सुविधाओं की भी शुरूआत की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 18 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री सिंधिया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित रही है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। आज हमारी इस विशेष श्रृंखला में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे इस संकल्प को रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम जैसी संस्थाओं के माध्यम से साकार किया गया है, जो रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता अधिकारों के लिए काम कर रही है।
2: वर्ष 2016 में संसद ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पारित किया। इसके तहत राज्य रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज की स्थापना की गई। रेरा लागू होने के बाद से किसी भी फ्लैट के बेचने से पहले प्रोजेक्ट को रजिस्टर करना जरूरी है। इसके तहत डेवलपर्स और खरीदारों के बीच के विवाद प्राधिकरण के पास जाते हैं और तय समय सीमा के भीतर सुने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेरा के माध्यम से ग्राहक और डेवलपर्स के बीच का भरोसा बढ़ा है।
3: इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया।
2: गौतम बुद्ध नगर निवासी अनिल तिवारी ने बताया कि रेरा के आने से डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के बीच आपसी समझ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि रेरा के कारण बिल्डर समय से प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और समय पर लोगों को कब्जा मिलना शुरू हो गया है।
4: डेवलपर और क्लाइंट के बीच में पारदर्शिता होती है। जो पैसे हम लगाते हैं डेवलपर के साथ वो हमारा सुरक्षित पाया जाता है और हमें कोई भी आपत्ति यदि रियल एस्टेट के माध्यम से होती है तो हम किसी और के पास न जाके हम सीधा रेरा के पास अपनी शिकायत लेके जाते हैं और पूरी तरह से रेरा हमें संतुष्ट करता है।
2: रेरा ने डेवलपर्स और क्लाइंट के बीच के संबंधों को बेहतर बनाया है और खरीदारों के अधिकारों को वैधानिक रूप दिया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग इस अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। पुदुचेरी का लीसे फ्रांशे इंटरनेशनल डी पॉन्डिचेरी आज 200 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। ये स्कूल अन्य देशों में अभी भी संचालित सबसे पुराने फ्रेंच स्कूलों में से एक है। एक रिपोर्ट।
5: इस आयोजन में 400 से अधिक पूर्व छात्र हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें कई फ्रांस से आए हैं। आज शाम होने वाले मुख्य समारोह में 1000 से अधिक मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, फ्रांसीसी शिक्षा एजेंसी के महानिदेशक अलेक्जेंडर मोरोइस, पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री एन रंगसामी भी शामिल होंगे। इस स्कूल की स्थापना ऐसे दौर में हुई थी जब उपनिवेशिक समाज में नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव होता था। बाद में प्रवेश के अवसर बढ़ाए गए और पाठ्यक्रम में तमिल, तेलुगु, मलयालम और बंगाली जैसी भारतीय

0: डाउनलोड सेवी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
2: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
1: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: सरकार ने गन्ना किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच करने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन कर्नाटक और महाराष्ट्र के गन्ना किसानों के प्रतिनिधियों के साथ केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री तथा केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की बैठक में लिए गए निर्णयों के बाद किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: समिति गन्ने के किसानों के लिए लाभकारी मूल्य में वृद्धि की मांग की समीक्षा करेगी, जिसमें खेती की लागत और अन्य प्रासंगिक विषय शामिल होंगे। यह चीनी उत्पादन लागत, बाजार में मिलने वाले दाम और चीनी मिलों की वित्तीय

0: क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
1: और अब कुछ और अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: जी फरहत, शुरुआत करते हैं रियाद स्थित भारतीय दूतावास के परामर्श से। दूतावास ने सऊदी अरब में रह रहे सभी भारतीय नागरिकों से स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। दूतावास ने कहा है कि हवाई हमले की स्थिति में घरों के अंदर रहें और मौजूदा घटनाक्रम से संबंधित वीडियो या समाचार प्रसारित न करें। रियाद के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान संचालन अब भी निलंबित है। वहीं दम्माम, जेद्दा और मदीना से उड़ानें जारी है। भारतीय विमानन कंपनियों ने इस महीने की 17 तारीख तक सऊदी अरब को आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की हैं। उधर होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते समय सिंगापुर के दो मालवाहक जहाजों जीएफएस प्राइड और जीएफएस गिसेले पर अज्ञात मिसाइल हमलों से हमला किए जाने की खबर भी है। फिलहाल दोनों जहाजों के सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने पनडुब्बियों से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण भी किया है। हालांकि दक्षिण कोरिया की सेना ने परीक्षणों पर अभी तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। और कोलंबिया ने कल यरूशलम में अपने दूतावास का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कोलंबिया के नए राष्ट्रपति अबिलार्डो डे ला एस्प्रियेला ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल कर लिए हैं। तो फरहत, ये थी अब तक की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए।
3: एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष पांच देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत करिकर व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। इनमें महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक, 28 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई खेलों की भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक और ग्रीको रोमन कुश्ती में रजत पदक भी शामिल है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। वेस्टइंडीज ने कल रात हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 24 रन से हरा दिया। दोनों टीमें श्रृंखला में 2-2 की बराबरी पर हैं। अंतिम मैच 17 तारीख को बेंगलुरु में खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: PCP NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद फरहत। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा दिल्ली से पहले रेलवे कर्मचारियों को तोहफा देने का समाचार कई अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, रेलवे कर्मियों को 78 दिन का बोनस, दिव्यांगों को जन्म से मिलेगी पेंशन। अमेरिका में वर्क परमिट खत्म तो 540 दिन का एक्सटेंशन नहीं, नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों की सुर्खी है। छठ पर बिहार जाने वालों की राह आसान करेगी 3 विशेष ट्रेनें, अमर उजाला की खबर है। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर जोजिला दर्रे की तस्वीर दी है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कुछ दिल से।

मीनाक्षी उपाध्याय का नमस्कार। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। आदि शक्ति की आराधना का पर्व है नवरात्र। शक्ति और भक्ति के बीच बहने वाली नदी का नाम है नवरात्र। अनिति के अंधकार पर प्रकाश का प्रहार है नवरात्र। दंभ की देह पर चेतना की चोट का नाम है नवरात्र। शक्ति के प्रतीक के रूप में नवरात्र का अर्थ है हम पराक्रमी बने। जहां श्रद्धा की ज्योति प्रज्वलित होती है वहां विश्वास का प्रकाश फैलता है, और जहां मां दुर्गा का स्मरण होता है वहां साहस संकल्प और सद्भाव के स्वर मुखरित होने लगते हैं। जी हां श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं मां जगदम्बा की आराधना के पावन पर्व नवरात्र की। शक्ति की आराधना जब स्वर बनकर गूंजती है, भक्ति की सरिता जब हृदय में उतरती है, जब दीपों की लो में आस्था मुस्कुराती है और हर धड़कन मां के जयकारों से सज जाती है, तब समझ लीजिए नवरात्र का पावन पर्व आ गया है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, नवरात्र, नौ रात्रियां, नौ दिन, नौ स्वरूप, नव साधनाएं और आस्था के असंख्य रंग। यह पर्व हमें मां दुर्गा के नव दिव्य स्वरूपों की उपासना के माध्यम से जीवन के विविध आदर्शों से परिचय करवाता है। मां शैलपुत्री हमें दृढ़ता का संदेश देती है। मां ब्रह्मचारिणी तप संयम की प्रेरणा देती है। मां चंद्रघंटा साहस का प्रतीक है, तो मां कुष्मांडा सृजन की ऊर्जा का स्वरूप। स्कंद माता वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। मां कात्यायनी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष की प्रेरणा देती है। मां कालरात्रि भय पर विजय का संदेश देती है। महागौरी पवित्रता और शांति की प्रतीक है और मां सिद्धिदात्री साधना की पूर्णता का बोध कराती है। श्रोताओ, मां दुर्गा के नव स्वरूपों की आराधना जीवन के नव गुणों को आत्मसात करने की यात्रा है। कभी धैर्य बनकर, कभी साहस बनकर, कभी ममता, कभी विश्वास बनकर मां हर रूप में जीवन को राह दिखाती है, बिखरे हुए मन को फिर से जीना सिखाती है।

श्रोताओ, मां से केवल सुख संपदा ही न मांगे बल्कि इतनी शक्ति भी मांगे कि दुख में धैर्य न खोए, सफलता में विनम्रता ना भूले और किसी असहायक के सामने से संवेदनहीन होकर ना गुजरे।

0: नेहा, तो इतनी रिलैक्स लग रही है आजकल, क्या सीक्रेट है यार?
1: सीक्रेट नहीं, स्मार्ट मूव है। मैंने लिया है LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
0: ओह रियली, क्या स्पेशल है इसमें?
1: देख, छोटी बचत से बड़ी सेविंग होती है और इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। इसमें गारंटीड एडिशंस मिलते हैं, एडिशनल सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलता है 3 अट्रैक्टिव ऑप्शंस के साथ, और तो और ऑटो कवर भी है। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये प्लान केवल महिलाओं के लिए है, एक्सक्लूसिव।
0: वाह, मुझे भी लेना है यार LIC का बीमा लक्ष्मी प्लान।
1: तो अभी विजिट करें LIC.in या अपने नजदीकी LIC शाखा में संपर्क करें। LIC, हर पल आपके साथ।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओ, नवरात्र की रातें जब रंगों से सजती है तो लगता है मानो धरती ने आकाश के तारों को अपने आंगन में उतार लिया हो। घूमते कदम, थिरकती ताल, रंग बिरंगे परिधान और माँ की आराधना में डूबे चेहरे, ये सब मिलकर भारतीय संस्कृति की जीवंत तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। विशेषकर गुजरात और राजस्थान सहित देश के अनेक क्षेत्रों में नवरात्र लोक जीवन परंपरा और सामूहिक उल्लास का अनूठा संगम बन जाता है। गरबा की प्रत्येक परिक्रमा मानो जीवन के चक्र का स्मरण कराती है। केंद्र में दीपक और उसके चारों ओर घूमता संसार। दीपक हमें बताता है कि जीवन की गति कितनी भी तीव्र क्यों न हो, हमारे भीतर विवेक और सद्भाव का प्रकाश हमेशा बना रहे। थिरकती ताल में भक्ति का पैगाम है, हर घूमते कदम पर माँ का नाम है। रंगों में गुली श्रद्धा, सुरों में आराधना, नवरात्र की हर रात प्रेम की साधना है।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओ, नवरात्र हमें यह सीख देते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य का सदुपयोग है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, अपने आचरण को पवित्र बनाना है। उपवास का अर्थ केवल आहार से विरत रहना नहीं, बल्कि मन के विकारों पर संयम स्थापित करना है। वस्तुतः नवरात्र आत्मशुद्धि से आत्मशक्ति तक की यात्रा है। तो आइए श्रोताओं, इस नवरात्र हम केवल कैलेंडर की 9 तिथियां न मनाएं, बल्कि अपने जीवन में 9 नए संकल्पों के लिए स्थान बनाएं। संवेदना, समानता, साहस, संयम, सद्भाव, सम्मान, सत्य, सृजन और सेवा, क्योंकि उत्सव तब पूर्ण होता है जब उसकी अनुभूति हमारे व्यवहार में उतरती है।

माँ तेरी कृपा से हर सुबह उजियारी हो, हर मन में प्रेम और हर आंख में जिम्मेदारी हो। ना रहे किसी हृदय में घृणा, ना किसी घर में निराशा। तेरी शक्ति से जग में मानवता की फुलवारी हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ कुछ दिल से को अब यहीं विराम देते हैं। जय माता दी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

0: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।

रेणुका माथुर और साथी कलाकारों के गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 9 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: यह आकाशवाणी का जयपुर अजमेर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 के भारतीय खिलाड़ी दल से बातचीत करेंगे। कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के

पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में किसानों के करीब 21 करोड़ 27 लाख रुपए के बीमा दावों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 के भारतीय खिलाड़ी दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नगोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल

0: 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक अपने नाम किए। एशियाई खेलों में लगातार दूसरी बार शीर्ष 5 देशों में भारत की उपस्थिति विभिन्न खेल विधाओं में देश की बढ़ती सफलता को दर्शाती है। इन खेलों में भारत का रिकर्व तीरंदाजी में ऐतिहासिक प्रदर्शन, पुरुष और महिला हॉकी में स्वर्ण पदक और सॉफ्ट टेनिस और मिक्स्ड मार्शल आर्ट में पहली बार पदक उल्लेखनीय उपलब्धि है। देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देना है। मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 घोषित किया है, जो कृषि खाद्य प्रणालियों में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इसमें कृषि क्षेत्र में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने और संसाधनों, प्रौद्योगिकी तथा संस्थागत सहायता तक उनकी पहुंच को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है। यह कार्यक्रम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, विस्तार शिक्षा संस्थानों, राज्य कृषि प्रबंधन और विस्तार प्रशिक्षण संस्थान तथा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान में भी मनाया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज पाली के रेलवे अंडर ब्रिज का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। लोगों की सुविधाओं को देखते हुए इस अंडर ब्रिज का पुनर्निर्माण करवाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंडर ब्रिज के बनने से शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, साथ ही इसे सुंदर बनाने के लिए राजस्थानी संस्कृति को दर्शाती हुई पेंटिंग से सजाया गया है और पर्यावरण संरक्षण के संदेश लिखे गए हैं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इन दिनों राज्य स्तरीय अमृता हाट बाजार लगाया गया है। 20 अक्टूबर तक चलने वाले इस हाट में स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने द्वारा निर्मित उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। उपमुख्यमंत्री तथा महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने कल हाट का अवलोकन किया। उन्होंने स्टॉलों पर उत्पाद देखे और खरीदारी कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया। मीडिया से बातचीत में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मंचों का उपयोग सिखाने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएगी।
1: अपने प्रोडक्ट्स को इनकी प्रेजेंस कैसे वहाँ पर हो सकती है, उसके थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू कैसे इनकी रीच और बढ़ सकती है, वो सब चीजों के लिए वर्कशॉप मैंने इनको कहा है ऑर्गेनाइज करें। 2-3 दिन बाद मैं भी आऊंगी और एक्सपर्ट्स आएंगे और इनको सिखाएंगे, ताकि इनके प्रोडक्ट्स अभी सिर्फ एग्जीबिशन के थ्रू बिक रहे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आज के जमाने में इनको ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग की ओर जाना चाहिए, जिससे इनका बहुत ज्यादा इनकी रीच बढ़ेगी, इनके सेल्स बढ़ेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 16 जिला परिषदों के सदस्यों के चुनाव के लिए 2629 प्रत्याशियों ने 2795 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं 104 पंचायत समितियों के सदस्य चुनाव के लिए 7890 प्रत्याशियों ने 8624 नामांकन पत्र भरे हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों की स्थिति साफ होगी। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। मतदान 22 अक्टूबर को होगा। दूसरे चरण के तहत 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। इस बीच पंचायती राज चुनाव की आचार संहिता के तहत प्रदेश में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। आबकारी विभाग ने अजमेर, राजसमंद, कोटा, पाली और चित्तौड़गढ़ में दबिश देकर अवैध मदिरा जब्त कर भट्टियां नष्ट की हैं। अजमेर में एक होटल संचालक को गिरफ्तार किया गया है। कोटा, पाली और चित्तौड़गढ़ में कुल 10,500 लीटर वॉश नष्ट किया गया। प्रदेश के सभी 41 जिलों में प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। राजस्थान फाउंडेशन की ओर से आयोजित होने वाले इन कार्यक्रमों की कल फाउंडेशन के आयुक्त मनीषा अरोड़ा ने समीक्षा की। बैठक में विभिन्न जिलों के

0: अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। आयुक्त ने जिला प्रवासी प्रकोष्ठों का गठन करने, प्रवासी राजस्थानियों का डेटाबेस अपडेट करने और शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और प्रवासी राजस्थानियों को जिला स्तरीय सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने के लिए संवेदनशील स्थानों पर लगातार गश्त और सख्त कार्रवाई की जाएगी। वन तथा पर्यावरण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार ने कल कोटा में संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने अवैध खनन और बजरी परिवहन में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की निगरानी के लिए मोबाइल चेक पोस्ट बनाने, सीसीटीवी कैमरे लगाने और जीपीएस से वाहनों की निगरानी करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि बूंदी में वन विभाग ने अवैध खनन के 12 मामले दर्ज कर 7 वाहन जब्त किए हैं, वहीं कोटा में 20 मामले दर्ज कर 18 वाहन जब्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में किसानों के लगभग 21 करोड़ 27 लाख रुपए के बीमा दावों से जुड़ी आपत्तियों का निस्तारण किया गया है। जयपुर में राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक में इन प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कृषि विभाग की प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में डूंगरपुर जिले के खरीफ फसल 2025 पर दर्ज आपत्तियों का निस्तारण कर किसानों को लगभग 7 करोड़ 69 लाख रुपए का लाभ दिया गया। वहीं जालौर जिले में रबी सीजन 2023-24 के सरसों बीमा दावों के तहत 1 करोड़ 22 लाख रुपए के क्लेम मंजूर किए गए। इसी तरह जालौर के खरीफ 2024 के करीब 12 करोड़ 36 लाख रुपए के प्रकरण निपटाए गए। भरतपुर में आज से श्री जसवंत प्रदर्शनी और पशु मेला लगाया जा रहा है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म इस मेले का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि काफी सालों से चले आ रहे इस मेले में संस्कृति, मनोरंजन और परंपराओं के रंग देखने को मिलते हैं।
1: मेला में पशु प्रतियोगिताओं से लेकर भजन, जिकड़ी, नौटंकी, कुश्ती, दंगल, ढोला गायन और कवि सम्मेलन के आयोजन होंगे। 20 अक्टूबर को आतिशबाजी के साथ रावण दहन किया जाएगा। मेला में राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के व्यापारी पशुओं की खरीद फरोख्त करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही आवश्यकता की चीजों को भी इस मेले में से खरीदा जाएगा। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 के भारतीय खिलाड़ी दल से बातचीत करेंगे। कृषि में महिलाओं के योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से देश भर में आज महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है। पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रदेश में किसानों के करीब 21 करोड़ 27 लाख रुपए के बीमा दावों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 101.3 MHz पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। सवेरे के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के अंतर्गत आज हम सुनेंगे गैर फिल्मी भक्ति रचनाएं। शुरुआती रचना आप सुन रहे हैं कुमार सानू और साथी कलाकारों की आवाज में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: अगली रचना आपको सुनवा रही है विधि शर्मा की आवाज में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: आप सभी श्रोताओं को आपके मित्र अजीत का नमस्कार जोहार। तो आइए सुनते हैं सुविचार हमेशा की तरह। तो हमें सुविचार भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल।

विद्या पटेल, दीपांजलि पटेल और टेकलाल पटेल जी ने लिखते हैं, समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, हिम्मत मत हारिए, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह की पहली किरण दिखाई देती है। बस विश्वास रखिए, अच्छे कर्मों का फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस उम्दा संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश। तो आइए सुनते हैं सबसे पहला संदेश। लिखते हैं उद्घोषक विमलेश जी और अजीत जी, नमस्कार। हम छत्तीसगढ़ सहसपुर से छोटकू साहू, मोहित राम साहू, लोकेश साहू, रामकिशन साहू, दुलीचंद साहू और सतीबाई साहू हैं। आपको बताना चाहते हैं कि उमंग एनसीईआरटी का कार्यक्रम बहुत हमें पसंद है। हम सादर आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपके लिए प्रकट करते हैं। साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल और संतोषी पटेल जी का। लिखते हैं, विमलेश जी, अजीत जी, सादर नमस्कार। 14 सितंबर दिन सोमवार का कार्यक्रम बहुत ही खास और शानदार रहा। टिम टिम तारा बोलो टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा, इस गीत ने मन मोह लिया। पूरा कार्यक्रम बेहद रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक लगा। बच्चों के लिए ऐसी सुंदर और सीख देने वाली प्रस्तुति के लिए आप दोनों को और साथ ही साथ सीआईटी एनसीईआरटी की तकनीकी टीम को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। अगला संदेश हमें मिला है भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का। धमधा ग्राम सुखनी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका और अंजलि जंघेल जी का। छत्तीसगढ़ मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू और शिवम साहू जी का। और एक संदेश और हमें मिला है, लिखते हैं रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू जी का। एक संदेश और सुनते हैं जिसे लिखा है हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी ने, और आपने लिखा है करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी हिमाचल प्रदेश से। लिखते हैं, विमलेश जी एंड अजीत जी, गुड मॉर्निंग। इट वॉज ए ग्रेट प्लेजर टू लिसन टू द पोएम द क्रो इन म्यूजिकल मैनर टूडे। What a coincidence it is that I read this poem in my childhood in the textbook and got it listened to it in a musical form. I liked this poem and song very much. Thank you very much. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। तो आइए श्रोताओं, अब शुरू करते हैं एक और रोचक आविष्कार की कहानी। श्रोताओं, सच्चाई तो ये है कि हम इंसान भी बड़े अजीब हैं, है ना? जब कोई तकनीक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत आम हो जाती है ना, तो हम भूल ही जाते हैं कि उसने दुनिया को कैसे बदल दिया। अब पेन ड्राइव को ही लीजिए ना, छोटी सी उंगली भर का टुकड़ा है, लेकिन इसके अंदर हमारी पूरी पढ़ाई, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, हजारों तस्वीरें और न जाने कितने वर्षों का डेटा बंद है। लेकिन श्रोताओं, जिसे आज हम इतनी आसानी से जेब में डालकर घूमते हैं ना, 25-30 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी सी चीज अलमारी भर की भारी भरकम फाइलों को चुटकी में निगल लेगी। आपको याद होगा 90 के दशक का वो दौर, जब कंप्यूटर क्लास या दफ्तरों में हम वो चौकोर पतली काली फ्लॉपी डिस्क लेकर घूमते थे, है ना? जरा सी धूल लगी या बैग में मुड़ी तो सारा काम खत्म। और फ्लॉपी की कुल क्षमता कितनी थी आपको पता है? महज 1.44 मेगाबाइट यानी MB, यानी आज के दौर में एक MP3 गाने का आधा हिस्सा भी उसमें ठीक से नहीं आ सकता। आज हमारे पास चलता फिरता डेटा बैंक है यानी पेन ड्राइव। पता है श्रोताओं, इसका आविष्कार हुआ था एक आविष्कारक के भयंकर गुस्से और शर्मिंदगी के कारण। किस्सा है साल 1998 का। इसराइल के एक कंप्यूटर इंजीनियर थे, नाम था डोब मोरान। उनकी अपनी एक छोटी सी कंपनी थी। वे कंपनी को बड़ा करना चाहते थे और इसके लिए उन्हें कुछ बड़ी धनराशि की जरूरत थी। मोरान अपनी कंपनी के लिए धन जुटाने के लिए अमेरिका पहुंचे। वहां एक नामी निवेशक के सामने उन्हें अपना प्रेजेंटेशन देना था। तो हुआ ये कि मोरान बड़े आत्मविश्वास के साथ मीटिंग रूम में पहुंचे, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त पर उनका लैपटॉप चालू ही नहीं हुआ। मोरान घबरा गए। घबराकर उन्होंने वहां मौजूद दूसरे कंप्यूटर में अपनी फ्लॉपी डिस्क लगाई और फिर वही हुआ जिसका डर हर कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले को होता है। जानना चाहते हैं क्या हुआ? हुआ ये कि स्क्रीन पर लाल लाल बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर आ गया, डिस्क करप्टेड। श्रोताओं, वो बड़ा निवेशक घड़ी देखता रहा, मोरान पसीने पसीने होते रहे। पूरी तरह से उन्होंने कोशिश किया कि वो फ्लॉपी डिस्क खुल जाए, लेकिन डेटा नहीं खुला। अंत में निवेशक आई एम सॉरी बोलकर चल दिया। मीटिंग रद्द हो गई।
और मोरान को उस कमरे से सिर

चौंकाकर बेहद शर्मिंदा होकर निकलना पड़ा। तो साथियों, उस शाम होटल लौटते हुए डॉन मोरान गुस्से और लाचारी से भरे हुए थे। उन्होंने टैक्सी की खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से एक सवाल पूछा, क्या इंसान ऐसा कोई छोटा मजबूत और भरोसेमंद साधन नहीं बना सकता जो चाबी के गुच्छे की तरह जेब में आ जाए और जिसका डेटा कभी खराब ना हो। बस उनके इसी विचार ने पेन ड्राइव की नींव रख दी, यानी असफलता ही नए विचार की चिंगारी बनी। लेकिन ये हुआ कैसे? श्रोताओं, इसके लिए आपको बहुत थोड़ी सी तकनीकी जानकारी देते हैं। आपको पता होना चाहिए, उस दौर में कंप्यूटर की दुनिया में दो नई चीजें दस्तक दे रही थीं। पहली थी यूएसबी पोर्ट, जिसका इस्तेमाल उस समय लोग सिर्फ माउस या कीबोर्ड जोड़ने के लिए करते थे, और दूसरी थी फ्लैश मेमोरी, यानी ऐसी चिप जिसके कारण बिजली चले जाने पर भी डेटा सुरक्षित रहता था। तो डॉब मोरान ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए। मोरान और उनकी टीम ने फ्लैश चिप और यूएसबी कनेक्टर को अंगूठे जितने छोटे खोल में फिट कर दिया, ना किसी तार की जरूरत, ना किसी बैटरी की, और उन्होंने उसे कंप्यूटर पर लगाया। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, कंप्यूटर का कुछ डेटा वहां ट्रांसफर हो चुका था। उन्होंने उसका नाम रखा डिस्क ऑन की, यानी चाबी के छल्ले में लगने वाली डिस्क। आपको पता है श्रोताओं, उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी थी? अंदाजा लगाइए। शायद आप सोचते होंगे 1 GB या 2 GB, आपके अलग अलग अनुमान होंगे, लेकिन श्रोताओं आपको बताना चाहता हूं, उसकी टोटल स्टोरेज कैपेसिटी थी मात्र 8 MB, यानी 8 MB। आज तो 8 MB में हमारे फोन से खींची गई एक अच्छी सी फोटो भी नहीं आती। भले ही ये आज कम लगे, लेकिन श्रोताओं उस वक्त ये 8 MB पूरे 5 फ्लॉपी डिस्क के बराबर थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ये फर्श पर गिर भी जाए तो इसका डेटा सुरक्षित रहता था। लेकिन श्रोताओं, अब प्रश्न है, अमेरिका और पश्चिमी देशों में इसे यूएसबी फ्लैश ड्राइव या थंब ड्राइव कहा जाता है, तो ये भला पेन ड्राइव कैसे बन गई? इसका नाम पेन ड्राइव कैसे पड़ा? ये भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जब ये तकनीक एशियाई बाजारों में आई तो कई कंपनियों ने इसे पतले मार्कर पेन जैसा आकार दिया, जिसमें पीछे एक क्लिप होती थी, और लोग उसे शर्ट की जेब में पेन की तरह रख लेते थे। बस हमारे लोगों ने देखा और झट से नाम रख दिया पेन ड्राइव। और इस नन्ही सी ड्राइव ने ना जाने कितनी चीजों की छुट्टी कर दी। इसने फ्लॉपी डिस्क को सीधे म्यूजियम पहुंचा दिया। जो लोग बैग में सीडी और डीवीडी के भारी भारी कैसेट लिए घूमते थे, जिन पर जरा सी खरोंच आते ही गाने अटक जाते थे, पेन ड्राइव ने इन सब का नामो निशान मिटा दिया। और आज तो कमाल हो गया है श्रोताओं, 8 MB से शुरू हुआ पेन ड्राइव का ये सफर आज 1 TB और 2 TB तक पहुंच चुका है, यानी पूरी दुनिया का ज्ञान, फिल्में और किताबें एक छोटी सी उंगली के पोर जितनी जगह पर समा सकती है। तो अब जरा सोचिए श्रोताओं, अगर 1998 की उस शाम डॉब मोरान की वो फ्लॉपी डिस्क खराब ना हुई होती, तो शायद हम आज भी फ्लॉपी डिस्क और नाजुक सीडी के जंजाल में ही उलझे होते। जी हाँ श्रोताओं, यही तो है विज्ञान की खूबसूरती। जब कोई भी इंसान किसी परेशानी से तंग आकर एक बेहतर विकल्प ढूंढने की ठान लेता है, तो शुरू होता है नवाचार और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएं, तो 1998 की उस शाम को कभी ना भूलें जिस दिन फ्लॉपी डिस्क खराब हो गई थी और डॉब मोरान ने इस बात को ठान लिया था कि वो इसका विकल्प ढूंढ कर ही दम लेंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। तो सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम उमंग और सीखते रहिए नई नई बातें। तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, किस व्यक्ति और उसकी टीम ने पेन ड्राइव की खोज की? श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आपको बता दें कि NCERT की पाठ्य पुस्तकें डाउनलोड करने के लिए आप NCERT बुक्स PDF किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए, वेबसाइट पर दिए गए विकल्पों का अनुसरण कीजिए और मनचाही पुस्तक तक पहुंचिए। आप यदि इन्हीं पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप इस चैनल पर हमारे कार्यक्रम न सिर्फ सुन सकते हैं लेकिन उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आम की गुठली। कक्षा 3

0: की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में पौधरोपण का संदेश दिया गया है तथा ये बताया गया है कि मात्र पौधा रोपना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे की समुचित देखभाल भी की जानी चाहिए।
1: एक दिन अम्मा बाजार से बच्चों के लिए आम लाई। 1 किलो में 7 आम आए। आम छोटे छोटे और खूब रसीले थे। अम्मा ने उन आमों को धोकर फ्रिज में रख दिया और बच्चों से कहा,
2: शाम को अब्बा दफ्तर से आएंगे, तब तक फ्रिज में आम भी ठंडे हो जाएंगे। रात के खाने के बाद हम आम खाएंगे।
1: मुन्ने को आम बहुत पसंद थे। थोड़ी देर में अम्मा, सीमा और समीर दूसरे कमरे में चले गए। अब 4 साल का शरारती मुन्ना कमरे में अकेला रह गया। उसने इधर उधर देखा तो आसपास कोई ना था। मुन्ने ने मौका पाकर चुपके से फ्रिज खोलकर एक आम उठा लिया और खूब मजे लेकर चूस चूस कर खाया।
3: इतना मीठा आम है, ये आम खाके तो मजा आ गया।
1: फिर मुन्ने ने हाथ मुंह धोकर कुल्ली कर ली और दूसरे कमरे में जाकर दादा दादी के साथ बातें करने लगा। शाम को अब्बा आए। दादा दादी के साथ बैठकर सबने रात का खाना खाया। खाना खाकर अम्मा ने जब फ्रिज से आम निकाले तो 7 की जगह सिर्फ 6 आम थे। अम्मा ने बच्चों से पूछा,
2: क्या आप में से किसी ने 1 आम खाया है?
1: सीमा और समीर ने इनकार में अपनी गर्दनें हिलाई।
3: नहीं अम्मा, हमने तो फ्रिज खोला ही नहीं।
1: मुन्ने को शर्म आ रही थी, फिर भी जी कड़ा करके उसने कहा,
3: नहीं, मैंने तो आम नहीं खाया।
1: अब्बा बच्चों का इनकार सुनकर मुस्कुराए और कहा,
4: आम तो आप लोगों के लिए ही आए थे, अगर आप में से किसी ने 1 आम खा भी लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, इन आमों की गुठलियाँ बहुत छोटी थी। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि अगर किसी बच्चे ने आम की गुठली भी निगल ली होगी तो आज रात उसके पेट में बड़े जोर से दर्द होगा।
1: इतना सुनना था कि मुन्ना झट से बोल पड़ा,
3: नहीं नहीं अब्बा, गुठली तो बड़ी थी, मैंने तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था।
1: ये सुनकर सारे लोग हंस पड़े। मुन्ना शर्म से लाल हो गया। पास ही बैठी दादी जान ने कहा,
5: अरे वाह, मेरे मुन्ने ने सच को कबूल करके मेरा दिल जीत लिया।
6: तो बच्चों, आपने सुनी है कहानी, अच्छी लगी ना? अच्छा, अब आपके लिए कुछ सवाल हैं। ऐसे कौन कौन से फल हैं जिनकी गुठली फलों के अंदर होती है, उसकी एक फेहरिस्त बनाइए। ऐसे कौन कौन से फल हैं जो सिर्फ गर्मियों में मिलते हैं, बीज, पत्ती, फूल और फल, इनके आने की सही तरतीब क्या है? आपने कौन कौन से आम खाए हैं, उनके नाम लिखिए। इन सवालों के जवाब आप अपने वालिदैन, दोस्त और अहबाब से भी चर्चा कर सकते हैं।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम आम की गुठली, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। इस कार्यक्रम में भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहादुरी से अंग्रेजी साम्राज्य का सामना करने वाले और अपना प्राण न्योछावर करने वाले वीर किशोर जोरावर सिंह के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
7: भारत वीरों और वीरांगनाओं की भूमि है। जब जब भारत माँ की आन, बान और शान पर संकट आया, हमारे वीर और वीरांगनाएं

0: अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटे। बात है अंग्रेजों के विरुद्ध छेड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की, जब हमारे वीर और वीरांगनाओं ने अदम्य साहस, सूझबूझ और मातृभूमि के प्रति कर्तव्य को बड़ी बहादुरी से निभाया। इन वीरों और वीरांगनाओं में कई तो काफी कम उम्र में ही कुर्बान हो गए।
1: ऐसे ही एक वीर बालक थे जोरावर।

0: साथियों, हमें अपने शत्रु की हर चाल का, हर हथियार का और हर रणनीति का जवाब देना है। शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना है और हर पल हम सबको उससे चौकन्ना रहना है।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: आप सब जानते हैं कि हम पर दोहरी जिम्मेदारी है। हमें अपनी रियासत के साथ साथ पड़ोस की रियासतों की भी मदद करनी है ताकि अंग्रेज हमारी मातृभूमि पर कब्जा ना जमा सकें।
2: वीर जोरावर की
3: जय।
2: वीर जोरावर की
3: जय।
2: जय जयरापुर जय भारत।
3: जय जयरापुर जय भारत।
4: राजा जोरावर सिंह, हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत से सटी छोटी सी रियासत जीरापुर का महज 15-16 की उम्र का राजा, जिसने 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों से लड़ने के लिए अरब और रोहिल्ला पठानों की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की थी।
5: अरे वाह, इतनी सी उम्र में जोरावर राजा बन गए।
4: दरअसल पिता की अचानक मृत्यु हो जाने पर उन्हें ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ी, क्योंकि वो अपने पिता के उत्तराधिकारी थे और दूसरा, अंग्रेजों के बढ़ते हमलों से मुकाबले के लिए ऐसा करना जरूरी था। खैर, ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति में बुरी तरह मात खाने के बाद अंग्रेज नई नई चालें रचने लगे थे। इसी में एक खतरनाक चाल थी, डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो।
5: अंग्रेजी हुकूमत ने हम भारतीयों को जात पात, भाषा, धर्म और क्षेत्र के नाम पर लड़ाना शुरू कर दिया ताकि इसका फायदा उठाया जा सके।
6: महाराज, महाराज हालात खराब हो रहे हैं, लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। हमें कुछ करना होगा महाराज। पड़ोस की दूसरी रियासतों को भरोसे में लेकर और मिलकर काम करना होगा ताकि इन अंग्रेजों को मनमाने का कोई मौका ही ना मिले।
0: ठीक कहते हैं मंत्री जी, मैं कल ही हैदराबाद जाता हूँ। वो हमारी सबसे बड़ी राजशाही रियासत है
6: जी।
0: वहाँ के निजाम अफजल उद्दौला से बात करूँगा और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात को अहमियत देंगे।
6: जी महाराज। महाराज, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपकी यात्रा की एक बड़ी सफलता होगी।
0: बिल्कुल,
6: आपकी सूझबूझ का जवाब नहीं महाराज। वाकई आप अपनी मातृभूमि और जनता की रक्षा के लिए कितने समर्पित हैं। हम तैयारी शुरू करते हैं महाराज।
0: जी मंत्री जी।
6: जी महाराज।
4: जोरावर ने अगले ही दिन एक नेक मकसद के साथ निजाम के दरबार में दस्तक दी।
7: होशियार, खबरदार, रियासत जेरापुर के महाराज जोरावर सिंह दरबारे खास में जलवा अफरोज हो रहे हैं।
8: जोरावर सिंह राजा रहे हैं। महाराज जोरावर सिंह
9: आइए हमारे दोस्त, तहे दिल से आपका इस्तकबाल है। तशरीफ रखिए और बताएं कि आपने कैसे तकलीफ की, क्या खिदमत की जाए आपकी।
0: निजाम साहब, हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं।
9: जी जरूर, हुक्म करें, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं।
0: देखिए निजाम साहब।
9: जी फरमाइए।
0: फिरंगी हुकूमत की बर्बरता और साजिशें एक बार फिर बढ़ रही हैं। गदर में मिली नाकामी के बाद अब वो हमें आपस में लड़ा रहे हैं
9: जी।
0: इसलिए हमें मिलकर काम करना होगा ताकि वो किसी साजिश में काम

0: कामयाब ना हो पाए।
1: राजा जोरावर, हम भी ऐसा ही चाहते हैं। हम कल सुबह तफसील से बात करते हैं
0: जी।
1: तब तक आप हमारे खास मेहमान की तरह इस किले में रहें। हमारे वजीर सालार जंग आपके आराम और कल की बातचीत के सारे इंतजामात कर देंगे।
2: जो हुक्म मेरे आका, हम महाराज और उनके सैनिकों का पूरा ख्याल रखेंगे। आइए महाराज।
3: अफजल उद्दौला उर्फ मीर तहनियत अली खान 1857 से 1869 तक हैदराबाद के निजाम यानी शासक थे और यहाँ के पहले शासक कमरुद्दीन खान आसफ जाह के पांचवें वंशज थे। दरअसल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान हैदराबाद रियासत पर नवाबों की हुकूमत रही। खैर, निजाम के दरबार में अपने शानदार स्वागत से जोरावर खुश थे। वहीं निजाम भी उनकी देशभक्ति और सूझबूझ को देखकर हैरान थे।
4: जी हाँ, जीरापुर की जनता के लिए हैदराबाद का साथ बहुत जरूरी था और जोरावर यहाँ काफी उम्मीद से आए थे।
2: ए, सुनो, सारी तैयारियां पूरी है ना?
5: बिल्कुल।
2: देखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एक तो जोरावर खुद बहुत बहादुर है, दूसरे उसके अंगरक्षक साय की तरह उसके साथ रहते हैं, और तीसरी बात यह है कि अगर हमारी साजिश कामयाब न हुई तो फिरंगी हुकूमत हमसे नाराज हो जाएगी और इनामो इकराम की जगह मिलेगी लानत मलामत।
5: हुजूर, आप फिक्र ना करें, सब कुछ वैसे ही होगा जैसे आपने कहा है।
2: लेकिन जरा होशियारी से।
5: जो हुकुम सरकार।

0: Tommy!
1: Oh, तुम चारों तरफ से गिर चुके हो.
0: ये क्या है?
1: You are under arrest.
0: एक सोते हुए निहत्थे इंसान को आधी रात में ऐसे कायरों की तरह गिरफ्तार करते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? हिम्मत है तो हमसे लड़ कर दिखाओ. आओ सामने.
1: बाउट हो गई तुम्हारी बहादुरी.
2: फौजियों, हुजूर,
1: बांधो इस बच्चे को जंजीर से.
2: जी.
0: छोड़ो मुझे. हाथ मत लगाओ मुझे. मुझसे हाथ हटाओ. मैंने कहा छोड़ो मुझे. हटो यहाँ से.
1: शाबाश, शाबाश, सालार जंग. मैं खुश हुआ. तुम्हें मोटा इनाम दिलवाऊंगा.
3: हुजूर.
0: अच्छा, तो ये सब इसकी कारस्तानी है. एक बुजदिल ही दूसरे बुजदिल का साथ दे सकता है. लानत है तुम पर सालार जंग, लानत है. लालच में तुम इतने गिर जाओगे हमने सोचा ना था.
1: फौजियों, ले चलो इसको.
0: चलो मुझे. छोड़ो मुझे.
4: बाद में अंग्रेजी फौज ने जोरावर पर बहुत अत्याचार किए. उनकी सैनिक तैयारी के बारे में पूछा गया. उनसे क्रांतिकारियों के नाम और ठिकाने पूछे गए. तरह तरह के लालच भी दिए गए, लेकिन वो जरा भी कमजोर नहीं पड़े और बार बार यही कहते रहे कि मातृभूमि से विश्वासघात नहीं कर सकते, चाहे जान ही क्यों न गंवानी पड़े.
5: जोरावर से सारे राज उगलवाने के लिए थक हार कर कर्नल मेटोस टेलर नाम के एक नए अफसर को नियुक्त किया गया. लेकिन वो जितना ही सख्त था उतना ही दोस्ताना मिजाज का भी था. उसके मन में जोरावर के प्रति हमदर्दी थी. वो और जोरावर जल्द दोस्त बन गए और जोरावर उसे प्यार से अप्पा कहने लगे.
6: देखो जोरावर, अगर तुम प्यार से बचाओगे तो तुम्हें सजा की जगह आम माफी मिल जाएगी और मैं रेजिडेंसी से कहकर तुम्हें मालामाल करवा दूंगा.
0: अप्पा, ये नहीं हो सकता.

0: सकता।
1: देखो देखो तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बात मान लो, मैं तुम्हें कोच नहीं होने दूंगा।
0: ये नामुमकिन है।
1: व्हाई?
0: हमें माफ कीजिए, हम अपनी रियासत और मुल्क दोनों से दगा नहीं कर सकते। हम देशद्रोह नहीं करेंगे, हरगिज नहीं करेंगे। अप्पा साहब, अब हम मौत का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमें जो भी सजा होगी अब हमें मंजूर है।
1: तो नहीं मानोगे। देखो देखो, आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा हो सकती है तुम्हें। ये सजा
0: अप्पा साहब, हमारी बस एक विनती है कि हमें फांसी पर मत चढ़ाइएगा। हमने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसके लिए हमें शर्म आए। हमने जो किया हमें उस पर गर्व है। कैद, फांसी या काला पानी, इनमें से कोई भी इतना भयंकर नहीं जितना कि विश्वासघात है। इसलिए हमें फांसी के बजाय तोप से बांधकर उड़ा दीजिएगा। हम कुछ नहीं कहेंगे और जरा भी नहीं डरेंगे, जरा भी नहीं।
1: एक्चुअली यू आर अ फूल।
2: जोरावर की ये बात सुनकर कर्नल टेलर का दिल भी सिहर उठा। बाद में उनकी गुजारिश न मानकर जोरावर को काला पानी की सजा सुनाई गई।
3: काला पानी की सजा?
2: हाँ, काला पानी की सजा। भारत की भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार का एक द्वीप है, जहां अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं देने के लिए एक जेल बनाई थी।
3: जोरावर को भी अंग्रेज सैनिक नाव से काला पानी की जेल ले जाने लगे।
2: और समुद्र में बीच रास्ते जोरावर ने एक अंग्रेज पहरेदार से रिवॉल्वर छीन ली।
0: काले पानी की सजा से मौत को बेहतर समझता हूँ मैं। भारत माँ का बहादुर बेटा हूँ। इस सजा को मेरी रियासत का सामान्य सा व्यक्ति भी नहीं पसंद करेगा। फिर मैं तो राजा हूँ।
3: एक छोटी सी रियासत के छोटी उम्र के राजा ने देश के लिए बड़ा काम कर दिखाया और मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को गले लगाकर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज किया।
4: तो श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम बाल क्रांतिकारी जोरावर सिंह। और अब इसी कार्यक्रम के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, कुसुमलता, चेतना, अरशद, प्रसून और हमारे आज के विशेषज्ञ प्रोफेसर सुमन संजय कुमार जी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 MHz पर। सवेरे के 10 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
6: और ये गीत तो हमारे दिल में घर ही कर चुका है।
7: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
6: तो आज हनुमान अंश फिल्म की शूटिंग और सृजन से जुड़ी बातें हमसे साझा करने आए हैं निर्देशक विशाल चतुर्वेदी। आपसे बातचीत कर रही है ममता सिंह। इस बातचीत की पहली कड़ी हमने पिछले सप्ताह सुनी थी और अब सुनते हैं इस बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी।
8: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक ऐसे लेखक निर्देशक की आमद है जो इन दिनों बहुत चर्चा में है। ये है युवा लेखक निर्देशक और आजकल इनके नाम के दीवाने हो रहे हैं लोग, वो हैं जाने माने निर्देशक और लेखक विशाल चतुर्वेदी जी। उनकी फिल्म बहुत हिट हुई है। विशाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
9: नमस्कार, धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए ममता जी।
8: विशाल जी, सबसे पहले तो बधाई।

0: लीजिए अपनी फिल्म की हनुमान अंश, हमने भी देखी और समूह के साथ देखी, बहुत अच्छी लगी, तो बहुत बहुत बधाई।
1: धन्यवाद।
0: और अब आपकी दूसरी फिल्मों का जिक्र करते हैं विशाल जी, उसके पहले भी आपने फिल्में बनाई हैं, तो उन फिल्मों के बारे में बताइए, कहाँ से आपकी फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट का चुनाव और लिखने का चुनाव कैसे आपके मन में आता है, क्या क्राइटेरिया होता है?
1: मुझे लगता है कि एक तो मैंने पहले, ये डायरेक्टोरियली मेरी पहली फिल्म है, इसके पहले मैंने फौजी 2 मतलब फॉलोअप सीजन ऑफ फौजी 1 जो शाहरुख खान जी का जो सीरियल था, उसका एक फॉलोअप सीजन मैंने पिछले वर्ष लिखा,
0: द गर्ल ऑन द हाईवे।
1: वो हमारे अपना, हम बहुत सारी आईपीज हमने क्रिएट किए उसमें, वो अपनी आईपी है, अपना कंटेंट है। द गर्ल ऑन हाईवे प्लस जो है ना हुड़दंग में क्रिएटिव डायरेक्टर था मैं, बहुत से मित्र हैं जो उसके डायरेक्टर हैं, प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था।

0: प्लस जो है ना कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट में कुछ समय तक कंटेंट हेड कर रहा था
1: करेगी
0: तो मुझे लगता है कि मैं जो है ना बहुत समय से वायरल फिल्म्स तो बना रहा था जो कि शॉर्ट्स थी 10 मिनट 12 मिनट की फिल्म्स होती थी वो और एड्स भी थे मेरे बहुत वायरल हो जाते थे तो वायरल शॉर्ट से वायरल सोशल मीडिया वायरल कंटेंट से थिएट्रिकली वायरल फिल्म बनाने का मुझे एक चस्का भी था कि ऐसी फिल्म बनानी जो सब एक्सेप्ट करें उसको सब देखें जिसके बारे में कोई नेगेटिव ना बोले। अब ये अचीव करने के लिए मुझे लगता है कि थोड़ी सी समझ की आवश्यकता थी जो मुझे बहुत समय से जिसको मैं फॉलो कर रहा था कि कैसे मैं ऐसा कंटेंट लिखूं जिसको सब प्यार करें जिसमें आप महिलाएं तो महिलाएं बच्चे तो बच्चे ग्रैंडसन ग्रैंडफादर मौसा फूफा जो भी आप पॉसिबल है दोस्त मित्र आपको हर व्यक्ति के लिए हर रोल के लिए आपको एक कुछ मिल जाए फिल्म के अंदर और आप उस फिल्म को सराहें। तो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि हो कैसे गई मुझे पता नहीं क्योंकि आज के सोशल मीडिया के जमाने में कुछ भी कितना भी अच्छा आप कर लो लेकिन आपको नेगेटिव करने वाले कोई ना कोई मिल ही जाते हैं।
1: बिल्कुल
0: आप समझिए सोचिए आपके 9.7 की रेटिंग है ऑलमोस्ट 10 ही हो गया ऑन बुक माई शो 1.5 लाख से ऊपर रिव्यूज हैं उस पर आप नेगेटिव ढूंढते रह जाएंगे आपको मिलेगा ही नहीं। इंटरनेट सोशल मीडिया पे आप ढूंढते रह जाएंगे आपको नेगेटिव कमेंट नहीं मिलेगा कमेंट ही नहीं मिलेगा नेगेटिव
1: बिल्कुल नहीं नहीं।
0: तो ये कैसे हो गया ये अपने आप में एक चमत्कार है ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे लगता था कि लोग लेंगे साइड कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा चूंकि फिल्म में कोई विलन नहीं है चूंकि फिल्म में किसी को भी एंटागनाइज नहीं किया चूंकि फिल्म में ऐसा कोई मुद्दा समाज का नहीं है जो मैंने जिसको मैंने केटर नहीं किया अगर वो पति पत्नी के बीच में वो है तो सबको एड्रेस किया है समाज समस्याओं को तो मैं इस फिल्म को बोलता हूं जब मैं फिल्म को पोजीशन कर रहा था तो मैं बोलता हूं इसको कि स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू द सोसाइटल प्रॉब्लम्स ये मेरे लिए वो फिल्म है। मैं एज अ फिल्म मेकर क्या बोलूं एज अ भक्त एज अ नीम कोहली बाबा फॉलोअर तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूं समाज को तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूं उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूं उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूं कि मिट्टी क्या है उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूं
1: मानवीयता है
0: मानवीयता को डिस्कस कर रहा हूं संवेदना को डिस्कस कर रहा हूं मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूं कुंडलिनियों को डिस्कस कर रहा हूं तो ये मैं एज अ डॉक्टर एज अ स्पिरिचुअल पर्सन और somebody who's a filmmaker और वो समाज को कुछ तो दे है ना भाई आप फिल्म बना के दे क्या रहे हो एंटरटेनमेंट के साथ में बट किसी भी समय पे फिल्म में से एंटरटेनमेंट जाना नहीं चाहिए कि आपको फिल्म जो है ना टिटलेट करती रहे आपको कॉन्स्टेंटली आपको जो ना वो एक
1: बांध
0: के रखे और आपको मजा भी आता रहे।
1: तो यहाँ एक गाना सुनते हैं
0: जी
1: बताइए कौन सा गाना सुनना है
0: मुझे लगता है कि अमेरी जोरा जबी वो सुनाइए
1: सुनते हैं ये।

0: गाने के बाद वापस की फिल्म पर आते हैं विशाल जी, एक आध्यात्मिक कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो होता है, ये तो आपने इसमें हनुमान अंश में तथ्य समय और कहानी को कैसे तीनों में संतुलन बनाया आपने?
1: तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तथ्यात्मक रूप से मैंने रेफरेंसिंग करी अच्छे से, प्रॉपर रेफरेंसिंग करी, तो उसमें बहुत गलत ना चला जाऊं, सिनेमेटिक लिबर्टी तो लेते ही हम सब, लेकिन कहीं गलत ना चला जाऊं, गलत का मतलब कोई ऑफेंड ना हो जाए, उनकी उनके परिवार वाले इन्फेंड ना हो जाए, उनके फॉलोअर्स इन्फेंड ना हो जाए, या एक आप सनातन को मानने वाले हैं, आप अगर हिंदू धर्म के बिलीवर हैं, आपकी भक्ति पे कोई किसी तरह का आपको ना बुरा लग जाए, तो संवेदनशीलता जब हम, मुझे मेरा कहना मानना ऐसा है कि संवेदनशील आप जब होते हो, आप जिस सब्जेक्ट पर भी काम कर रहे हो, तो आप एक अपने आप ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो सेंस रहता है कि आप कहीं गलत ना कर दो, तो तथ्यात्मक रूप से मैंने कोई उसको जो है ना बैलेंस करके रखा। कालखंड को मैनेज करना, क्योंकि पीरियड फिल्म्स जनरली बहुत टफ मानी जाती हैं और माना जाता है कि आप उस कालखंड को करोगे, क्रिएट करोगे तो बहुत महंगा होगा, जबकि मैंने उसको उल्टा सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर को बोला कि 4 कलर्स के कॉस्ट्यूम्स होने चाहिए, 5वां नहीं होगा, और थान खरीदो और उनको कलर करो, तो पगड़ियां बनेंगी या धोती बनेगी या कुछ भी बनेगा, वो सेम कलर, 4 कलर के अंदर 5वां कलर नहीं होगा कॉस्ट्यूम्स में। सिमिलरली ऑन द वॉल्स, जो भी वॉल्स हैं, एक तो मैं सिलेक्ट ही ऐसी जगह करूंगा जहां पे किसी तरह की मॉडर्निटी ना हो, तो उसको बचना वहां से, लेकिन जो मैं पेंट करना है, पेंट करने के लिए भी लगभग 4 कलर है, उनका पैलेट है एज एन वॉल का, जिसको प्रोडक्शन डिजाइन बोलते हैं, और कॉस्ट्यूम डिजाइन जिसको बोलते हैं, तो कॉस्ट्यूम के कलर्स में और इसके कलर्स में इनको 4-4 कर दिया, प्लस मैंने पूरी फिल्म को 9 भाग में बांट दिया, लगभग 9 चैप्टर्स थे, उनको बांट दिया। और ये करने से हुआ ये कि हम कहीं ना कहीं वो जिन गलियों में घूम रहे थे, जिन वॉल्स को हम देख रहे थे, जिसको जो हमें कलर्स पता था, सबको क्लैरिटी थी कि यार ये कलर नहीं हो सकता, कोई कलर हो ही नहीं सकता मॉडर्न है, तो पेंट करो, रीपेंट करो उसको, मतलब जब आप उनको वापस करोगे तो रीपेंट कर दो, इफ दे आर ओके विद द सेम पेंट इट्स ओके। तो ऐसे करते करते करते मिट्टी के बने हुए मकान, पुरानी जो वॉल्स, पुराने कोतवाली, पुरानी जगह, उन सबको हमने टारगेट किया, फोकस किया, और मिलते भी गए हमको, तो ढूंढते ढूंढते हमको मिलते भी गए, तो ऐसे करके मैंने पीरियड अप्रोप्रिएट किया। और तीसरा सवाल था आपका
0: कि कालखंड और इसको आध्यात्मिक व्यक्तित्व की कहानी को फिल्मी कहानी के रूप में ढालना
1: कैसे, तो बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था, क्योंकि मैं खुद भी एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे हूँ बहुत समय से, पिछले 20 साल से, मैं उसका श्रेय पूरी तरह मैं अपनी माताजी को देता हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली जो है ना वो पुश करती रहती हैं और कुछ कुछ बताती रहती हैं कि ये सुन लो, ये हो गया, वो गया, ये किताब पढ़ लेना, भले मैं पढ़ पाऊं ना पढ़ पाऊं उनकी बात को मना नहीं करता, मैं कहता हाँ मैं कर लेता हूँ, और कई बार वो बोरिंग भी होता है जो बोलती है, कह रही नहीं ये सुन लो वो सुन लो, अब मैंने जिस जो कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में क्लियर हो गया मैं उनको ही फॉलो करता हूँ, तो मैं नई नई चीजों में जंप नहीं करता, उनको बहुत इंटरेस्ट दिन भर यही करती है, तो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी 20 साल से मैं जो फॉलो करते आया, बिकॉज ऑफ मदर आई कुड एक्चुअली टॉक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर एंड द कोर प्रिंसिपल्स, कि किसी का कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, अगर सिद्धियां आई तो कुंडलिनी जागरण हुआ होगा, कुंडलिनी जागरण के बिना तो सिद्धियां नहीं आएंगी, तो सिद्धियां कहां से आई होंगी, तो उसके लिए कॉन्सेप्चुअली आपको यू हैव टू डीप डाइव, यू हैव टू फिगर आउट कि हुआ क्या होगा। तो नाथ संप्रदाय के जो साधु मिलते हैं, जहां पर सासा हाले हंसा चाले सॉन्ग है, जहां पे वो इट ऑल टॉक्स अबाउट कि आपके भीतर जो है ना, भीतर बड़ा उजाला भासे एक मणिधर आगे, दीज लाइन्स जो है वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स येट वेरी सिंपल, कि वो जो मूलाधार में जो मणि चक्र बोलते हैं, जिसको मणि बोलते हैं, कि कुंडलिनी का जो मणि है, तो भीतर बड़ा, और जो अंधेरे में जो ताला खोले, वो बिना चाबी के अंधेरे में ताला खोले, अंधेरे ही है ना, आप जब आंख बंद करोगे तो अंधेरा है, तो इस तरह के कॉन्सेप्चुअली चीजों को इंक्लूड करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत समझ की आवश्यकता थी, वो मुझे मेरी अपनी माताजी की वजह से बहुत मिली, प्लस मुझे एक आई फाउंड वन ऑफ द बुक कॉल्ड सारस्वत कुंडलिनी जागरण एक्सीडेंटली बाय समबडी आई मेट, ही रेफर्ड दैट बुक समहाउ, मैं एक वंदे भारत ट्रेन में बैठा था, 6 घंटे का समय था, मेरे पे आईपैड पे वो बुक थी, मैंने उसको खोल के पढ़ना शुरू किया, उसके 58वें पेज पे मुझे सासा हाले हंसा चाले मिल गया, जो कुंडलिनी जागरण के बारे में गुरु गोरक्षनाथ की 11वीं शताब्दी की लिखी हुई कपलेट से, और वो इतनी सिंप्लीफाइड और उतनी गूढ़ और सिंप्लीफाइड, येट सिंप्लीफाइड, सो आई लव थिंग्स विच आर वेरी सिंप्लीफाइड, यू विल लव टू हियर देम इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, गूढ़ इन्फॉर्मेशन सिंपल वर्ड्स में मिले, पॉकेटेड इन्फॉर्मेशन को बोलते हैं, बट अंडरस्टैंडेबल इफ यू विश टू गो इन टू, आप डीप डाइव करोगे, अगर आप मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान आप डीप डाइव करोगे तो आपको उसके अंदर वो मिलेगा।

0: जो आप शायद जिंदगी में ना खोज पाओ,
1: बिल्कुल
0: उतनी क्लैरिटी ना मिले। तो मेरा ये जिम्मेदारी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्पिरिचुअल पर्सन, दैट आई प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, कि अगर आप उसमें डीप डाइव करना चाहते हो तो आप कर लो फिर,
1: बिल्कुल
0: आपके पास में ये रास्ता है, सुगम रास्ता है, इसको आप समझ लीजिए। मैंने समझाया, मैंने आपको समझा दिया, हो सकता है कि मैंने 5% ही समझाओ, लेकिन एटलीस्ट 5% 4% तो समझेंगे आप, फिर आपकी जर्नी आप देखेंगे आप कैसे कहाँ जाना है।
1: तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता से जोड़ने के लिए आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है
0: जी।
1: और माँ पिता से हम बहुत कुछ सीखते हैं, कभी डांट खाते हैं, मार खाते हैं, तो ऐसी कोई शरारत वाली घटना भी बताइए, अच्छी अच्छी बातें तो बताए कि डांट पड़ी हो वो भी बताइए।
0: बहुत मैं अपने भाई की वजह से बहुत मार खाता था, मेरे भाई मुझे जो है ना ट्रैप करा देता था कुछ कुछ चीजों में, कभी बचपन में भाई ने मुझे बहुत जो है ना इस तरह की सिचुएशन में फंसाया है
1: जी।
0: तो मार तो मैं खाता था हाँ। लेकिन भाई की वजह से खाता था, और वो तो फिर माता जी के हाथ में जो आ जाए, फिर वो हाँ। पाइप होता था जिससे बेलन पाइप चिमचा, तो कर ये तो आप सब देखते हो, लेकिन जो प्लास्टिक का पाइप होता है ना जिसमें
1: हाँ।
0: पानी भरते हैं
1: हाँ।
0: वो बड़ा खतरनाक होता था, वो चिपकता भी बहुत था वो, तो वो तो मैंने बड़े काफी उम्र तक खाया है वो।
1: अच्छा।
0: मुझे याद नहीं कौन, मुझे लगता है कि मैं 17-18 साल तक की उम्र तक भी खाया।
1: तो लेकिन क्या बात होती थी, घटना क्या रहती थी?
0: शी विल जस्ट गेट फ्यूरियस एंड देन शी विल बीट एंड देन नाउ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन बिकॉज यू ये तो जॉब है
1: तो मतलब कौन सी गलती आप करते थे जिससे मार खाना पड़ती थी?
0: मैं एक्चुअली कोई सच वो नहीं थी, इन्फॉर्मेशन कैसी पास होती है, इंटरप्रिटेशन होता है ना, कैसे आप इंटरप्रेट कर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फिल्म और फॉर अ स्टोरी, कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटीज होती है उसको आप यू वर्क इट आउट। एंड आई विल टेल यू वन ऑफ द सीन जहां पे फिल्म में जो है ना वो महाराज जी को नीचे उतार देते हैं और गोपाल को और महाराज जी को उतार देते हैं, आपको जो हमारी ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी उसमें गोपाल था ही नहीं उस सीन के अंदर। किसी ने मुझे बोला कि आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि महाराज जी अरोगेंट है, उन्होंने अपने गुस्से में आके उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। मैंने कहा यार बात तो सही बोल रहे हो तुम, सोचता हूं मैं इस बारे में। तो मैंने शूट पे वहीं पे जाके वो उस पूरे के पूरे उसमें इवेंट में उसको इंक्लूड किया था, अगर आप देखें गोपाल के पास बहुत डायलॉग्स नहीं है
1: जी।
0: पूरे सिक्वेंस में गोपाल डायलॉग्स नहीं बोलता क्योंकि डायलॉग लिखे ही नहीं गए थे वो, चूंकि गोपाल को धक्का मार के गिरा दिया इसलिए महाराज जी को गुस्सा आती है और वो फिर गोपाल से ही हर बात पे, अगर आप याद हो आपको वो जब रोने लगता है वो कहते हैं यहाँ पे स्टेशन बनेगा और यहाँ पे कभी सेल संत को नहीं उतारेंगे, तो ही लुक्स एट हिम एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग बिकॉज ही नोज दैट ही इज मेरे लिए कर रहे हैं। तो मैं उनका साथी, मुझे भाई भी बोलते हैं, मतलब मुझसे भाई भी बोलते हैं और मेरे लिए कर रहे हैं और समाज के लिए कर रहे हैं, दैट्स हाउ दैट सीन वर्क्स। तो इंटरप्रिटेशन है, अगर आपने इंटरप्रिटेशन में ध्यान नहीं दिया होता मैंने तो शायद वो सीन इतना अच्छा वर्क नहीं करता, हो सकता कोई भी ना मुझसे क्वेश्चन करता,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन फिर भी मैं उस बात पे गौर किया और उसके हिसाब से थोड़ा सा जो भी आमूलचूल परिवर्तन करते हुए फिल्म का इंटरप्रिटेशन चेंज किया, दैट वर्क फॉर पीपल। किसी ने मुझे कल ही बोला कि द वे ही लुक्स एट महाराज जी एंड स्टार्ट्स क्राइंग, वो मेरे लिए सीन में सबसे ज्यादा वर्क किया।
1: तो यहाँ माँ का ही जिक्र चल रहा है तो मुझे लगता है कि माँ के नाम एक गाना होना चाहिए, माता के नाम कौन सा गाना सुनाना चाहेंगे?
0: माँ के नाम पे माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे,

0: बहुत सारी बातें माँ पिता के बारे में संस्कार होते हैं, लेकिन ये जो मेडिकल की पढ़ाई आप कर रहे थे, मैं एमबीबीएस कर रहे थे, बाकायदा एक डॉक्टर बन चुके थे, फिर अचानक फिल्मों की ओर झुकाव कैसे हुआ? मतलब वो बीज कैसे आया? आप इतनी बड़ी मतलब एक आपको नौकरी मिल चुकी है और फिल्मों की ओर जाना कितना बड़ा रिस्क था, तो कैसे आपने चयन किया ये?
1: आई थिंक बहुत टफ था, मुझे लगता है कि मैं आ तो गया मुंबई और आया क्यों, मैंने बता दिया कि मैंने लखनऊ में ऐसा माहौल में चला गया मैं कि मुझे आर्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया, डिफरेंट आर्ट फॉर्म में पोएट्रीज लिखनी शुरू कर दी मैंने, तो वो कॉलेज में भी करता रहा, परस्यू करता रहा करता रहा, फिर एक समय ऐसा आया कि मुझे मेडिसिन पसंद आ गई। अब वो दोनों पसंद है, अब दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बना नहीं कुछ सालों, मैंने जो है यहाँ पे नौकरियां भी की मुंबई में और उसके बाद में कुछ समय मैंने अपनी क्लिनिक भी चलाई, और बाय द एंड ऑफ इट मुझे समझ में ये आया कि एक समय ऐसा हो गया कि मुझे लग रहा था कि इट इज टू एग्जॉस्टिंग टू, ये दोनों अलग अलग दुनिया है, मैं इस दुनिया में जाता हूँ फिर इस दुनिया में आता हूँ, और मेडिसिन जो है ना, चूंकि आई एम लिटिल इमोशनल पर्सन, मैं अपना मोबाइल फोन कभी स्विच ऑफ नहीं करता था, यानी साइलेंट भी नहीं करता था, पता नहीं किस पेशेंट का किस हालत में कॉल आ जाए, किस व्यक्ति का जान जो है ना जोखिम में हो और वो बोल रहे हो, लेकिन लोग कॉल ऐसे भी करते थे, सर 2 बजे के सर जो है थोड़ा पेट में गैस बन गया, हॉस्पिटलाइज्ड है, बोल रहे हैं पेट में गैस बन गया, तो फिर मुझे एकदम समझ में आया कि ये दोनों मेरे लिए पॉसिबल है नहीं, और मैंने अपनी पीक जो प्रैक्टिस थी उस पर चलते हुए मैंने अचानक से एक दिन क्लिनिक बंद कर दिया, और तब से मैं वो सारे जो पेशेंट्स हैं उन सबके मैं फोन पे इलाज कर रहा हूँ कई सालों से तो ऐसा नहीं होने उनको छोड़ दिया सागर में नैया डालते हैं, उनको मजार में नहीं छोड़ा मैंने तो खैर, विद देन फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स 2011 में मैंने अपनी क्लिनिक बंद की, और उसके बाद से मैंने उसी समय मैंने कैमरा खरीदा और सेम समय मैंने म्यूजिक भी छोड़ा था, म्यूजिक और मेडिसिन दोनों छोड़ दी मैंने। मैंने एक फिल्म साइन की थी और काफी बड़े प्रोड्यूसर थे उनके, मैं आज भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनके साथ मैंने काम भी किया बाद में आगे जाके, तो उनकी एक फिल्म थी जिसके सारे गाने मैं कर रहा था, सारे गाने सिलेक्ट हो जाते हैं, 2 साल तक उस पर काम चलता रहता है, फिर एक समय ऐसा आता है कि वो गाने शायद वो डायरेक्टर के लिए वर्क नहीं कर रहे थे, या वो डिसाइडेड कि मुझे लगता है कि मैं म्यूजिक डायरेक्टर अच्छा हूं नहीं, मैं म्यूजिक कंपोजर शायद सिंगर सॉन्ग राइटर ज्यादा अच्छा हूं, मैं अपने लिए अच्छा गाने म्यूजिक बनाता हूं, गाने बनाता हूं, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए मैं शायद बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, मैं उस बात को क्वेश्चन करने लगा, और अल्टीमेटली मुझे डायरेक्ट करना था, लिखना था और डायरेक्ट करना था, मेरा वो अल्टीमेट उद्देश्य था, तो मैंने कहा कि जब वो ही अल्टीमेट है तो मैं क्यों ना उस पर ही लगूं। 2011 से 26 तक 15 साल तक 14 साल तक वो 25 तक मैं कहूंगा वो यात्रा पूरी मेरी चर्निंग चली है टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन टू राइटिंग ये वो सब कुछ जो भी है। तो पहली स्क्रिप्ट मैंने 6 साल में लिखी, 6 साल तक एक ही स्क्रिप्ट थी मेरे पास में, दूसरी स्क्रिप्ट मेरे 1.5 साल में अनदर स्क्रिप्ट, फिर साल में फिर हर 2 महीने पे एक स्क्रिप्ट लिखने लगा मैं, तो ऐसा मेरे पास कुछ 53 कॉन्सेप्ट 54 स्क्रिप्ट प्लस कॉन्सेप्ट है जिन पे मैं अलग अलग समय पे काम करता रहा हूं या करना चाहता हूं भविष्य में।
0: और ये स्क्रिप्ट 15 दिन में लिखी तो अगली स्क्रिप्ट 10 दिन
1: नहीं ऐसा डिजिटल माध्यम से, अगर डिजिटल माध्यम से निकल गए तो कुछ भी हो सकता है, वो तो डाउनलोड है।
0: यहाँ पर गाना सुनवाते हैं।

0: गाने के बाद विशाल जी हमारे श्रोताओं को बताइए कि एमबीबीएस आपने बचपन के उस संसार के बारे में बताया जहां माँ की मार थी, डांट थी। जब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे आप, तो उस समय टीचर्स की, प्रोफेसर्स की डांट भी तो रही होगी, उनके बारे में भी बताइए, कोई दिलचस्प घटना बताइए।
1: तो मेडिकल कॉलेज में जो है ना, कुछ होता नहीं, इज्जत नहीं होती है जूनियर की, है ना। मतलब ऐसा होता है कि वो कॉलेज के अंदर एकदम बहुत ही दयनीय स्थिति होती है पहले साल में। और मुझे क्या था कि मुझे, अब वो नया नया कॉलेज में हूँ लेकिन जाना तो बम्बई है
0: जी।
1: तो मैं दोस्तों के साथ में, दो तीन दोस्त मिलके बम्बई चले गए, हमने 15 दिन का बंक मार दिया। अब मेरा दूसरा दोस्त था, वो भी एमबीबीएस ही कर रहा था, बहुत अच्छा गिटारिस्ट है, निरंजन पांडे, उसका इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई में था नहीं, बिल्कुल ही नहीं था, और वो बहुत ही होमसिक भी था, ये सब चीजें थी। हम तीनों दो लोग और मेरा एक लखनऊ का दोस्त, हम सब लोग बम्बई आए कि वहां पर जो गाने हैं, सॉन्ग्स हैं, वो हम पिच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करके 15-17 दिन मैंने वहां पे करके वापस गया अपने कॉलेज। तो वहां पे बंक मारना, अच्छा तो वहां पे मेरे बहुत, अभी तो बहुत दिल अजीज टीचर हैं वो, रामजी पवार उनका नाम है, डॉक्टर रामजी पवार, एनाटॉमी पढ़ाते थे वो। ऐसा टॉल, डार्क, हैंडसम, 6 फीट, और मतलब क्या पर्सनालिटी थी, मतलब हमारे कॉलेज के अमिताभ बच्चन थे वो, सब फैसिनेटेड रहते थे उनसे। लेकिन वो बहुत फ्यूर, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते थे,
0: अच्छा,
1: और वो पकड़ लिया तो वो कुछ भी करेंगे। तो मेरे थोड़े से बाल लंबे हो गए, थोड़े लंबे बालों, मुझे लंबे बाल करने का शौक भी था, मुंबई से आया लंबे बाल के साथ में, और गलती से मैं जो है ना आगे वाली सीट पे बैठ गया।
0: अच्छा,
1: अब उन्होंने पहले से नोटिस कर रखा था कि ये लड़का गायब है, या बहुत दिन से दिखाई नहीं दिया है। तो उन्होंने बोला, किसी को सवाल किया कल क्या एनाटॉमी का कुछ तो सवाल था, जिसका जवाब मैं दे नहीं पाया, और वो पता नहीं वो आगे बैठने की वजह से उन्होंने पकड़ लिया, और उन्होंने मेरा सर पकड़ा, ऐसा बाल पकड़ और बाल पकड़ के पूरा ऐसा, और कई बार उन्होंने 7-10 मिनट का लेक्चर बाल पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाते हिलाते किया। तो जो इंसल्ट थी, जो जिसको बोलते हैं, हाँ, जो अनुभव की, और क्या ये क्या कर दिया मैंने, और ये आगे क्यों बैठना था। तो ये सारी चीजें जब हुई तो कहीं ना कहीं उसके बाद से मेरा एक इंटरेस्ट वापस पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई की तरफ ध्यान देने, क्योंकि इंसल्ट हो गई है। अभी तक तो आप म्यूजिशियन हो, पोइट हो, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट यू बिकॉज यू समहाउ। मैं ऐसा था कि मैं जब पहुंचा था अपने कॉलेज, तो पहुंचने से पहले लोगों को पता था कि दिस गाय जो कि इसका बैंड है लखनऊ में और बहुत अच्छा गाता है, ऑल ऑफ दैट। तो मैं ऐसा छोटे से स्टार की तरह एंट्री हुई थी कॉलेज में, और वो जो धुलाई हुई मेरी, उसकी वजह से मैंने थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया, नहीं तो पहले साल में फेल हो जाता मैं।
0: यहाँ पर पढ़ाई और धुलाई दोनों की बात हो गई, बैंड का जिक्र किया लखनऊ में, कौन सा बैंड था, म्यूजिक बैंड?
1: म्यूजिक बैंड था, अपने मेरे अपने कंपोज सॉन्ग्स थे। मेरे एक मित्र हैं शिखर श्रीवास्तव, अभी वो

0: गल्फ में चले गए, वहां म्यूजिक टीचर हैं, और भी दो दोस्त थे ऐसे, तो हम मिलके जो है ना वी हैड अ बैंड, तो वहां पे जाके लाइव परफॉर्मेंसेस करते थे ओरिजिनल सॉन्ग्स के. सो वी वर इन अ वे लिटिल पॉपुलर ऑल्सो, बट देन मूव टू गोरखपुर. गोरखपुर में तो क्या ही होता है, मतलब कॉलेज कल्चरल साल में एक बार होते हैं, उन तीन दिन में अपन स्टार होते हैं, उसके बाद फिर वापस वही जो है जैसे बोलते ना कि रेगुलर डेज ऑफ लाइफ. तो वो पांच छह साल मैंने बहुत म्यूजिक को मिस किया कि मैं सीख नहीं पा रहा था और ये सब कुछ था. लेकिन फिर आके मुंबई आके भी मैंने एक बार इन बिटवीन 2017 एंड 2020 आई डिड इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स, शॉट देम वेल, ऑल ऑफ दैट. तो वो एक इंटरेस्ट जो था उसको मैंने पूरा कर लिया.
1: अगर याद है वो म्यूजिक बैंड का कुछ,
0: आई कैन सिंग अ सॉन्ग, या आई कैन सिंग कपल ऑफ लाइन्स. एक हवा का हूं झोंका उड़ता ही फिर रहा हूं, इस गली उस डगर को घूमता फिर रहा हूं, रास्ते ही जिंदगी, क्या है गम क्या है खुशी, कौन जाने यहां
1: क्या बात.
0: दिस वॉज वन सॉन्ग, उसकी उसकी एक दो लाइनें बहुत सुंदर लाइनें, वो मैंने लद्दाख में पूरा फिल्म आया था उसको.
1: यहाँ जिक्र कविता का भी चला ना, और यादों के गलियारों में इस समय सैर कर रहे हैं, तो कोई कविता याद है वो जो उन दिनों में लिखी है, कोई खास कविता?
0: एक खास कविता है जो मैं अभी मैंने रिसेंटली एक जयपुरिया स्कूल है लखनऊ में वहां पे बच्चों के सामने भी पढ़ी मैंने, क्योंकि ये लगभग मेरी उस समय की कविता है. अभी मैं कविताएं लिखता हूं पर मैं वो थोड़ी मुझे लगता है कि सिंप्लीफाइड जीवन क्वेश्चन अपने आप से हरदम होता है ना कि ये जीवन है किस लिए, क्यों जी रहे हैं जीवन, अल्टीमेटली क्यों जी रहे हैं, उसको क्वेश्चन करते हुए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी कि मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूं.
1: क्या बात है,
0: इतना ट्रिवियल है ह्यूमन लाइफ. मैं कुछ नहीं बस मैं एक पात हूं, हवा जो तेज चल गई तो बीती हुई बात हूं, जमी से हूं उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया.
1: क्या बात है, वाह.
0: जमी से हूं उत्पन्न में, जमी में जाके घुल गया, देख तेरा लाल माँ तुझे सांझ ढले मिल गया.
1: वाह वाह वाह,
0: ईश्वर माँ है. और डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, डाल से बिछड़ने का शिकवा मुझको कुछ नहीं, हूं धन्य मेरी खाद से जो एक फूल खिल गया.
1: क्या बात है, वाह. तो आपके व्यक्तित्व के इतने सारे पहलू उजागर हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर एक गाना सुनवाते हैं. बताइए कौन सा गाना सुनवाए.
0: गाना आप सुनाइए रहमान साहब का वंदे मातरम, दैट्स माय वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स.
1: सुनते हैं ये गाना.

0: अब गाने के बाद विशाल जी, चाय वाली एक कविता
1: जी
0: बड़ी मशहूर हुई है आपकी, तो याद कीजिए और सुनाइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी, तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं क्या जो सिनेमा में मैंने सीखा है, स्टोरी टेलिंग में जो सीखा है, क्या मैं उसको किसी कविता पे अप्लाई कर सकता हूँ।
0: जी,
1: तो चाय को एक सेंट्रल कैरेक्टर बना के, यानी चाय को एक हीरो बना के मैंने एक कविता लिखी।
0: जी,
1: इसके अंदर वो सब कुछ है, इसके अंदर विलेन भी है, इसके अंदर महिमा मंडन भी है, इलेवेशन सीन भी है, जो होता है ना फिल्मों के, जो थ्री स्ट्रक्चर होते हैं, तीन स्ट्रक्चर भी हैं, फिर रेजोल्यूशन भी है।
0: तो क्या तरन्नुम में भी गाते हैं?
1: नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप इसे सुनिए।
0: ठीक है, ठीक है, सुनाइए।
1: चाय को मना कौन करता है भाई,
0: चाय को मना
1: चाय को मना कौन करता है भाई, कत्थई सी, रसीली सी, नशीली सी, अदरक सी तीखी, गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक, करंट मारती, जगाती हंसाती, मूड बनाती, मिलने के बहाने सुझाती,
0: क्या बात है,
1: मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय,
0: क्या बात है,
1: होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई।
0: वाह वाह, बहुत बढ़िया।
1: कत्थई सी, रसीली सी, नशीली सी, अदरक सी तीखी, गुड़ सी मीठी, इलायची सी मोहक, रोचक विमोचक, करंट मारती, जगाती हंसाती, मूड बनाती, बातें कराती, मिलने के बहाने सुझाती, मुस्कुराहटें लाती, कड़क रसीली नशीली चाय, होश खोल देती है, इसे मना कौन करता है भाई। लेखक रसपान कर उपन्यास लिख दें, कवि मीठी जुबान लिख दें, फिल्मकार कहानी कर दें, पात्र सब मुंह जबानी कह दें,
0: क्या बात है,
1: पात्र सब मुंह जबानी जुबानी कह दें, टपरी पे की कटिंग देती है गुहार, सुगंध छोड़ती है ले आती है बाहर, और कड़वी है कॉफी, यहां से विलेन की एंट्री,
0: और कड़वी है कॉफी
1: और कड़वी है कॉफी और चाय की है अपनी ही मिठास,
0: क्या बात है,
1: और कॉफी बोले अंग्रेजी पर अपनी चाय करती है हिंदी में बात,
0: वाह वाह वाह,
1: थकान मिटा देती है, इसे मना कौन करता है भाई। अब ये हो गया, विलेन खड़ा कर दिया, अब रेजोल्यूशन है भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है,
0: क्या बात है
1: भाई, कॉफी से कोई तकलीफ नहीं है, उसकी अपनी शान होगी, कोई ऊंची दुकान होगी, होंगे एयर कंडीशन में मोका अमेरिकाने की चुस्की के अपने स्वाद, तुम्हारी कॉफी रहे आबाद,
0: क्या बात है, वाह,
1: पर अपनी चाय जिंदाबाद जिंदाबाद,
0: वाह,
1: और फिर कांच के कप में मचलती चली आए, और कैसी चमक छोड़ती है, इसे मना कौन करता है भाई,
0: वाह,
1: इसे मना कौन करता है भाई, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क रसीली नशीली चाय, कड़क,
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो इतने सारे हुनर आपके सामने आ रहे हैं आज की इस बातचीत में। विशाल जी, एक बार फिर आपकी फिल्म की ओर चलते हैं, हनुमान अंश की ओर। इसमें जो कलाकार हैं लक्ष्मी नारायण शर्मा, तो ये पात्र कैसे मिले, मतलब कैसे आपने चयन किया कलाकारों का, एक बच्चा है फिर बड़ा बड़े कलाकार का, सत्य
1: शोभना
0: सत्य कहाँ से मिले ये?
1: तो मैं एक ही करके बताता हूँ। तो सबसे पहले जिनको आप कलाकार को देख रहे हैं, जिनका नाम है चंदन के आनंद, जिन्होंने डॉक्टर भोसले का रोल प्ले किया है।

0: वो मेरे मित्र थे, एक ही बिल्डिंग में हम रहते थे, पर बहुत समय के बाद में मुझे एक कैरेक्टर चाहिए था, नॉट भोसलेस, मुझे चाहिए था नासिर अली के रोल के लिए
1: जी।
0: तो मैंने उनको नासिर अली के रोल के लिए चयनित किया था। एक राजीव मिश्रा जी हैं, उनको मैंने सुखी राम के लिए चूज किया था। और हुआ सेट पे ऐसा कि चूंकि मुझे डॉक्टर भोसले जिनको मैं कास्ट करना चाह रहा था, कोई बड़े एक्टर थे
1: जी।
0: वो जब उनका नहीं हो पाया आखिरी तक, तो मैंने फिर इनको नासिर अली की जगह डॉक्टर भोसले प्रपोज किया, और जिन जो सुखी राम प्ले कर रहे थे उनको नासिर अली प्रपोज किया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हो जाएगा, और वो ऐसे फिट हुए दोनों के दोनों। आई हैड एन आइडिया कि ये होगा, और मैं दिमाग में था कि अगर ये नहीं होगा तो मैं ये करूंगा। तो चयन तो किसी और कैरेक्टर के लिए, पांच कैरेक्टर्स उस दो सीन के अंदर थे जिनको अपग्रेड किया मैंने। तो जो नीचे वाले रोल पे था ऊपर गया, उसके ऊपर वाले ऊपर पे गया, ऐसे ऐसे करके सब सबका ऐसा होगा। देन जो बच्चा है विहान शेडगे, जिसने लक्ष्मी नारायण जी का रोल प्ले किया है, बचपन का लक्ष्मी नारायण का रोल प्ले किया है, उसके साथ मैंने एक एड किया था पिछले साल, उसके पहले साल। और वो और जो पार्वती जिन्होंने प्ले किया है नेहा परांजपे, उन दोनों ने दोनों मराठी है। और वो मैंने
1: नेहा परांजपे विविध भारती में कैजुअल अनाउंसर थी
0: रही है। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है,
1: अभी भी कैजुअल
0: आकाशवाणी करती है
1: जी जी।
0: तो नेहा और इन दोनों ने मैंने एक मराठी एड किया था, और वो इतना पॉपुलर हुआ एड वो, मैं मराठी मैं बोल नहीं सकता, समझता हूँ, मैंने वो मराठी एड था और वो इतना पॉपुलर हुआ। ये दोनों ने इतना अच्छा उसमें एक्टिंग की थी, और इतने सिंगल टेक एक्टर्स थे लोग दोनों के दोनों, एक पुणे से आया था और एक यहाँ से आया था, बट इट्स सच अ ग्रेट कॉम्बिनेशन दैट आई ऑलवेज थॉट कि मैं इनको किसी दिन कास्ट करूंगा। तो ये दो कैरेक्टर वहां से आए। फिर जिन्होंने राम बेटी श्रीमती राम बेटी शर्मा जी का, मतलब महाराज जी की पत्नी का रोल प्ले किया है, वो उनको मैंने चयनित किया, उनके ऑडिशंस में वो चयनित हुई। जो चोर का जिसने रोल किया है अभिषेक जो है ना, वो चित्रकूट से ही कास्ट किया उसको मैंने, उसने पहली बार कैमरा फेस किया। ज्यादातर जो कोतवाली वाले सीन के सारे एक्टर्स जो है ना, वो वहीं से लोकली चयनित किए गए हैं। जो ट्रेन सिक्वेंस में जो इंग्लिश एक्टर्स हैं वो सारे रशियंस हैं, और उसमें तीन जो अंग्रेज बैठे हैं वो तीनों के तीनों एक एल्बिनो हैं, और वहीं के लोकल हलवाई वलवाई पकड़ के लेके आके हमने उनको उनसे एक्टिंग कराई है, जो पता नहीं चलता है आपको। तो बहुत कास्टिंग के लेवल पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। शोभना सत्य जो है ना, वो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और मेरी लीड कास्ट की तबीयत खराब हो जाती है, और वो नीम करोली बाबा जैसे महाराज जी से दिखता था वो। मैं जब वो पहले दिन मेरे ऑफिस आया था, तो मैं एग्जैक्टली सीधे इमीडिएटली मैंने बोला तो महाराज जी, और मैं उस पर गुस्सा था कि वो तीन दिन बाद आए, लेट आया था वो। सो आई वाज एंग्री एट हिम, कह रहे यार तुम असिस्टेंट डायरेक्टर हो, तुम तीन दिन लेट आ रहे हो। तो मैं गया लेकिन भूल गया, मैं तो बोला ये महाराज जी है, बट मेरे लीड एक्टर की तबीयत खराब हो जाती है उन सेट। तो रिप्लेसमेंट के तौर पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ मंदाकिनी रिवर पे, तुलसी घाट पे, चित्रकूट के तुलसी घाट पे, जहां पे तुलसी जी ने बहुत बहुत सारी चीजें लिखी भी है, उसी घाट पे मैं उसका 5 घंटे तक टेस्ट करता हूँ, और फिर वो सुर पकड़ लेता है। जब वो सुर पकड़ लेता है, तो मेरी एक आदत है, आदत नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि मैं एक्टर्स को बहुत ओवर गाइड नहीं करता हूँ, मैं उनको ओवर इन्फॉर्म भी नहीं करता, मैं सिर्फ उनके उनके कैरेक्टर के बारे में बात करता हूँ।
1: अच्छा,
0: मेरी टेक्निक ही है कि मैं सारे एक्टर्स को, चाहे नया हो पुराना हो, उसको उसके कैरेक्टर के बारे में कंसिस्टेंटली बताता रहता हूँ। ह्यूमन माइंड इतना रिसेप्टिव होता है और इतना समझदार है कि जैसे ही वो अपने कैरेक्टर को समझ पाएगा, वो बिहेव करने लगेगा वैसा।
1: बिल्कुल,
0: हम अपने बच्चे के सामने पिता की तरह बिहेव करते हैं, वही हम पत्नी आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, और मैं माता आती है तो मैं दूसरी तरह बिहेव करता हूँ, दोस्त आता है तो अरे यार करके बात शुरू कर देता हूँ। हम अपने जीवन में जैसे ही हम अपने रोल को समझ पाते हैं, हम इमीडिएटली वैसा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतने सिंपल प्रोसेस है। मैं किसी भी, जितने भी आपने एक्टर्स देख रहे हैं, उसमें कुछ लोग बहुत तगड़े एक्टर्स हैं, कुछ लोग बहुत वीक एक्टर्स भी हैं, पर उनका एक ही मेरा तरीका है, मैं सब किसी को कैमरे के सामने डांटता नहीं हूं। अगर मुझे किसी एक्टर से बात करनी है, मैं उसको साइड में ले जाऊंगा और फिर से वही बात समझाऊंगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पहले से। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स, तो यही शोभना के साथ में भी हुआ कि मैंने उसको ओवर इन्फॉर्म नहीं किया। वंस ही कॉट द कैरेक्टर, जब उसने कैरेक्टर पकड़ लिया, डायलॉग्स उसको याद है, हिंदी उसकी अच्छी है, तो मैं क्यों उसको ओवर इंस्ट्रक्ट करूं। और वो फिर बहुत स्मूथ प्रोसेस हो गई कि हमने 22 दिन में रिकॉर्ड टाइम के अंदर हमने 2.5 घंटे की फिल्म शूट करी है
1: जी, हिट हुई। तो अब यहाँ एक गाना होना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाया।
0: तो मैं चाहूंगा कि आप फिर से हनुमान अंश फिल्म का ही एक गाना प्ले करें, जिसका टाइटल है सासा हाले हासा चाले।
1: सुनते हैं ये गाना।

0: विशाल जी, संघर्ष के दिनों में आगे बढ़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिलती है? जब आपका संघर्ष चल रहा था, उस समय कौन सी प्रेरणा आपको आगे बढ़ा रही थी?
1: आई थिंक वो एक आपकी जो क्या होता है कि कभी भी अपने जीवन को यदि आप किसी बहुत बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लें तो फिर वो सब चलता रहता है। फिल्म मेकिंग मेरे लिए पैसे कमाने का या नाम कमाने का जरिया नहीं है, मेरे लिए इम्पैक्ट सिनेमा, समाज पे इम्पैक्ट होना, समाज पे क्या असर डालेगा आप कैसे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन की दुनिया है, इन्फॉर्मेशन का एज है, इस एज में इन्फॉर्मेशन ही सबको ड्राइव कर रही है। हम ये पानी की बॉटल से पानी पीना चाहिए हमको, ये बेसिस इन्फॉर्मेशन है और यही ड्राइव कर रहा है, तो गलत है सही है वो बात की बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो इन्फॉर्मेशन के दुनिया में आप इन्फॉर्मेशन को कैसे पॉकेट करो और समाज में एक नई राह पे उनको एक नया इंटरेस्टिंग कोई पर्सपेक्टिव दो, ये ड्राइव करता है मुझे, तो वो इसलिए मुझे कभी हुआ नहीं। और मैं बहुत ही, रघु जी जानते हैं बात, कि मैं बहुत मॉडेस्ट लाइफ जीता हूं, कोई किसी तरह का व्यसन नहीं है और पार्टियां वार्टियां नहीं करता हूं, किसी तरह कोई खर्चा अदरवाइज है नहीं, जो गाड़ी में पेट्रोल पड़ता है वो, खाने पीना और जो किराए हैं यही मेरे खर्चे हैं, इसके ऊपर किताबें खरीदना और फिल्में देखना ये दूसरे खर्चे हैं जो एक्चुअली जिसे बोलते हैं कि जो लग्जरी है, या कभी टेंटिंग वेंटिंग करने के लिए उस तरह का, उसमें बहुत मुझे मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाके मतलब टेंटिंग करूं और एकांत में जाके, तो ये मेरे शौक है, जिस वजह से मैंने काफी अपने जीवन को बहुत ही मॉडरेट लाइफ में, मिनिमल और मॉडरेट लाइफ की तरह से जीता हूं, तो बहुत आवश्यकताएं जब नहीं होती हैं तो आप किसी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते और आपका जीवन चलता रहता है। जीवन जब चलता नहीं है, जब उसमें कांस्टेंट स्ट्रगल होती रहती है और आप किल्लत में हैं, इसमें हैं, उसमें, फिर आप उल्टी सीधी संगत में जाते हैं, फिर आप नए नए रास्ते निकालते हैं जो सही रास्ते नहीं है, तो इनकी वजह से मुझे खास कभी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं और मैं बहुत जो मेरे अंदर है वो बहुत वोकल हूं उसको लेके मैं, और मैं बहुत क्लियरली बोलता हूं, तो मुझे इस परिवेश में रहते हुए भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं अनसक्सेसफुल हूं या मुझे सक्सेस पानी है। फिल्म बनानी है, ये डेफिनेटली एक बात थी जो कि हरदम कचोटती थी कि यार सब कुछ कर लिया।

0: नहीं बन रही अपनी।
1: जी विशाल जी, रघु का जिक्र आपने किया, रघुविंदर सिंह
0: जी,
1: और फिल्म में इनका नाम भी बाकायदा हम देखते हैं
0: जी,
1: तो इनके बारे में बताइए, इनकी फिल्म में क्या भूमिका है और क्या योगदान रहा है आपकी इस फिल्म मेकिंग में?
0: मुझे लगता है कि जीवन में मतलब काफी मेरे मित्रों के नाम फिल्में हैं, और जिसमें से एक फिल्म इंडस्ट्री के एक जो मेरे सबसे क्लोजेस्ट सबसे ओल्डेस्ट फ्रेंड्स में से, मतलब मैं कहूंगा रघु ही एक अकेले फ्रेंड है जो मेरे घर में मतलब घर की तरह से ही रहे हैं, और मतलब ऐसा नहीं कि इनके पास घर नहीं था, ये मेरे घर पे आके टिका करते थे ना, अपना जॉब करके आ गए तो अपना जागरण में काम करते थे, फिर फिल्म फेयर चले गए, तो उनके साथ में एक जर्नी कंसिस्टेंटली जो ना हमारे दोनों के बीच में एक वो भी है कि हम एक दूसरे से सलाह भी बहुत लेते हैं, तो मेरे सलाहकार भी हैं बहुत समय से, और मैं भी इनका सलाहकार हूं, ऐसा नहीं कि मैं ये सब सलाह लेते हैं। फिर मैं डॉक्टर हूं इनका
1: जी।
0: तो इनकी तबीयत जब जब खराब होती थी तो जो होता था तो मैं इसका इलाज भी करता, तो मेरे घर पे आके ही फिर मेरा इसको हॉस्पिटल बना के उसमें इलाज भी कराते थे
1: जी।
0: लेकिन हमने साथ में काम, शायद मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ काम ऐसा किया, अब हम साथ में काम करेंगे भविष्य में, लेकिन रघु की जर्नी, रघु का जो जो उसकी बेस्ट उसकी क्वालिटीज हैं वो ये है, बहुत सारा बहुत सीखता हूं उससे कि कैसे हाउ टू मेंटेन रिलेशंस, हाउ टू पूरी फिल्म जो इंडस्ट्री है वो पीपल मैनेजमेंट की इंडस्ट्री है, इफ यू नो हाउ टू मैनेज, एंड ही नोज इट सो वेल, एंड बहुत बैलेंस्ड है, बहुत शार्प है, बहुत क्लियर थॉट प्रोसेस है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है कि ये ऐसा क्यों होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा, उसकी क्लैरिटी थॉट है, और हिंदी के बहुत अच्छे जर्नलिस्ट भी रहे, हमें हिंदी भी बहुत जोड़ती है आपस में, मतलब मैं भी अपने आप को हिंदी नाजी नाजी तो नहीं बोलूंगा मैं, मुझे लगता है फ्लैग बेयर हूं मैं, मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ही कहना चाहिए इसको, मैं बॉलीवुड नहीं कहना पसंद करता हूं, मेरे ट्विटर वगैरह जहां भी जाएंगे आपको लिखे दिखा मिलेगा फ्रॉम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नॉट बॉलीवुड, तो वो हमारा
1: वो इलाहाबाद के आप लखनऊ के
0: जी,
1: ये भी एक रिश्ता है, तो
0: मिले तो ही मुंबई में थे, मेरे पेशेंट थे जब मैं क्लिनिक चलाता था, तो ये एक दिन एक मित्र मनीष,
1: अभी तो आपके बहुत सारे पेशेंट हो गए फिल्म के माध्यम से, जो मरीज हो गए कि आपसे मिलने के लिए इच्छुक है एक लंबी तादाद, अमूमन लोग एक्टर एक्ट्रेसेस के फैन होते हैं, ये हम पहली बार देख रहे हैं कि एक डायरेक्टर और राइटर के इतने बड़े फैन फॉलोअर्स हो रहे हैं, तो ये आपके लिए शुभकामनाएं और बधाई के पात्र हैं आप, बहुत सारी बधाइयां। यहां हमें हमारे श्रोताओं को बताइए कि मुंबई में रहते हुए आप लखनऊ रहे और बुंदेलखंड का जीवन जिया है, तो यहां उन शहरों को क्या चीज मिस करते हैं, कौन सी बात आप मिस करते हैं?
0: एक तो वो शांति और जो बेफिक्री होती है ना, जिसमें कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाते से ही आपको एक शांत वो महसूस होता है, जैसे कि जीवन चल रहा है उसी पेस पे चल रहा है, प्रॉब्लम जैसे मेरा अंतरंग मेरा मन चल रहा है मेरा शरीर चल रहा है, यहां पे शरीर और वो सब पीछे रहता है और आप हरदम कॉन्स्टेंटली उसको कोप अप करने के लिए कॉफियां चाय दुनिया भर के इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ताकि आप जो ना उसके साथ कोप अप कर पाओ। लेकिन मुंबई जो है मुझे बहुत सुंदर शहर इसलिए लगता है क्योंकि एक तो यहां लोगों के बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होता प्रॉब्लम, तो एक बहुत सिक्योर्ड शहर लगता है
1: जी, बिल्कुल बहुत ऐसा अनुशासित
0: है, लोगों से आपको भय नहीं होता, लोगों ऐसा लगता नहीं कि आपको ये व्यक्ति कुछ बात मांगने पूछने जाएंगे तो वो आदमी मना कर देगा, बहुत सौहार्द रहता है, लोग बहुत हेल्पिंग है, और जिस तरह से महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षित शहर है, जिस तरह की भाषा का लोग प्रयोग करते हैं, ऑटो वाला कभी आपको मीटर उल्टा नहीं मारता है, ऐसी हजारों खूबियां हैं शहर के अंदर
1: जी।
0: जो वहां पे आपको टेंशन होती है वहां पे उलझन होती है, जिस तरह से लोग जो है ना हर चीज को मतलब ग्रैब करने के लिए दे कॉम्पीट एंड बहुत ज्यादा, तो मुंबई में उतना वो मुझे लगता है इस मामले में बहुत रिलैक्स है, लेकिन अदरवाइज अगर आप कहोगे कि सुबह सुबह कहां की अच्छी होती है और शाम कहां की अच्छी होती है, तो वह लखनऊ से ज्यादा अच्छी कहीं नहीं होती।
1: बिल्कुल, बनारस की सुबह और
0: लखनऊ की शाम, अवध की शाम,
1: अवध की शाम जी। विशाल जी, एक आखिरी बात जो पहले हमें जाननी चाहिए थी, मेरे जहन में भी है और वो मैं भी बहुत पसंद करती हूँ, उत्तराखंड की पहाड़ियां, कैची धाम जहां पर आप रहे हैं, कैची धाम की पहाड़ियां तो किस तरह से आपको मोहित करती रही, और फिल्मांकन भी उन्हीं इलाकों में किया है, तो कुछ शूटिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए हमारे श्रोताओं को बहुत संक्षेप में।
0: तो आप चूंकि आप देख के आपको लग रहा है कि वो उत्तराखंड की पहाड़ियां हैं, वो सब चित्रकूट है।
1: ओहो,
0: और
1: चित्रकूट
0: चित्रकूट है।
1: ओहो,
0: तो जो भी आप उसमें बर्फ की पहाड़ियां देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो सब हमने वीएफएक्स पे क्रिएट किया है।
1: चित्रकूट यानी उत्तर प्रदेश, चित्रकूट
0: उत्तर प्रदेश का चित्रकूट जो है ना,
1: वाह क्या बात है। और सब लोग ये समझ रहे हैं कि वो उत्तराखंड है और कैची धाम है क्योंकि आपने कई बार
0: धाम भी दिखाया है, जो भी आपने दिखाया वो अगमर्षण कुंड है जहाँ पे यक्ष का और युधिष्ठिर का संवाद हुआ था। हाँ। वो धारकुंडी नाम का एक आश्रम है जो चित्रकूट

0: के डीप इन जंगल्स हैं, जहां पे तेंदुए और दुनिया भर के वो सब हमारे यूनिट ने भी देख लिए, तो मतलब वो ऐसी ऐसी चीजें हुई है वहां पे, और अजगर वजगर सब कुछ था वहां पे,
1: घने जंगल हैं।
0: तो हमने वहां जाके शूट किया उसको, अगमर्षण कुंड में, दधारकुंडी आश्रम था वहां पे शूट करना। इसके अलावा चित्रकूट में जितनी भी आप लोकेशन देख रहे हैं, नदियां देख रहे हैं, जंगल देख रहे हैं, सब वो हमने मैच कर दिए। तो फिल्म मेकिंग जो है ना, वो बोलते हैं कि इट्स ऑल अबाउट मैचिंग, इट्स ऑल अबाउट मेक बिलीव, इट्स ऑल अबाउट चीटिंग टू, जिसे बोलते हैं चीट सीन करना। रियल लोकेशन है वो, लेकिन किसी और जगह की है, पर आपको वो ऐसा महसूस कराती है भावनात्मक लेवल पे, आपको ऐसे वहां पहुंच ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो जो भी आप एलिमेंटली जो चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो वहां का, वो आप कर लेते हो। इस तरह से हमने किसी तरह से चित्रकूट में ही, और चित्रकूट नहीं होता तो शायद ही फिल्म उस बजट में जिसमें बनाई बन नहीं पाती।
1: बिल्कुल। अब चलते चलते हमारे जो नए श्रोता है, युवा श्रोता, उन्हें कुछ दो लाइन में संदेश दे सकते हैं तो दीजिए।
0: तो मुझे लगता है कि हम भारतीय जो जो संस्कृति है, जो संत परंपरा है, जिसने धागे की तरह से पूरे पिछले 5-7 हजार साल में सारा टेक्स्ट, सारा लिटरेचर और समाज को बांध के रखा है। संत समाज से बाहर निकल जाता है, ना उसका जाति होती है, ना उसका कोई संप्रदाय होता है। संप्रदाय होते हैं, पर वो संप्रदाय फिल्म के अंदर आपने उसमें देखा भी, उसी में विरक्ति उसको हो जाती है। वो ना नाम से अटैचमेंट रखता है, ना किसी जेंडर से अटैचमेंट रखता है, वो पूरी तरह से ईश्वर का हो जाता है। जब आदमी अपने आप को बिल्कुल बाहर रख के थर्ड पर्सपेक्टिव से, दृष्टा भाव से देखता है, एक संत दृष्टा भाव से ही दुनिया को देखता है, तो सारे जो मैल होते हैं ना, वो सारे मैल आपको दिखने बंद हो जाते हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम तीन चीजें जो नीम कोरली बाबा भी बोलते थे, लव ऑल, सभी को प्रेम करो, फीड ऑल, भूखे व्यक्ति को भोजन जरूर खिलाओ, सबसे पहले खाना पूछो आदमी को, और तीसरा राम राम लिखो, ईश्वर को हरदम याद करते रहो। ये तीन चीजें वो सिखा के गए। मुझे लगता है कि जो जेंजी है या जो नई जनरेशन है, वो भी ऐसा ही कुछ सोचती है, जस्ट दैट उनको अलाइन करने की आवश्यकता है। वो भी यही बातें कर रहे हैं, वो कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, यही बातें कर रहे हैं, पर उनको पता नहीं कि ये एक्चुअली कोर है। और यही तो, इसलिए नीम कोरली बाबा की जो स्टोरी है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जेंजी और जैन अल्फा को सबसे ज्यादा प्रभावित, जो मैं करना चाहता भी था, करेगी।
1: बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। क्या एक दो लाइन गुनगुनाएंगे?
0: जी। अब ना देर लगाओ देर, अब कृपा करो महादेव, अब ना देर लगाओ देर, बस कृपा करो महादेव, ये दुनिया एक छलावा, तू साचा ठोर है बाबा, के आहवा के जावा,
1: क्या बात,
0: के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, के आहवा गमन मिटा दो भोले शंकर, हर हर महादेव। इट्स प्रॉब्ली वन ऑफ द रेयरेस्ट सॉन्ग्स जो मुक्ति चाह रहा है, पर वो हंस के मांग रहा है, इतने ज्यादा फन भाव में, इतने अच्छे सुंदर भाव में, हंसते हंसते बोल रहा है कि आवागमन मिटा दो बोले शंकर।
1: जी जी विशाल जी, यहाँ विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी सारी बातें, यादें साझा की, बड़ी दिलचस्प लगी हमें, हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छी लगेंगी हमें उम्मीद है। आपका तहे दिल से शुक्रिया पूरे विविध भारती परिवार की ओर से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भी तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया हूँ, 1960s में कहीं बैठा हूँ, सब फीलिंग आ रही है।
1: नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे हनुमान अंश फिल्म के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी और अंतिम कड़ी। कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, तकनीकी सहयोग रीमा जोशी और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता।

0: झगड़ा दे।
1: दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
4: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
5: हाँ जी।
4: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
4: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
4: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
2: है ना, बोलो, बोलो।
4: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
5: कुछ लिखा
4: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: पर वादा, हाँ जी वादा।
4: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
6: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
3: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
4: इसके अलावा वेव्स ओटीटी इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है आपकी अपनी विविध भारती।
7: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 11 हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के तहत आज आपको सुनवा रही हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की गाई चुनिंदा गजलें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत चित्रा सिंह और जगजीत सिंह की गाई चुनिंदा गजलें।

दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

0: फूल खिलते हैं बहारों का।
1: जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा की माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है अपने मोबाइल

फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं ये रात फिर न आएगी फिल्म से ये नगमा, महेंद्र कपूर की आवाज में। गीतकार SH बिहारी, संगीतकार हैं OP नैयर।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश आपको सुनवा रहे हैं थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल स्वर में। गुलजार के बोल हैं खय्याम का संगीत।

0: प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज में आप सुन रहे हैं धनवान फिल्म से ये गीत। साहिर लुधियानवी के बोल हैं, हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए।

स्वीकार किया मैंने फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। निदा फाजली के लिखे इस गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

0: की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: फिल्म संगीत अब यही संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 MHz पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: दोपहर के 12 बजने वाले हैं और कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलते वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने यह बात कही। इसमें संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भी उपस्थित थे। डॉ जयशंकर ने बहुपक्षवाद के तत्काल सुधार के महत्व का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बदली वैश्विक व्यवस्था की गति को समझना जरूरी है। डॉ जयशंकर ने श्री नहयान के साथ बैठक में भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने जॉर्जिया के विदेश मंत्री माका बोत्चोरीशविली से भी मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज बैंकॉक में ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉन हीली से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उन्होंने चौथे भारत ब्रिटेन वित्तीय बाजार संवाद, फिनटेक बैठकों और संबंधित आईयूकेएफपी बैठकों के सफल समापन पर चर्चा की। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने साझा प्राथमिकताओं, रचनात्मक और समावेशी G20 प्रक्रिया की दिशा में ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा है कि भारत और कनाडा के बीच व्यापार वार्ता में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस साल पूरी होने की उम्मीद है। कल मुंबई में श्री सिद्धू ने कहा कि समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में हुई प्रगति द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। इस बीच केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और कनाडा के रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि चर्चा के दौरान CEPA के माध्यम से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों के विस्तार पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के पास मौजूद गोला बारूद की 175 किस्मों में से 159 स्वदेशी हैं। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पिछले

0: साढ़े 12 वर्ष में रक्षा क्षेत्र ने न केवल अपनी क्षमताओं का विस्तार किया है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के अपने दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव भी किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
1: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन इन द वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में यह माना जाता है कि होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। इसी तर्क पर मैं कहता हूँ होप फॉर द पीस बट प्रिपेयर फॉर वॉर।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र

0: प्रिपेयर फॉर वॉर।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से पूछा है कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति से जुड़ी चिंताओं के समाधान के लिए पाकिस्तान द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट कब जारी करेगा। इनमें हत्याओं की जांच और इंटरनेट सुविधा पर लगाई गई पाबंदियां शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की तीसरी समिति के 81वें सत्र में कल मानवाधिकार उच्चायुक्त के साथ संवाद के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुज स्वरूप ने ये बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क सुविधाओं को मजबूत करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

स्वागत है आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम यादों की महफिल में। मैं हूं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है संगीत का जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर का जन्मदिन। आज का कार्यक्रम हमने उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीतों से सजाया है। साथ ही आपको बता दें कि आज है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में पहला गीत प्रोफेसर फिल्म से, हसरत जयपुरी की बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

0: कोई जादूगर को लेके पहला पहला प्यार।
1: सीआईडी फिल्म से गीत आपने सुना आशा भोसले मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में, जहां निसार अख्तर की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
3: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
3: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और

0: ढेरो यादे 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
1: कभी बेख्याल हो
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

इस संदेश से पहले आपने गीत सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। हसरत जयपुरी के ही बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंज

0: दुश्मन
1: थी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा।
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर, दास्तान बेमिसाल संगीत की।
2: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाओ,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत पर ये गीत, क्योंकि आज है इस संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्मदिन। शादा की आवाज में सूरज फिल्म का गीत, हसर जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवें।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

जी श्रोताओं, कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी सुनने वालों का स्वागत करती हूं मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम की इबारत हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने वो पढ़ भी ली है और आपके संदेश भी हमें मिलने लगे हैं। हम आपको इबारत पढ़ के सबसे पहले सुनाएंगे और उसके बाद गीतों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इबारत है कुछ इस तरह, सुन रही सखी तीनों लोक की रानी के कदमों में सिर झुकाने को जी चाहता है। हाँ तो चल, काजल सजा, मेहंदी लगा के दुल्हनिया बन, डोली में सवार हो चल। और देख जरा, ख्याल रखना वहां कोई भवरा बेईमान न मिल जाए जो कली कली चूमता फिरता है। उसकी उड़ती जुल्फों को देखकर कहीं पागल मन व्याकुल ना हो उठे। अच्छा, कहीं कोई मंत्र फेरा तो उस पिया सिंह नैना लागे तो। नाना दैया रे, पराई है, ऐसी जुस्तुजू ना कर। अरे सुन ना, हम तो उस गांव पे सदके जहां वो मिल जाए, जिसके इश्क की तोहमत उठाने को जी चाहता है। उसके इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे। क्या बात है, अब देखिए आपको ही बूझना है कि आज के गाने कौन से हैं। और बताइए कि इश्क जिसे तोहमत कहती है दुनिया, उसे उठाने के लिए क्यों हर किसी का मन व्याकुल होता है। इबारत के साथ हमने ये प्रश्न भी इस इबारत में डाल दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में ही आज सबसे पहला गीत हमने लिया है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत।

सुहाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। आनंद पक्षी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओ, नवरात्रि का त्योहार और गरबा डांडिया की थाप ना हो, कदम ना थिरके, ऐसा कैसे हो सकता है। मां की भक्ति से सराबोर माहौल, ढोल की गूंज और रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे लोग, कितना खूबसूरत होता है ना नवरात्रि का ये उत्सव। तो देखिए, अब आपसे हम जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे उससे पहले हमने गीत सुना दिया, लेकिन फिर भी हम जानना जरूर चाहेंगे आपसे कि जब नवरात्रि के आने का इंतजार आप करते थे तो कैसा उत्साह आप में रहा करता था। पारंपरिक परिधान का, गहनों का या दोस्तों के साथ गरबा खेलने की योजनाओं का। और ये भी बताते चलिए कि गरबा और नवरात्रि से जुड़ी आपकी कोई खूबसूरत याद हो, कोई ऐसा खास किस्सा हो जिसे याद करके बड़ा मजा आता है, चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, तो हमारे साथ उसे जरूर साझा कीजिए।

स्वागत लेते हैं हम आपके संदेश। जी हाँ, श्रोता कह रहे हैं कि हमारे कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी माता वैष्णो देवी के कदमों में फिर से सिर झुकाने को जी चाहता है। क्या बात है। तो वो कह रहे हैं कि माता रानी के भवन जम्मू कश्मीर में जबकि अगस्त 2026 में भी हम दोनों बच्चों के साथ दर्शन करने को गए थे तो सखी का जवाब था आप जल्दी ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन करवाइए, सभी को छुट्टियों के हिसाब से जाने को मिलेगा। क्या बात है। बहुत सारी श्रोताओं ने हमें नवरात्रि के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। आप सभी को भी हम हमारी तरफ से और विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी एक श्रोता कह रही है कि आज तो मधुर गीतों का रेला लगने वाला है, इश्क सृष्टि को संचालित करने का छुपा हुआ जरिया है, इसके तार बस साहित्य कला और समाज से नहीं मनोविज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक जुड़े रहे, इसीलिए इससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समर्पण का आनंद अपने पिया या महबूब के सामने खुद को पूरी तरह लुटा देने, सब कुछ न्योछावर कर देने में जो आत्मिक सुख और सुकून मिलता है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। दिल का पागलपन, इबारत में जैसा कहा गया है कि पागल मन व्याकुल हो उठे, मोहब्बत में एक ऐसा मीठा दर्द और दीवानगी होती है जहां बदनामी भी एक अनमोल तोहफा लगने लगता है। जी हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि आज आपने रंग तरंग प्रोग्राम में बहुत ही मन को सुकून देने वाला माता रानी की भक्ति रचना को सुनाया, गरबा गीत भी सुनाए, ऐसे भक्ति पदों से हम आनंदित होते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि रंग तरंग कार्यक्रम से अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। एक श्रोता कह रहे हैं आखिर इश्क तो वही है जिसे दुनिया इल्जाम समझती है और दिल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जी हाँ, इश्क कोई साधारण भावना नहीं बल्कि रूह की वह अनकही पुकार है जो तर्कों की सीमाओं को लांघकर सीधे हृदय में उतर जाती है। दुनिया की नजर में इश्क भले ही एक तोहमत हो मगर प्रेम करने वाले के लिए यही उसकी सबसे अनमोल दौलत है। यहां हरा कर भी जीतने का सुकून है, बिछड़ कर भी जुड़े रहने का विश्वास और बिना किसी वादे के उम्र भर किसी का होकर रहने का जुनून। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, अभी हमने आपसे पूछा है कि नवरात्रि और गरबा का जो उत्साह है वो आप में किस तरह बना रहता था और आप क्या तैयारियां करते थे और कोई यादगार किस्सा हमसे आप साझा कीजिए। इस गीत के बाद हम आपके ये संदेश लेने वाले हैं और देखिए कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने और देखने का मन करता है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है वो आपके लिए है ना, और साथ ही जो गीत हम

आपके सामने पेश करेंगे। उस गीत की अदाकाराओं के नाम हमें आप बताएंगे जो महफिल में अपनी अदाओं और अंदाजों से समा बांध देती है। आवाजों का मुकाबला हो, नोकझोंक हो, अदाओं का जादू हो, तो फिर क्या ही कहने।

करने वालों का है बस इतना।

मुगले आजम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीत बद किया था नौशाद ने। देखिए हमारे श्रोताओं का जवाब भी आ गया है। हमने पूछा था कि इस गीत में जो अदाकाराएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं, तो श्रोताओं के जवाब हमें मिल गए हैं, मधुबाला और निगार सुल्ताना। बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमने इस गीत से पहले जो गीत सुनाया था माँ शेरोवाली का, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमने पूछा उसके जवाब भी आ गए, और हम उसी जवाब को अब लेने वाले हैं, आपके उन्हीं संदेशों को पढ़ने वाले हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गरबा की ऊर्जा और दुर्गा पूजा की भव्यता मिलकर भारत की अनूठी विविधता को दर्शाती है। एक तरफ जहां डांडिया की खनक से पूरा माहौल झूम उठता है, वहीं दूसरी तरफ शंख की गूंज और भोग के खिचड़ी लबड़ा का स्वाद मन को तृप्त कर देता है। सच कहें तो गरबा अपनों के साथ हंसने, सजने संवरने और बिना किसी फिक्र के झूमकर जीवन का जश्न मनाने का एक खूबसूरत बहाना है। क्या बात आपने कही है, जो हमें अपनों के संग खुशियों के अनमोल पल बिताने का मौका देता है। जी बिल्कुल सही। एक श्रोता ने कहा है कि हम हर साल नवरात्रि में खंडेला के पास पहाड़ी पर चामुंडा माता के मंदिर जाते हैं, वो हमारी कुल देवी है। साथ ही एक श्रोता कह रही है कि नवरात्रि से तो बचपन से नाता रहा है, अभी भी हम जुड़े हुए हैं, और डांडिया का तो क्या ही कहना, फिर सजना सवरना भी तो कितना प्यारा सा है, क्या बात है। एक श्रोता तो हमें बुला रहे हैं कि आइए गुजरात और बहुत मजा आएगा नवरात्रि में झूमने का। जी बिल्कुल हम कोशिश करेंगे आने की, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रही है कि पूजा जी आप और सभी श्रोताओं को वो नमस्कार कर रही है। नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इश्क पर किसी का जोर नहीं, लाख तोहमत लगा ले, मन करता है पिया संग नैना लड़े, जी चाहता है इश्क में दुनिया लुटा के देख लेंगे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उन्होंने इबारत से ही कुछ पंक्तियां उठाकर अपने संदेश में सजा दी है। और एक श्रोता ने कहा है कि माता रानी का प्यारा गीत जो हमने इस कार्यक्रम के पहले आपको पहला गीत आपको सुनवाया उसी के बारे में ये कह रही हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुहाग का सदाबहार गरबा सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में। और एक और श्रोता कहते हैं कि नवरात्रि के आते ही चारों ओर डांडिया और रास गरबा की धूम मच जाती है। गुजरात में माता जी की आराधना करने का ये बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, जिसमें गरबा को माता जी का स्वरूप मानकर सभी भक्तजन चनिया चोली और घेड़िया और रंग बिरंगे वस्त्रों में सज धज कर गोल घेरा बनाते हुए गरबा खेलते हैं, बड़ा मस्त समा होता है। साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो हमें धुनों की जानकारी हमें हमेशा कार्यक्रम के दौरान देते रहते हैं। यादों की महफिल की समाप्ति के बाद कौन है जो सपनों में आया झुक गया आसमान, इस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के पहले कोई प्यार से देखिए जादू भरे कोहिनूर, क्या बात है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो श्रोताओं अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, और साथ ही हम आपको बताते हैं कि अब जरा माहौल को बदलने की ओर हम बढ़ रहे हैं, और इस नोकझोंक से निकलकर चलते हैं शादी के सपने देखने वाली दुल्हनिया के इस गीत की ओर, जहां सपने हैं साज श्रृंगार की बातें हैं सखी से बातें हो रही हैं। इस गीत की फिल्म का नाम हमें आप बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है, ये भी साथ में बताइए, जो शादी तय होते ही हमारे मन में उभर आता है, सपने दिखाता है। और ये भी बताइए कि जब किसी भी शादी का माहौल हो तो वो कौन सा गीत होता है जो अचानक बजाए जाने पर आप झूमने से खुद को रोक नहीं पाते।

जी हाँ श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है। वैसे इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गुलजार ने लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। अब फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं ने हमें जवाब भेजे हैं, बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं, खुशबू है इस फिल्म का नाम। अब शादी के माहौल में धूम ना मचे ऐसा होता है कभी? अब ये कल्पना कीजिए कि शादी या किसी त्योहार का वक्त हो और गली मोहल्ले के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मेला सा लग जाता है ना? और ऐसे में उनसे जो दिल का नाता होता है वो हो सामने तो क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही, शुरू होती है हंसी मजाक ठिठोली और जवाब देने की होड़, है ना, जो कि सुर और गीत के ताने बाने में बुन जाती है और बातों ही बातों में होता है दिलचस्प मुकाबला। अगले गीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ले लेते हैं ये संदेश कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, सुनरी सखी मोहे विविध भारती बुलाए, जाना है गीतों की नगरिया, करना है सुरीला सफर, चुन चुन के लाई है पूजा पुष्प गीत विविध भारती के संग्रहालय से, मत देर करो कहीं एक ना बच जाए, हमें जाना है विविध भारती की नगरिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रहे हैं कि तेरी गलियों में जो बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो हुआ। बिल्कुल, एक श्रोता कह रही है कि कार्यक्रम की बढ़िया शुरुआत सुहाग फिल्म की भक्तिपूर्ण गरबा नृत्य से, धन्यवाद। सुंदर आगाज सुहाग माँ के इस गाने पर हम सब ने गरबा डांस किया था। बिल्कुल सही, ये गीत तो है ही सदाबहार गरबा गीत। एक श्रोता ने कहा है कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी, ये संदेश तो हम ले चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने यात्रा की

योजना बना ली माता वैष्णो देवी के कदमों में सिर झुकाने के लिए। क्या बात है, जरूर जाइएगा। और हमारे एक श्रोता ने तो हमें लिखकर भेजी है हमारे ही इबारत की कुछ पंक्तियां गीतों से सजी हुई, ठीक है। और कुछ एक और श्रोता कह रहे हैं कि इश्क वह खूबसूरत गुनाह है जिसे हर इंसान बार बार दोहराना चाहता है क्योंकि इसमें जो सुकून मिलता है वह अनमोल है। बिल्कुल, हमने इबारत में ये सवाल भी तो आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हर दिल इस इश्क के लिए, इस तोहमत को उठाने के लिए इतना मजबूर सा रहता है, है ना। तो बिल्कुल ये सुकून ही तो ढूंढ रहा होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम इस शादी की धूम वाले गीत से आगे की गीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और देखिए इस गीत में होता क्या है, एक दिलचस्प मुकाबला। एक पक्ष कोई बात कहता है तो दूसरा पक्ष भी उसका जवाब उसी अंदाज में देता है। क्या आपने भी ऐसा मुकाबला अपने मोहल्ले, गांव या शहर में होते देखा है तो हमें जरूर बताइए।

0: नया दौर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी ने इस गीत की रचना की थी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सुरीला सफर और अब लेते हैं एक संदेश। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार।

0: सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम आगे बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं के संदेश पहले लेते हैं कि श्रोता कह रहे हैं कि जब भी नया दौर का गाना ये वाला जो है बजता है तो हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो बोला करते थे कि पानी लेने के बहाने आ जा, बातें छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। क्या बात है। देखिए, शरारतीपन हम लोग बचपन में बहुत दिखाया करते थे लेकिन टीचर की डांट से ही हमने सीखा कि ये शरारतें हमें कैसे और कब नहीं करनी चाहिए, है ना। एक श्रोता ने कहा है कि गरबा खेलने का शौक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खूब होता है। मेरी 4 साल की नातिन रोज गरबा खेलने के बहाने डांस करती है और इस नवरात्रि के त्योहार का आनंद लेती है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि नया दौर दिलीप कुमार, वैजंती माला, ओपी नैयर जी, उन्होंने इस गीत की डिटेल हमें भेजी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हाँ, उन्होंने हमें गीत लिखकर भेजे हैं जो हमारी इबारत से आज उन्होंने बूझ लिए हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने गीतों को बूझ लिया है और हमें लिखकर भेजे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता कह रही है कि गरबा मेरे शहर वडोदरा की शान है, वडोदरा की सांस्कृतिक पहचान और उसकी आत्मा को दर्शाता है, जिसे गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। नवरात्र के 9 दिनों के दौरान यह उत्सव परम्परा और आधुनिकता का अनूठा संगम पेश करता है, जहां भव्य कमर्शियल ग्राउंड और पुरानी गलियों के पारंपरिक गरबे दोनों ही देखने को मिलते हैं। संक्षेप में, यह त्योहार वडोदरा के नागरिकों को एकता और आस्था के सूत्र में पिरोता हुआ वाकई शहर की आन बान और शान साबित होता है। बिल्कुल नवरात्रि का त्योहार ही ऐसा है जो हम सबको एक सूत्र में बांध देता है। ऐसे ही हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने गीत की डिटेल्स हमें भेजी है, नया दौर। जी हाँ, और इसी तरह अगले जो हमारे श्रोता है वो कह रही है कि नया दौर दिलीप कुमार, वैजंती माला, इस गाने में वैजंती माला जी ने जो लहंगा चोली पहने हैं वह लहंगा का चोली के डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है। जी, हमें भी जब भी हम देखते हैं वैजंती माला जी को, हमें तो उनका अंदाज बहुत पसंद आता है। इसे कच्छी या सिंधी कढ़ाई बोलते हैं, ऐसा भी उन्होंने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओ, अब देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे अलबेले भी मिल जाते हैं जो शरारत करते हैं, छेड़खानी के अपने अंदाज से सबका मन बहलाते हैं। ऐसे चंचल, अलहड़ और शरारती मिजाज वालों से थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो बेईमानी भी इसी रंगीन अंदाज में कर जाते हैं। ऐसे भंवरों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा, आप बताइए, भंवरा जो कलियों के पास जाता है, ये तो उसका व्यवहारिक काम है, क्या इंसानों को ऐसी बेईमानी शोभा देती है। अच्छा, जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बात तो भंवरे की ही हुई है। ये जो एक सखी है दूसरी सखी को ये बता रही है कि इस भंवरे से थोड़ा बच के, पर तुझे कैसे बताऊं। अच्छा, जो ये गीत हम बजाएंगे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या है और कौन है वो भंवरा इस गीत में जिनका जिनका जिक्र आप हमसे करने वाले हैं।

हमारे श्रोताओं ने उन सवालों के जवाब भी हमें भेजे हैं जो हमने नहीं पूछे, लेकिन हमें तो आपका ये अंदाज भी बड़ा पसंद आता है। आपने फिल्म का नाम और संगीतकार गीतकार के नाम भी हमें लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये था मंचली फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत। एक श्रोता कहते हैं कि इश्क उम्र और शक्ल सूरत देखकर नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब हो गया है। और इसी तरह से कई श्रोताओं ने हमें फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम भी लिखकर भेजे हैं जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। इसी तरह एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है, लता जी की आवाज में बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला यह गाना, तो अच्छा लग रहा है। हमें यह फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे श्रोताओं को अवश्य पता होगा, तो हमने अभी अभी तो नाम लिया है, अब तो आपको पता चल गया है, है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने भी ये जानकारी हमें दी है कि मंचली कली है लीना चंदावरकर और भवरा है इसमें संजीव कुमार। क्या बात है, हमने तो यही पूछा था कि भवरा कौन है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है कि कली कौन है और भवरा कौन है। जी हाँ, संजीव कुमार इस गीत में भवरा है, जिसकी बात कर रही है लीना चंदावरकर जी। ऐसे ही कुछ श्रोता कह रहे हैं कि गरबा के गीत शुरू होते ही बच्चे तो नाचते ही हैं, बुजुर्गों के पैर भी बैठे बैठे ही मस्ती में थिरकने लगते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि इश्क के लिए दुनिया से ये तोहमत लगाती है कि जो इश्क करे वो पछतावे और जो इश्क ना करे वो भी पछतावे। दुनिया वालों के लिए मेरा तो यह विचार है कि सच्चा इश्क जरूर करें, वो भी सिर्फ एक से, जो हम सफर भी हो और मरते दम तक उसी से इश्क करते रहें। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने ये संदेश सबके साथ साझा किया है। इस तरह एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म नया दौर के इस गाने तथा अन्य गानों में नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी के गीतकार और बाद में संगीतकार बने श्री प्रेम धवन जी ने, जिन्होंने संगीतकार ओपी नैयर को अपने मुंबई के शुरुआती दिनों में अपने घर में रखा था। बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत जो है शरारत और बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इश्क के उस सुकून की ओर हमें लेकर जाता है जहां हम सच में कह ही बैठते हैं कि हाँ नैना तो लड़ ही गए हैं। अब ये गाना तो है उमंग से भरा, प्रेम और इश्क को समर्पित। आप बताइए इस गीत में कई सारे त्योहार और नृत्य के रूप दिखाए गए हैं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है।

जी हाँ, ये गीत था गाइड फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र के बोल थे, एसडी बर्मन का संगीत। श्रोता कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एक श्रोता कह रहे हैं कि गाइड फिल्म का ये गीत भारतीय फिल्मों में सबसे बढ़िया फिल्माए गीतों में शुमार है। लता जी की वहीदा रहमान जी का अभिनय देखने लायक है। मेरी लिस्ट का चौथा गीत शामिल हो गया है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा गीत है, अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान का फिल्म गाइड का गीत। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे बिना शोर शराबे वाले त्योहार पसंद है। जी तो श्रोता, अगले गीत की ओर हम बढ़ें, उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं।

एक श्रोता कह रहे हैं कि साहिबा को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार, धन्यवाद। नवरात्र में हम बिहार के कस्बे में बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर जाते हैं। भारी संख्या में हमारे बिहार में भी कुछ नगरों में अब गरबा नृत्य का आयोजन होने लगा है। कई श्रोताओं ने हमसे साझा किया है इस गीत की डिटेल्स को और साथ ही अपना नवरात्रि का त्योहार वो किस तरह मनाते हैं, किस उमंग के साथ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म का ये गीत है और हेमा मालिनी और शशि कपूर इसमें अभिनेत्री और अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि हमने तो कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जब अपने जवाब इस तरह से गीत की डिटेल हमें भेजते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता ने कहा भी है कि मेरा भी कमेंट शामिल कीजिए। तो देखिए, आपका कमेंट भी शामिल हो गया है। आपने इस गीत की जानकारी हमें भेजी है कि ये फिल्म अभिनेत्री से गीत है। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये सभी गीत मेरी युवावस्था के हैं। उस समय मन कोमल होता है और गीत को अपने मन में समा कर अपने आप को ही नायिका समझ लेती थी और आंख बंद कर डूब जाती थी। क्या बात है।

एक श्रोता गाने का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी के गाए इस बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है और हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, सुनिएगा।

जी हाँ, यही था हमारी इबारत का आखिरी गीत। और इस फिल्म का नाम हमने पूछा तो हमारे श्रोताओं ने भी हमें सही जवाब लिख भेजे हैं। दिल ही तो है, यही है फिल्म का नाम। आशा भोसले और साथियों के स्वरों में ये गीत, साहिल लुधियानवी की रचना, रोशन का संगीत। देखिए, कार्यक्रम का वक्त भी तो हो चला है। अब आज्ञा दीजिए पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

आज की त्रिवेणी में सेहत की बातें। आज की भागम भाग वाली आधुनिक जीवन शैली में सेहत एक जरूरी मुद्दा बन गया है। दरअसल हमारे जीवन शैली में आगे निकलने की प्रतियोगिता बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, जिसका सबसे खराब असर हमारी सेहत पर पड़ता है। लेकिन अब लोग अपनी सेहत को लेकर पहले से ज्यादा सचेत रहने लगे हैं, इसलिए अक्सर लोगों को पार्कों में घूमते, टहलते, दौड़ते और व्यायाम करते देखा जा सकता है। तो चलिए हम भी चलें।

0: सेहत का ध्यान रखना एक चुनौती जरूर है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं कि किया न जा सके। कुछ छोटी छोटी बातों पर यदि ख्याल रखें तो हम हमेशा फिट बने रह सकते हैं। यदि हम सुबह जल्दी उठें, ताजी हवा में टहलें और कुछ देर सूरज की किरणों के सामने बैठे रहें, साइकिलिंग करें, दौड़ लगाएं, नृत्य करें, सीढ़ियां चढ़ें और जिन बातों से स्ट्रेस होता है उनसे दूर रहें। इस तरह अपने भीतर की खुशी को अभिव्यक्त करते हुए हमारी जीवन की गाड़ी चल पड़ेगी।
1: हे मन्नू भाई।

0: चौपाटी जाएंगे न भेलपुरी खाएंगे,
1: चौपाटी जाएंगे न भेलपुरी खाएंगे,
0: अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे खुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम,
0: चौपाटी जाएंगे न भेलपुरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आंखें लड़ाएंगे, हल्ला मचाएंगे खुल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ढम ढम ढम, मन्नू भाई।

0: कल की बात है, ए आँख मेरी फड़की, कल की बात है, आँख मेरी फड़की, जल्दी से गोद में फिर आई एक लड़की।
1: लड़की? अरे कौन थी वो लड़की?
0: मैंने जब पूछा बोल तेरा नाम क्या, तो हंस के वो बोली नाम से है काम क्या, आई थी वो धमकी।

ਗਈ ਛਮ ਛਮ ਛਮ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਮੋਟਰ ਚੱਲੀ ਪੰਪ ਪੰਪ ਪੰਪ ਮੈਨੂੰ

0: बात बड़ी सिंपल, देखो बेल बॉटम, गालों पे डिंपल, हल्का सा गालों पे है एक पिंपल।
1: मन्नू भाई प्यारा बड़ा अच्छा भैया, कोठरी की जेल में ताले
2: बजाता भैया। तत्तत्ता तरगुन कुंजी दिख तथा तुरंग तरगुन तुन
0: है। मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
0: चौपाटी जाएंगे न भेलपुरी खाएंगे, अच्छी अच्छी सूरतों से आके लड़ाएंगे। हल्ला मचाएंगे हल्ला मचाएंगे, बैंड बाजा बाजेगा ठम ठम ठम। है मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम,
1: मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम।
3: आज हम न चाहकर भी कई प्रकार के मशीनों से घिरे हुए हैं, चाहकर भी हम मेहनत नहीं कर पाते। लेकिन स्वयं को यदि फिट रखना है तो व्यायाम के अलावा भोजन, स्वच्छता और विश्राम पर ध्यान देना होगा। रोज हमें उचित समय पर भोजन और 6 से 8 घंटे की नींद के लिए समय निकालना ही होगा।
4: ऐसे बहुत अच्छा।

0: उसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
1: उजाली उनकी यादों की एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
2: चिट्ठी न कोई संदेह।
1: 20 सितंबर से हर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 2:15 का समय होने वाला है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के

0: अध्यादेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। श्री शाह ने दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। हिमालय क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने लास वेगास में आयोजित अंडर-23 विश्व चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करने के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: इन परियोजनाओं में लेह स्थित कुशोक बकुला रिम्पोची हवाई अड्डे पर नया यात्री टर्मिनल, 9 मेगावाट की हनु लघु पनबिजली परियोजना और 66 किलोवाट की डबल सर्किट दा हनु खालतसी ट्रांसमिशन लाइन तथा लेह के सिंधु घाट में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क और हिमसरोवर परियोजना के तहत 40 गांवों में विकसित 40 जलाशयों का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसके विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहाँ के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि लद्दाख में ग्रीन हाउस खेती को भी बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अब 11,000 ग्रीन हाउस हैं, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए जनजातीय समुदाय को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रभावित लोगों के जीवन को फिर से संवारने, उन्हें सहायता देने और सम्मान के साथ जीवन जीने में सक्षम बनाने के लिए प्रयास कर रही है।
2: नरेंद्र मोदी सरकार का

0: नक्सलवाद समाप्त हो चुका, मगर नक्सलवाद समाप्त होने से ये 5 दशकों की पीड़ा को हम समाप्त नहीं कर सकते। वो पीड़ा ने जहाँ जहाँ गांव दिया है वहाँ हमें मरहम लगाना पड़ेगा, उनको खड़ा करने का प्रयास करना पड़ेगा और वो सम्मान के साथ जीवन जी पाए इसकी व्यवस्था कर।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में जनजातीय भाषाओं से संबंधित कार्य समूह की बैठक आयोजित की। ये बैठक हाइब्रिड कार्यशाला के रूप में हुई जिसकी अध्यक्षता जनजातीय कार्य मंत्रालय की सचिव रंजना चोपड़ा ने की। श्रीमती चोपड़ा ने बैठक को संबोधित करते हुए जनजातीय समुदायों तक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन में भाषा के महत्व पर जोर दिया। बैठक में देशभर के प्रमुख भाषाविदों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और जनजातीय समुदायों के भाषा विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि हिंदू धर्म से इस्लाम या अन्य गैर हिंदू धर्मों में धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति पिछड़े वर्ग के

0: अंतर्गत आरक्षण का दावा नहीं कर सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कहा कि पूर्व के सामाजिक पिछड़ेपन को धर्मांतरण के बाद आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। एक रिपोर्ट।
1: न्यायालय ने कहा कि गैर हिंदू सामाजिक व्यवस्था में धर्मांतरण स्वतः किसी अधिसूचित पिछड़े वर्ग समुदाय की सदस्यता प्रदान नहीं करता। न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत वैधानिक लाभ केवल किसी व्यक्ति की धर्मांतरण पूर्व स्थिति के आधार पर नहीं दिए जा सकते। न्यायालय ने दोहराया कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का दर्जा खो देता है। ये फैसला मार्च 2024 के तमिलनाडु सरकार के एक आदेश से संबंधित याचिका के जवाब में आया है, जिसमें दूसरा धर्म अपना चुके लोगों को आरक्षण लाभ देने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी धार्मिक निकाय वैधानिक अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते हैं और हिंदू धर्म में पुनः धर्मांतरण के लिए सक्षम अधिकारियों द्वारा स्वतंत्र तथ्य आधारित विशिष्ट सत्यापन की आवश्यकता होगी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद की किस्मों के मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। उन्होंने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
2: ऐसा कहा जाता है कि ओनली डेड हैव सीन एंड ऑफ वॉर। यह विचार एक ओर हमें युद्ध की निरर्थकता और उससे होने वाली अपार मानवीय क्षति का एहसास कराता है, तो दूसरी ओर यह भी याद दिलाता है कि युद्ध की संभावनाएं कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती हैं और हमें हमेशा कठिन परिस्थितियों के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक केवल सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि इन्होंने कूटनीतिक निंदा के बजाय सक्रिय कार्रवाई करने के राष्ट्र के दृष्टिकोण में निर्णायक बदलाव को दर्शाया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवाद के हर स्रोत तक पहुंचकर उसका खात्मा करना है। श्री सिंह ने सीमा पार आतंकवाद पर भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान से होने वाली किसी भी आतंकवादी गतिविधि का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक के कारवार स्थित कदम नौसैनिक अड्डे पर स्वदेशी पोत समर्थक को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल होने वाला पहला स्वदेशी बहुद्देशीय पोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आज इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से इस दृष्टिकोण को कैसे साकार किया गया है।
3: सरकार के एक प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में पानीपत से की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेल्फी विद डॉटर के जनक जींद जिले के बीबीपुर गाँव के पूर्व सरपंच सुनील जागलान ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से बेटियों की हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है।
4: अगर हम देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पहले हरियाणा का लिंगानुपात कम था, हरियाणा में लड़कियों की साक्षरता दर कम थी, हरियाणा की लड़कियां विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम पढ़ती थी, लेकिन अगर आज हम देखें तो हरियाणा की लड़कियां करीबन 75% साक्षरता है, जो कि करीबन 64% 2014 से पहले होती थी। उसके साथ ही अगर हम बात करें लड़कियों के स्वास्थ्य को लेकर, कुपोषण को लेकर, वो दर भी लगातार घट रही है। इसके साथ ही हम खेलों में लड़कियों की भागीदारी देखें तो 6200 सभी गांवों में आज के दिन खेल नर्सरियों में लड़कियां पहुंच रही हैं, तो खेलों में लड़कियों की भागीदारी करीबन 60% ज्यादा बढ़ चुकी है। लिंगानुपात जो 879 हरियाणा

0: होता था वो 920, 925, 930 तक आज के समय चला जाता है। और खास बात यह रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर भी रोक लगी है।
1: उल्लेखनीय है कि सुनील जागलान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन सेवा से देश सेवा की भावना के साथ शुरू किए गए सेल्फी विद डॉटर अभियान का बेटियों के प्रति नजरिया बदलने में बड़ा योगदान रहा। प्रधानमंत्री ने इस अभियान को राष्ट्रव्यापी अभियान में बदल दिया। दूरदराज क्षेत्र से निकला यह अभियान अब एक वैश्विक अभियान बन चुका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2047 से पहले विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिला शक्ति की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।
3: महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए। केवल आत्मनिर्भर नहीं, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनकी इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश अब बदलती वैश्विक व्यवस्था को देखते हुए अपनी विशेष परिस्थितियों के अनुसार कदम उठा रहे हैं तथा नई साझेदारियां और नए विकल्प तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी इस दिशा में किए गए प्रयासों का सबसे उत्तम उदाहरण है। अबुधाबी में रायसीना पश्चिम एशिया कार्यक्रम में एक सत्र के दौरान डॉ जयशंकर ने ये बात कही। मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और दिल्ली में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी 21 तारीख तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में सोमवार तक तेज वर्षा का अनुमान है। इस बीच जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आज बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूसलाधार वर्षा और ओलावृष्टि का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 में भाग लेने वाले भारतीय दल से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। जापान के आईची नागोया में संपन्न एशियाई खेल पदक तालिका में भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोर ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन फाइनल में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अमेरिका के लास वेगास में आज पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में एक रोमांचक मुकाबले में विश्वजीत को मामूली अंतर 12-13 से जॉर्जिया के कोबा कारूमित्ज़े से हार का सामना करना पड़ा। श्री रामचंद्र मोर अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन के फाइनल में पहुंचने और पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रूपये से अधिक की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, इस्लाम धर्म अपनाने वाले हिंदू पिछड़े वर्ग के आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकते। मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार नक्सलवाद से प्रभावित जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पिछले 13 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे में आप सभी का स्वागत करती हूं मैं पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

ये गीत अभी आपने सुना फंटुश फिल्म से आशा भोसले की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल थे, तर्ज बनाई थी एसडी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छाप, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम सदाबहार नगमे में अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया। जंगली है इस फिल्म का नाम, शैलेंद्र के बोल हैं और तर्ज शंकर जयकिशन की।

अब सुनिए मोहम्मद रफी को घराना फिल्म के इस गीत में। शकील बदायूनी ने इस गीत की रचना की है और संगीत बद किया है रवि ने।

0: की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
3: पेंटर बाबू
2: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम

विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। एस एस बिहारी के बोल ओपी नैयर का संगीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली।

बड़ा आदमी इस फिल्म का गीत अब आपको सुनवा रहे हैं। इस गीत की रचना की है प्रेम धवन ने, संगीत पर किया है चित्रगुप्त ने और आवाजें हैं उषा मंगेशकर और कमल बारोट की।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प

0: से बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। अगला गीत आपको सुनवाते हैं जो कि है कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति सीआईडी फिल्म से। गीता दत्त की आवाज में मर्जू सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत।

सीआईडी फिल्म से गीत आप सुन रहे थे गीता दत्त की आवाज में, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार लग में अब यहीं संपन्न होता है। दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को, नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
1: मंदाकिनी जी आपको और साथ में सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि इस समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में हर घर में कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
0: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जैसे कहते हैं हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम में शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
1: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की ऊर्जा की कोई कमी नहीं बल्कि और आ गई ऊर्जा
0: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि नौ दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
1: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा तला हुआ चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
0: कई बार क्या होता है फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मक्खियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, और बाजार में भी कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया उपवास किया है तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
1: इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी से महसूस होती रहेगी। तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, मजे से गरबा खेल सकते हैं।
0: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है।
1: जी हाँ,
0: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों, और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
1: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड से चल गया ना कि बच्चे जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक ही आ जाते हैं, 17-18-19 साल के हुए नहीं कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें अपने तरीके से रहें और बाहर हम अपना जॉब

0: करें या कुछ भी करें, तो ये जो आज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बीरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
1: जो समाज सेविका है,
0: समाज सेवा में जिनका नाम है। और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल लोक उक्तियां तो हम बहुत सारी जानते हैं, लेकिन जो ग्रामीण ठेठ

0: की टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब की सुंदर सुंदर सच के आती है, तैयार होकर आती है ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आएंगी तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
1: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं लगेगा है ना। तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
0: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गर्भा में ऐसे ही थोड़ी ना अपने
1: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
0: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ गीत सुनते हैं,
1: आइए।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के लिए, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं।

0: से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल। और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ दो कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावना है ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती। आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है, इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई के किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हमारा हिस्सा होता था। लड़ाई झगड़ा, मैं बच्चे भाई बहन इतनी चिल्पों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज जो छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी हो जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। लेकिन आप, हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए।
0: हाँ,
1: लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। खासतौर से बेटे, उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आरती और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है मम्मी 5 मिनट बस।
1: हाँ, और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है, 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है काश मैं भी अपने बेटे की दोस्ती होती।
0: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो है कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल।
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या तानों में बदल जाती है तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल।
0: कि कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल। और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना, वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में, परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल। और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
0: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को, बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रही हो, गुजर रही हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है जो हमें नहीं मिलता।
1: बिल्कुल। और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें।

0: ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें, तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: अपने आपको बिजी रखना।
1: लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें। या जो सुख शांति है, ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा, है ना। अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना, किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं, कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे।
1: हाँ।
0: उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत, है ना, जिसे कहते हैं ना सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा, और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
0: बिल्कुल, और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: हाँ, तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत है।
1: बुझ मेरा क्या नाम रे।
0: हाँ, नदी किनारे नाम रे। क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: मतलब अपना पूरा पता बता दिया कि नदी किनारे गाँव।
0: बिल्कुल। और हमारे भी जो श्रोता है, हमने उनसे भी कहा था कि उनके गांव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है, उसका जिक्र उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ।
0: तो अभी हमारे श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे, व्यस्त संतान जो है, उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनकी बात माने बिना किसी बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर है वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से मां बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पाटी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है, वहां बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता

0: की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, फिर कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं, और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
0: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
1: बिल्कुल,
0: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं। घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय, जैसा कि अभी आपने कहा, इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल, वीडियो कॉलिंग, चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है। कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया, इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे अपना, उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए, और मतलब उनको अकेले उस पर नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
1: बिल्कुल, और माता पिता, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है, और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि माँ बाप ने अपनी हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थामकर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
0: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: आरती अब वक्त है एक अंतराल का।
1: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: हाँ हम बात करते हैं पद्मश्री की, जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो समाज सेवा होता है ना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती,
0: बिल्कुल
1: है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना, तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: तो ऐसे ही थी बीरूबाला जी।
0: बीरूबाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरूबाला राभा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था, वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल, उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गांव में हुआ था और उनका संबंध जो है राभा जनजाति समुदाय से था। तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।

0: और परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
1: हाँ, बचपन में ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को बहुत करीब से देखा था। तो बीरूबाला का जो विवाह 15 वर्ष की उम्र में हो गया था, उस वक्त 15 वर्ष की उम्र बहुत हुआ करती थी।
0: बिल्कुल।
1: और उनके पति किसान थे और उनके 3 बच्चे थे। विवाह के बाद उनका जीवन सामान्य ग्रामीण परिवार के घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में बीता था।
0: और लेकिन एक घटना ने उनके विचारों को एकदम बदल दिया था और उन्हें समाज सुधार की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। और वर्ष 1985 के आसपास उनके जो बड़े बेटे थे धर्मेश्वर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। तो इस दौरान एक स्थानीय झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति ने बीमारी को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर भय पैदा कर दिया और उनकी और उस बच्चे के जीवित रहने को लेकर भी निराधार भविष्यवाणी की थी उसने। और फिर उसके बाद बेटे के, लेकिन उन्होंने इस बात को माना नहीं और उसका इलाज करवाती रही वो। तो इस भविष्यवाणी के जब के बेटे के ठीक होने के बाद, जब वो ठीक हो गया अपने दवाइयों को लेकर के, तो बीरूबाला ने महसूस किया कि अंधविश्वास और झूठे दावों के कारण लोगों को कितना नुकसान पहुंच सकता है कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
1: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों की बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। आरती,
0: बिल्कुल, बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत रोगियों में जकड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
0: बिल्कुल। और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल सकती,
1: बदली जा सकती।
0: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रही और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रही।
1: बीरूबाला ने अपने गांव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की एक शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
0: बिल्कुल। और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गांवों में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना, उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई थी, तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
0: बिल्कुल।
1: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती। और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
0: बिल्कुल। जो ये विच हंटिंग का प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डैन बताकर या कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बीरूबाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल सही कहा। जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली
0: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट

0: नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया था नामांकित भी किया और इन सब के साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
1: क्या बात।
0: और फिर लेकिन 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था, लेकिन उनमें संवेदनाएं थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचाया और वो महान करने वाली महिलाओं में शामिल हो गई।
0: बिल्कुल।
1: और अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: ये सुनते हैं।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी है।
1: अच्छा।
0: तो हम लेते हैं श्रोता उनका लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी ही बेमिसाल हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है। जैसे कि एक है उन्होंने लिखा है, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा,

0: ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, हाँ। बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की कहावत जो रहती है लोगों की, हाँ। वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोता है लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे वजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का देहांत हो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब इसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं, मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणों ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना, है ना। एक लिखते हैं आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है, और आंदो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और एक लकड़ी के दो बटका यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
0: अच्छा, तो काफी मतलब अनसुनी सुनी भी नहीं है,
1: ये हमने नहीं सुनी है। वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है, है ना
0: जी। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मट्ठा, जेठ मीठी डोबरी, आषाढ़ मीठो डटा। इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चिमरी, बैसाख में मठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी, और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल ये अनसुने ये भी नहीं दिया।
1: वही श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण लोगों की केवल कहने सुनने की बातें नहीं बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं, और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है, और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोगों की इन्होंने है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए, और दूर के ढोल सुहावने, अदजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
0: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, न बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुड़ समाय है, और जाजा हाथ रलिए मना, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होता है, नहीं तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, जैसा भी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
0: और साथ ही हमें एक श्रोता जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गाँव में, और वो इतनी अच्छी चीजों को सिखाने वाली होती है कि उसका उपयोग करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये, जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है, तुमने बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र है या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा, इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
0: और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव की चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम, और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार। और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत, घाघ ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाघ की कहावतें बहुत रची बसी हैं। जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे कुतरा, यदि उत्तर में नक्षत्र में बारिश हो, उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है कि मतलब कुत्ते मिले कि जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाय भैंस करी पगुरा, ये तो सभी जानते हैं।
1: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो हैं, हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
0: हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए,
0: सुनते हैं।

0: भाई कोई माने या ना माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: तो हम बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगाकर और इसको पीसकर पेस्ट कर पर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उसे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा है उनका।
0: अच्छा,
1: तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे मंदाक मुझे।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें, त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते, बेसन चुटकी भर हल्दी थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथी लिखते हैं कि एक चम्मच फिल्टर कॉफी, एक चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें, त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे श्रोता ने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी

0: दूध, दही, बेसन, नींबू, पपीता, संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपरण बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा शिखर का ये आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेके भेजे,
1: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
0: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: हीरे जलने में कैसा है मजा, पूछो पूछो पूछो परवाने से जरा। धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ओ हो तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी, आहा तुम भी दिल देख के जल जाना सीखो जी।
1: तो दिल देखे देखो भाई, दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सखाओं को दे रखा है।
2: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
3: सखी सही।

हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग और संगीत की मिठास घुली होगी, है ना? तो आइए आज फिर सजाते हैं गीतों की ये महफिल आपकी बातों और आपकी पसंद के साथ। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: मैं जिला रामपुर तहसील स्वार ग्राम समोदिया यूपी उत्तर प्रदेश से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ। मैम आपसे तो मेरी पहली बार बात हो रही है। मैम आपकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है, आपका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत बेहतरीन है। मैम
0: आपका सुनने का अंदाज भी बेहतरीन होगा, तभी आपको हमारा प्रोग्राम बेहतरीन लगता है ना?
1: जी मैम, काफी दिनों से ट्राई कर रहा, काफी दिनों में फोन लगा मेरा, कम से कम 2 साल में आपको लगा। आपकी आवाज सुनते हैं घर में, बच्चे सुनते हैं, मैडम सुनती हैं, अम्मी सुनती हैं, तो बहुत खुश होती है कि मैम की आवाज में मिठास बहुत है।
0: आपके सुनने में भी मिठास होगी। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैम यहाँ समोदिया चौराहे पर हमारी चावलों की दुकान है, हम हर वैरायटी का चावल बेचते हैं। मैम
0: तो बताइए आपकी दुकान में कौन कौन सी वैरायटी के चावल हैं?
1: मैम हमारे पास हर वैरायटी का चावल है, बासमती है, 1121 है, 1509 है, 26 है, सरबती है, बहुत सारी वैरायटी आती है। मैम एक दो नहीं है, कम से कम 15-20 वैरायटी का चावल बेचते हैं।
0: फिर तो आपकी दुकान बहुत फेमस होगी।
1: जी बिल्कुल मैम, इस महीने में तो ज्यादातर बहुत बिक्री होती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म के तरह से 11वीं शरीफ होती है हुजूर वो आजम के नाम की, तो ज्यादा बिक्री होती है। मैम
0: अच्छी बात है, वो हर जगह ये होता है कि हम अपने अपने त्योहार मनाते हैं और खास पकवान बनते हैं, तो लगता है कि भाई कहीं चावल है कहीं गेहूं है।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा इलिया जी ये बताइए कि जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं ना, लेकिन क्या आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई ऐसी छोटी सी बात होती है जो हर दिन आपके चेहरे पर मुस्कान ले आती है?
1: जी जी मैम, अगर जैसे हमारा थोड़ा बहुत मूड खराब होता है ना, आकाशवाणी विविध भारती सुनते हैं तो हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मैम
0: अरे वाह, तो आपने अपनी थकान मिटाने का तरीका विविध भारती में चुना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत अच्छी बात है। चलिए आपकी पसंद का गीत सुन लिया।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी बहन को नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन है, अपना नाम बताइए हमें।
1: आपका भाई उदयलाल चेलर उदयपुर राजस्थान से।
0: क्या बात है, बहुत स्वागत है आपका।
1: विविध भारती से जुड़े रहते हैं तो मस्ती रहते हैं,
0: ये तो बिल्कुल सही।
1: विविध भारती है, वहाँ कोई गम प्रवेश कर ही नहीं सकता है।
0: इतनी पसंद है आपको विविध भारती।
1: जी 55 साल से जुड़ा हूँ विविध भारती से।
0: अच्छा,
1: और मेरी उम्र है 74।
0: लेकिन आपकी आवाज़ से तो नहीं लग रहा है, आप तो बिल्कुल युवा लग रहे हैं आवाज़ से।
1: ये आप लोगों की मेहरबानी और आशीर्वाद है, इसलिए आवाज ऐसी है।
0: अच्छा, तो आपकी दिनचर्या बहुत टाइट रहती है, अनुशासन में रहते हैं, इसलिए भी फर्क होता होगा स्वास्थ्य में, आवाज में, सब में फर्क आता है।
1: जी जी।
0: सोचने का तरीका जी बहुत पॉजिटिव होगा, हर बात को पॉजिटिव लेते होंगे आप।
1: जी मैं कभी गुस्सा नहीं करता हूँ, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता भी है तो विविध भारती चलती रहती है तो उसमें आप लोगों की आवाजें सुनता हूँ और मस्त हो जाता हूँ।
0: चलिए, सुबह कितने बजे उठते हैं आप बताइए।
1: सुबह हम 6 बजे उठते हैं,
0: सुबह की शुरुआत
1: स्कूल भेजते हैं और हमारी दिनचर्या शुरू होती है। दिन में थोड़ा बहुत काम करते हैं ट्रेनिंग का और दिन भर विविध भारती चलती रहती है, आप जैसी बहनों की आवाजें सुनते रहते हैं, मस्त रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है। तो सुबह की शुरुआत चाय से होती है या विविध भारती से?
1: विविध भारती से होती है और चाय भी चलती रहती है।
0: ये हुई ना बात। तो बताइए कहाँ जाते हैं टेलरिंग करने, घर पे ही है या बाहर है दुकान?
1: पहले बाहर थी शॉप, अभी घर पे ही करता हूँ। अभी एज का फैक्टर है तो थोड़ा कम ही होता है काम।
0: तो एक बात बताइए, 74 ईयर्स ओल्ड हो गए हैं आप, तो अभी तक काम कर रहे हैं, आपके बच्चे भी काम करवाते होंगे, आपका हाथ बटाते हैं कि नहीं?
1: जी मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा एक्सपायर हो गया है।
0: हाँ, और आपका दूसरा बेटा?
1: दूसरा बेटा एक रेडीमेड का शोरूम है, उस पे सेल्समैन है।
0: अच्छा, यानी कि वो भी काम करते हैं अलग, लेकिन आप टेलरिंग का काम अभी भी करते हैं, है ना?
1: हाँ।
0: कोई उम्र कहीं आड़े नहीं आती अगर हमने अपने आप को बिल्कुल सकारात्मक बना रखा है तो?
1: जी मेरी जिंदगी में तकलीफें बहुत आई है लेकिन विविध भारती ने सहारा दिया और इसके सहारे हम जी रहे हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और ये सहारा ता उम्र आपको मिलेगा, ये हमें विश्वास है।
1: जी।
0: कौन सा गाना सुनवाए बताइए?
1: पुरानी फिल्म है जुगनू, उसका गीत है मोहम्मद रफी साहब और नूरजहां की आवाज में। यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, बहुत ही सुरीली आवाज है नूरजहां जी की।
0: जी, तो आप गा के बता सकते हैं इस गाने को?
1: यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे, नमस्कार। अपना नाम बताइए।
1: केसरी सिंह राजपूत बोल रहा हूँ दीदी, बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है केसरी जी आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं दीदी आप?
0: अच्छे ही, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए।
1: जी जी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात हो रही है। पहले भी मेरी एक दो बार आपसे बात हुई है।
0: केसरी जी, अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं दीदी आर्टिस्ट हूँ, पेंटर, और प्लस में खेती भी है, तो बढ़िया काम चल रहा है। दीपावली आने वाली है और नवरात्रे चालू हैं, तो बढ़िया आनंदमय स्थिति है। सब जगह माता रानी की प्रतिमाएं विराजमान है और बढ़िया सुंदर वातावरण है दीदी।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये बताइए, आपने 9 दिन व्रत रखे हैं या पहले और आखिरी दिन उपवास रखेंगे, ऐसा कोई है आपके दिमाग में?
1: हाँ दीदी, ये हमारी कुल की माता पूछती है अष्टमी को, तो उस दिन उपवास रखेंगे दीदी। जैसे हम 9 दिन रखते थे, लेकिन इस बार किसी कारणवश नहीं रह पाए।
0: अच्छा, लेकिन अष्टमी के दिन आप रखेंगे?
1: हाँ जी।
0: अच्छा, उस दिन क्या खास बनाएंगे? कुछ खास फलाहार बनेगा घर में?
1: उस दिन दीदी पूरे घर की मतलब लिपाई पुताई होती है, ऊपर से नीचे तक की एक कमरे की, और उसमें माता जी विराजमान होती हैं, और फिर पूरा वित्त परिवार वित्त फैमिली की पूजन होती है, और बढ़िया अच्छा आनंद आता है दीदी। शाम के टाइम होती है, सब घर परिवार उपवास रखता है उस दिन। पूरे पकवान बनते हैं दीदी, लगभग अपने जितने बन सके हैं अपन से, सब बनते हैं।
0: बहुत अच्छी बात आपने बताई कि अष्टमी के दिन आप ये करते हैं। तो गरबा में हिस्सा लेते हैं, जाते हैं 9 दिनों में खास कहीं?
1: बैरसिया शहर है, इसमें गरबा होता है तो देखने जाते हैं, लेकिन हिस्सा नहीं लेते, भागीदारी नहीं लेते।
0: अच्छा, बताइए आपकी पसंद का गाना।
1: दीदी नवरात्रि चल रहे हैं, तो एक मर्द मूवी में एक गाना है, माँ शेरों वाली, वो माँ शेरों वाली।
0: चलिए सुनते हैं माँ शेरों वाली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैंने दीदी को सादर सप्रेम प्यार नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लबानिया बोल रहा हूँ। मंदा जी, दीदी जी।
0: राजू जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप बताइए।
1: बिल्कुल ठीक है दीदी जी, मैं आपके सभी कार्यक्रम सुनता हूँ, जैसे त्रिवेणी रहा, सखी सहेली रहा, आज के फनकार रहा, और रात को मैंने सुना था आपके लिए, बहुत अच्छे गीत सुनाए गए थे उसमें।
0: बिल्कुल।
1: और त्रिवेणी कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें अलग अलग तरह के विषयों पे बात की जाती है और श्रोताओं को एक नई ऊर्जा मिलती है उस कार्यक्रम के माध्यम से।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा बताइए, इन दिनों नवरात्रा पर्व चल रहा है, आपने व्रत रखा है, उपवास रखा है, माँ की पूजा कर रही हैं या क्या है?
1: जी दीदी, मैंने व्रत उपवास तो नहीं रखा, लेकिन मेरे ऊपर माता रानी की कृपा है, मैं आपको फोन लगाता हूँ या गाना बजाना करता हूँ, सब उन्हीं ने सिखाया है दीदी मेरे को। शाम को मंदिर जाना होता है डेली, उसी तरह माँ को याद करते हैं, और माँ ही हमारी सब कुछ है, माँ ही हमारे ऊपर कृपा किए हुए है।
0: तो नवरात्रि में हम माँ के 9 रूपों की आराधना करते हैं और माँ से हमें शक्ति मिलती है और प्रेरणा मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: जाने तमन्ना फिल्म का गाना सुना दीजिए, गाने के बोल हैं तू चांद है पूनम का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: विकास बोल रहे हैं दादनपुर प्रयागराज से, ट्रक ड्राइवर।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे मैम, आपका कार्यक्रम सुनते हैं तो और भी अच्छे हो जाते हैं।
0: तो ट्रक चलाते हुए विविध भारती सुनते हैं क्या?
1: बिल्कुल बिल्कुल मैडम जी, बिल्कुल विविध भारती हमारा हमेशा ऑन रहता है।
0: तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि भाई आपका ध्यान विविध भारती की ओर है और आपने अपनी स्टीयरिंग को ढंग से नहीं संभाला? रास्ते में बहुत ध्यान रखना पड़ता है ना, हाईवे में चलाते होंगे ट्रक तो?
1: बिल्कुल हाईवे में चलाते हैं, लेकिन अपना ध्यान हम लोग रख लेते हैं क्योंकि हमारा काम हमेशा का हो गया है और विविध भारती साथ होता है तो अच्छा लगता है।
0: विविध भारती दोस्त का काम करती है यहाँ पर, है ना?
1: बिल्कुल, कार्यक्रम हम लोग सुनते हैं। और अभी जो पूर्णिमा जी और ये सब कार्यक्रम आपके यहाँ से आया था जो, और उत्तम जंगेल जी जो आए थे आपके यहाँ, वो सभी हम लोग कार्यक्रम सुन रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि आप लोगों की प्रस्तुति बहुत अच्छी होती है।
0: क्या बात है।
1: और हम लोग आज के फनकार है, छाया गीत है और गीतमाला है, गीतों भरी कहानी है। ये हम सारे कार्यक्रम हफ्ते में जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से रिले किए जाते हैं हम सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
0: बिल्कुल सुनते होंगे। ड्राइविंग कितने घंटे करते हैं आप ट्रक की?
1: वैसे तो मैम हम खासकर रात में ड्राइव करते हैं और इसको लगभग 12 घंटा तक हम लोग ड्राइव करते हैं और जहाँ की डिलीवरी आती है वहाँ हमें जाना पड़ जाता है।
0: अच्छा, तो रात में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो दिन भर सो लेते हैं क्या?
1: हम लोग दिन में आराम कर लेते हैं और रात में अपना जो है सफर करते हैं, या तो अगर दिन में कहीं से डिलीवरी तो हमारे साथ जो एक हमारे सहयोगी होते हैं वो करते हैं।
0: हाँ, लेकिन नींद का तो एक वक्त होता है, जैसे रात में ही नींद आती है, तो उसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं? रात को इतनी लंबी ड्राइविंग करते समय कभी झपकी लग जाए तो?
1: हाँ जी, ऐसा होता है, पहले ऐसा कई बार हुआ था, लेकिन अब हम लोग कई साल से हम लोग जो ड्राइव कर रहे हैं तो ये एक नियम सा पड़ गया है। अब
0: आँखों को भी आदत हो गई है जगने की, है ना?
1: बिल्कुल, दिन भी ऐसा है जो कि 9 दिन हमारे लिए साल में एक बार या दो बार आता है, ये इसलिए कि ये बहुत अच्छा लगता है और समय भी ये बहुत अच्छा होता है।
0: बिल्कुल, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन 9 दिनों में आप अपने मन से किसी बुरी आदत को या किसी नकारात्मक विचार को या क्रोध को दूर करने का प्रयास करते हैं कि नहीं?
1: बिल्कुल, इसीलिए तो मैम हम लोगों का काम और भी अच्छा चलता है।
0: बिल्कुल सही कहा। बताइए कौन सा गाना सुनवा है आपको?
1: जैसा कि अब हम सब जानते हैं आज नवरात्रि का दिन, इस पर मुझे एक गाना याद आ रहा है, करण अर्जुन है फिल्म का नाम, और इसके गाने के बोल हैं जान चाहे देनी पड़े।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: गोपाल ऊजा, ग्राम ककवासा, जिला गुना से। आपसे तो जी मान ली बहुत ही दिनों में बात हो रही है, पहले हुई थी बहुत 3-4 महीने में। अभी तो क्या है, नवरात्रि चल रहे हैं तो फसल भी कट चुकी है हमारी मक्का की, तो जो अभी इकट्ठी करेंगे मक्का निकालेंगे।
0: कब कटी
1: जी? अभी कटी हुआ है, 7-8 दिन हुआ जी मान ली।
0: अच्छा, तो नवरात्रा का पर्व मना रहे हैं, तो कोई खास होगा इस पर्व में? इन 9 दिनों में क्या करने वाले हैं?
1: नवरात्रि कर रहे हैं जी मान लीजिए, और जो काम में भी बिजी है हम, और हमारे जी मान लीजिए विविध भारती चलता रहेगा, देश की सुरीली लड़का ने कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं। हेलो परमाई सखी सहेली, हेलो सहेली आते हैं 3 बजे, सभी कार्यक्रम जी मान लीजिए चलता रहता है। हमें सेतनामा आता है 4 बजे, कभी सुनते हैं हम तो जी मानिए।
0: अच्छी बात है आप सुनते हैं, लेकिन हमें बताइए कि आपने कहा नवरात्र का पर्व चल रहा है, इन 9 दिनों के भीतर आपके अंदर कोई बदलाव आया कि मैं अब ये अगली फसल डालने वाला हूँ?
1: फसल ये गया हूँ, धनिया लगाएंगे अब।
0: अच्छा, कब लगाने वाले हैं?
1: ये लगाएंगे नवंबर में।
0: तो उसके बीज बीज ले आए हैं?
1: हाँ, बीज तो लाएंगे, अभी नहीं लाए, अभी तो थोड़ा लाया खाद।
0: तो बीज के ऑनलाइन लेते हैं, पोर्टल जो आप लोगों का किसानों का पोर्टल है वहाँ बातचीत करके लेते हैं या किसी दुकान से?
1: नहीं नहीं, वो पोर्टल से करते हैं ऑनलाइन।
0: तो अच्छी क्वालिटी का बीज आ जाता है?
1: अच्छी क्वालिटी का आ जाता है। और क्या?
0: कौन सा है गेहूँ की अच्छी क्वालिटी का बीज?
1: गेहूँ का है जी, फजाता भी है और चल रहे है, सभी बीज बहुत बढ़िया है। हम तो घर के भी है, घर के भी बो देते हैं।
0: अच्छा, और धनिया के?
1: नहीं, धनिया को हम लेते हैं अभी तो।
0: अच्छा, अच्छा खरीदते हैं। चलिए, कौन सा गाना सुनेंगे आज आप?
1: वो आरजी पिक्चर का सुनना है, सोनू निगम की आवाज़ में, दुनिया से दूर जा रहा हूँ मैं तेरे पास आ रहा हूँ।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: टेक चंद अग्रवाल बोल रहा था, परासिया छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से।
0: टेक चंद जी कैसे हैं?
1: हम बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: सबसे पहले तो मैडम आपको नव दुर्गा पूजा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हमारे सभी श्रोता मित्रों के साथ।
0: बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत बधाई। बताइए नवरात्रा का पर्व कैसे मनाते हैं आप? व्रत उपवास रखते हैं, माँ की पूजा करते हैं, या मन में एक शक्ति महसूस करते हैं इन दिनों खास?
1: जी जी बिल्कुल मैडम, क्या है जो ये नवदुर्गा जब आती है तो एक कहना चाहिए 10 दिन जो है कुछ अलग सा अनुभव होता है।
0: इन 9 दिनों में अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव हम महसूस कर सकते हैं अगर चाहें तो।
1: जी जी कहते हैं मैडम, क्या है कि हमारा तो ये मतलब रोजाना का वो है, हम एक सीनियर सिटीजन है, सुबह उठ करके थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक के साथ साथ जब आते हैं तो कुछ अपने दूसरे काम निपटा करके सुबह स्नान वगैरह कर करके पूजा पाठ का जो हमारा रोज का नियम है वो हमारा रोटेशन में ही हैगा। खास तौर पर इन दिनों में जब आता है तो एक पता नहीं कहाँ से एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, माता के प्रति हमें आकर्षित करती है।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे संस्कार भी है साथ में एक संस्कृति भी है जो हमें विरासत में मिली हुई है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आने वाला जो जनरेशन है उसको भी वैसे ही बरकरार रखे।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसे हमें अपनाना है और आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी हमें ये सिखाना है कि इसे बनाए रखना है, है ना?
1: बनाए रखें।
0: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपनी पसंद का गाना बताइए हमको।
1: मुझे सुनवा दीजिए, 1964 की एक फिल्म थी दादी माँ, महेंद्र कपूर और मन्ना डे की आवाज थी इसमें, उसको नहीं देखा हमने कभी।
0: अरे वाह, माँ के नाम है ये गाना, आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार नमस्कार, बोलिए अपना नाम क्या है ये तो बता दीजिए पहले।
1: वाराणसी पहड़िया अशोक विहार कॉलोनी फेस्टू से मैं श्रोता दंपति अनिल रमा गुप्ता गोंड।
0: बहुत शानदार जगह से बोल रहे हैं आप।
1: अरे मैं शानदार
0: जी बिल्कुल।
1: अभी आप लोगों ने जो प्रोग्राम किया था, जो लाइव आप लोग फेस कर रही थी और इला अरुण जी को आपने बुलाया था, तो आप तो पहली बार मैंने आपको देखा कि बहुत खूबसूरत है। हम तो मैं आप और चश्मा उश्मा लगाई है।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा।
1: बहुत दिन से तमन्ना थी आपसे बात करने की, वो पूरी हो गई।
0: आप ऐसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पर नंदी गाय घूमती है, सब कुछ आपको हर पल देखने को मिलता है, तो आदिशक्ति माँ को याद कर रहे हैं इन दिनों नवरात्रा के पर्व पर कुछ रखा है?
1: जय अम्बे जगदम्बे माँ। माँ के जगह जगह पंडाल बन रहे। हमारे यहाँ बंगाल के बाद कलकत्ता के बनारस के अंदर ही सेकेंड नंबर पे पंडालों का पोजीशन रहता है। बहुत बड़े बड़े पंडाल बनते हैं हमारे यहाँ दुर्गा माता जी के।
0: तो फिर लोग आते होंगे बहुत ज्यादा, क्या माहौल रहता है?
1: जी जी, भीड़ तो इतनी रहती है कि जो परिवार वाले लोग हैं, जो बाल बच्चेदार हैं, वो अक्सर यहाँ शाम को रात को ना जाकर 2 बजे रात के बाद जब अगली सुबह होने वाली होती है तो भोर में लोग जाते हैं पंडालों के दर्शन करने।

0: बच्चों को लेकर।
1: अच्छा, इतनी भीड़ होती है इसलिए।
0: हाँ
1: चलिए गाना बताइए। तो श्रोताओं, तकनीकी कारणों से ये बातचीत किसी कारण से यहीं कट गई है, लेकिन हम विविध भारती जो परिवार है उन्हें सुनवाना चाह रहा है गाना फिल्म कुंवारा बाप का, मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी। किशोर कुमार और महमूद साहब की आवाजों में ये गीत है। चलिए, तो अनिल साहब के लिए हम ये गीत पेश कर रहे हैं।
2: मैं हूँ घोड़ा ये है गाड़ी, मेरी रिक्शा

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं रंगापरा सोनीपुर असम से अमल बसमटारी बात कर रहा हूँ।
0: असम से, असम की चाय हमें बहुत पसंद है, पता है आपको?
1: जी जी जी।
0: और क्या खासियत है असम में बताइए?
1: असम में तो हमारे कामाख्या मंदिर है, सिराकना है, काजीरंगा पार्क है, बहुत सारे खास है असम में।
0: और वहाँ की जो मेखला चादर है वो मुझे बहुत पसंद है।
1: जी जी।
0: तो अभी बताइए, माँ दुर्गा का पर्व चल रहा है इन दिनों, 9 दिनों में हम नवरात्रि का पर्व।
1: इन दिनों में तो हमारे चाय का खेत है ना, यहाँ पर लगातार काम हो रहे थे और इसमें काम किया।
0: चाय का बागान है आपका?
1: जी, घर में चाय का बागान है।
0: कौन सी किस्म की चाय?
1: हमारे ये लोकल चाय है।
0: तो चाय की खेती कैसे होती है बताइए ना थोड़ा सा।
1: चाय की खेती तो बहुत हमारे प्रोसेस रहता है। इसका फूल तो जमीन में लगा के उसको छोटा छोटा पेड़ बनाता है, उसके बाद लगाते हैं उसको
0: जमीन में। क्या क्या

0: डालते हैं चाय की बीज?
1: हाँ हाँ, इसे पाउडर करके जमीन को इस तरह से बना दे कि उसको चाय का खेती बन सकते है। उनका फूल है ना चाय का, यहाँ में लगा देते है, उसे पिकिंग करके आराम से रखा जाता है।
0: चलिए गाना बताइए।
1: क्रांति फिल्म का गाना सुना दीजिए, दुर्गा माता।
0: तो आइए सुनते हैं फिल्म क्रांति का ये गाना आपकी पसंद पर, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।

0: मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं है, कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है।
1: अरे वाह क्या बात है, मुकर्रर मुकर्रर।
0: मुमे मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर यूपी उत्तर प्रदेश से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ।
1: स्वागत है आपका, क्या हाल है आपके बताइए।
0: और कम से कम मैम मेरी सालों के बाद हेलो फरमाइश में आज कॉल लगी है।
1: अच्छा,
0: सारे प्रोग्राम मैम बहुत अच्छे चल रहे हैं। विविध भारती का मैं बहुत ही पुराना श्रोता हूँ और बचपन से ही मैं विविध भारती सुनता हूँ।
1: कितने समय से?
0: कह लीजिए मैम मैं कम से कम जब 13-14-15 साल का था ना उस समय से लेके आज मेरी एज 35 है, अभी तक मैं मतलब विविध भारती सुनता हूँ।
1: तो क्या अच्छा लगा आपको, इतने साल हो गए, आप 35 साल की हो गई हैं।
0: जो बात विविध भारती में मतलब मुझे दिखती है वो बाकी जो स्टेशन पे हम सुनते हैं, विविध भारती का एकदम सब कुछ एकदम अलग से है, एकदम उसका साउंड, उसका बैकग्राउंड म्यूजिक और उसका जो धुन, ये है विविध भारती। ये बहुत ही बचपन से मेरे कानों में ये शब्द गूंजते हुए आ रहे हैं और आज तक गूंज रहे हैं।
1: क्या बात है, चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप विविध भारती को इतनी शिद्दत से सुनते हैं कि आपको उसकी हर बात बहुत पसंद आती है।
0: और अच्छा। मनचाहे गीत भी मैं सुनता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है, वो भी दोबारा से स्टार्ट हुआ है।

0: प्रोग्राम और ज्यादा हमारी खुशी दोगुनी हो गई है।
1: अगर आपको अपनी पसंद का कोई कार्यक्रम पेश करने का मौका मिले, कल्पना कीजिए विविध भारती में, तो आप क्या पेश करना चाहेंगे?
0: मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं तो जो फरमाइशी कार्यक्रम है ना, मैं मन चाहेगी उसे प्रस्तुत करना चाहूंगा।
1: क्यों? क्योंकि बहुत सारे श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा।
0: बहुत सारे श्रोताओं से जुड़ने का मौका मिलेगा और उनके ढेर सारे खत पढ़ने का मौका मिलेगा।
1: बहुत अच्छी बात है। चलिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। गाना बता दीजिए, कौन सा सुनेंगे?
0: फिल्म का नाम है मैम बंदिश। राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पे फिल्म आया गया है। 1980 में मूवी आई थी और इसका गीत है, रंग भरे मौसम से रंग चुरा के, आ देखू तेरी मांग में सिंदूर सजा के, सिंदूर सजा के।

तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288। दूसरा नंबर है 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। तकनीकी सहयोग समृद्धि नायक, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस

0: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
3: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
4: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
2: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध।

0: यह विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम के 5 बजे ही प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में हम आपको जानकारी देंगे आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। अब से कुछ देर यानी शाम 5:05 पर युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

आज युवाणी कार्यक्रम में आप सुनेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जयंती तिथि पर और विश्व छात्र दिवस और साथ ही सुनेंगे फिल्म संगीत। शाम 5:30 पर जयपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बाता। शाम 6:00 हमारे मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम। दोबारा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9:00। शाम 6:30 का समय रोजाना की तरह जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और 6:45 पर जयपुर केंद्र से ही राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7:00 का समय जयपुर केंद्र से किसान श्रोताओं का कार्यक्रम किसान वाणी।

शाम 7:30 पर जयपुर केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम होंगे। रात 8:45 पर दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या। रात 10 बजे स्थानीय स्टूडियो

से आप सुनेंगे फिल्म संगीत रात 11 बजे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओं ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नजर कल की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों पर।

करता हूँ। प्रातः 5:53 पर रेडियो तरंगों के जरिए आपसे मुलाकात होगी। प्रातः 6:00 दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 6:05 पर जयपुर केंद्र से चिंतन और 6:10 पर जयपुर केंद्र से ही वंदना। प्रातः 6:30 पर स्थानीय स्टूडियो से आप सुनेंगे रामचित मानस गान। 6:45 पर खेती निपात। आदिवासी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 6:50 पर। 7:20 पर वातायन।

7:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। दोबारा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 10 बजे। प्रातः 8 बजे का समय दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। प्रातः 8:15 का समय उत्कोषक के अपने कार्यक्रम कुछ दिल से। कल का विषय रहेगा जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। राजस्थानी लोक संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:45 पर। 9 बजे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 9:10 पर सुगम संगीत। दोबारा सुगम संगीत का आनंद लेंगे 11 बजे। प्रातः 9:30 पर एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 पर फिल्म संगीत। 12 बजे से सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से।

यह थोड़ी जानकारी आज की शेष और कल के प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों की। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही जनन है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवा वाणी।

कार्यक्रम युवाणी सुन रहे सभी मेरे साथियों को आपके दोस्त शिवाली कलाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कुछ लोग अपने जीवन काल में ही नहीं बल्कि अपने विचारों और आदर्शों के माध्यम से हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। ऐसे ही महान व्यक्तित्व वाले भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। आज हम उन्हें उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति पद तक पहुंचना उनकी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति का अद्भुत उदाहरण है। उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से भी

जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर कलाम की सबसे बड़ी पहचान केवल उनकी वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि युवाओं के प्रति उनका अटूट विश्वास था। वे मानते थे कि देश का भविष्य उनकी युवा पीढ़ी के हाथों में है। उनका सपना था कि भारत एक विकसित, आत्मनिर्भर और ज्ञानवान राष्ट्र बने।

करते हैं। आज के युवाओं के लिए उनका जीवन काल एक बड़ा संदेश है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे भीतर सीखने की इच्छा, मेहनत करने का साहस और लक्ष्य के प्रति समर्पण है, तो हमें अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंच सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने 27 जुलाई 2015 को शिलांग में विद्यार्थी को संबोधित करते हुए अंतिम सांस ली। वे अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक शिक्षा और युवा के प्रति प्रेरित करने के लिए कार्य में लगे रहे। आइए, उनकी पुण्यतिथि पर हम केवल उन्हें याद ही नहीं करें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लें। अपने सपनों को लक्ष्य बनाएं, ज्ञान को अपनी ताकत बनाएं और अपने कार्यों से देश का नाम रोशन करें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ कार्यक्रम में आगे सुनते हैं गीत व संदेश।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे.
1: सो इजी.
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट.

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो दे लाइफ टाइम सम अशर्ड के 10% का एनुअल इनकम और शॉर्ट और फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म चूज करने की फ्रीडम
2: है? ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अच्छा, और अगर मुझे लिक्विडिटी की फैसिलिटी जैसे लोन अगेंस्ट पॉलिसी, टैक्स बेनिफिट और डेथ कवर भी चाहिए हो तो?
2: है ना LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी।
1: अरे इतना सब कुछ एक ही पॉलिसी में? ये पॉलिसी है ऑलराउंडर।
0: LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी यानी आपके सेलिब्रेशन का रीजन और गारंटीड खुशियां, सभी का भरोसा और LIC की गारंटी। बिक्री समापन के पूर्व अधिक जानकारी और जोखिम घटकों, नियम और शर्तों के लिए विक्रय पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
3: वह सुबह से शाम तक काम करती है, फिर भी अपने काम का हिसाब नहीं मांगती। वह खेतों में पसीना बहाती है, परिवार के सपनों को सींचती है और पूरे गांव की अर्थव्यवस्था को अपने श्रम से मजबूत बनाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हमारी ग्रामीण महिलाओं की, जिनके परिश्रम से गांव की मिट्टी में खुशहाली के बीज अंकुरित होते हैं। हर वर्ष 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के योगदान को पहचानना और उनके अधिकारों, सम्मान तथा सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथियों, कल्पना कीजिए सुबह की पहली किरण के साथ उठने वाली एक महिला जो घर संभालती है, बच्चों का भविष्य संवारती है, खेतों में काम करती है, पशुओं की देखभाल करती है और कई बार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई कहानी भी लिखती है। ग्रामीण महिला केवल परिवार की धुरी नहीं बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था और देश के विकास में भी महत्वपूर्ण आधारशिला है। आज हमारी ग्रामीण महिलाएं खेती किसानी से लेकर हस्तशिल्प, दुग्ध उत्पादन, छोटे व्यवसायों और डिजिटल तकनीक तक अपनी पहचान बना रही है। वे यह साबित कर रही है कि अवसर और विश्वास मिले हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। लेकिन आज भी कई ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं,

स्वतंत्रता और समान अवसरों की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रामीण महिला दिवस केवल उत्सव मनाने का दिन नहीं है, बल्कि यह संकल्प लेने का अवसर है कि हम हर बेटी को शिक्षा, हर महिलाओं को सम्मान और हर मेहनतकश हाथों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, जब एक ग्रामीण महिला सशक्त होती है तो केवल परिवार नहीं बल्कि पूरा गांव और आने वाली पीढ़ियां सशक्त होती है। आइए हम ग्रामीण महिलाओं के श्रम को सम्मान करें, उनके सपनों को पंख दें और ऐसा समाज बनाएं जहां उनकी पहचान केवल उनके त्याग से नहीं बल्कि उनकी प्रतिभा, आत्मविश्वास और उपलब्धियों से भी हो। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ कार्यक्रम में आगे सुनते हैं गीत व संदेश।

0: किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
1: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
0: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
1: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
0: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जिंदगी के सपने तभी सच होते हैं जब आप करते हैं स्मार्ट प्लानिंग।
5: LIC लाया है एक नया प्लान, नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान। एक ऐसा प्लान जो दे आपको डुअल बेनिफिट, इंश्योरेंस भी, सेविंग्स भी। इसमें आपको मिलता है फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म ऑप्शंस के साथ अट्रैक्टिव गारंटेड एडिशंस एंड एनहांस्ड गारंटेड एडिशंस टू एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स।
4: अपने गोल्स के लिए चुनिए एक प्लान जो हो सिंपल, सिक्योर और स्मार्ट। LIC नव जीवन श्री रेगुलर प्रीमियम प्लान के साथ। अधिक जानकारी के लिए अपने LIC एजेंट से संपर्क करें या www.licindia.in पर विजिट करें। LIC हर पल आपके साथ।
6: दोस्तों, इस संदेश के साथ आइए हम हमारी अगली चर्चा को जारी करते हैं। दोस्तों, हमारी अगली चर्चा है विश्व हाथ धुलाई दिवस। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी एक छोटी सी आदत हमें कई बीमारियों से बचा सकती है? जी हाँ, वह आदत है सही तरीके से हाथ धोना। हर साल 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को साबुन और पानी से हाथ धोने के महत्व के प्रति जागरूक करना है। हम दिन भर अनेक चीजों को छूते हैं, कभी मोबाइल, कभी दरवाजे का हैंडल, तो कभी किताबें और दूसरी वस्तुएं। इन चीजों के माध्यम से हमारे हाथों पर हानिकारक कीटाणु आ सकते हैं जो भोजन के साथ हमारे शरीर में पहुंचकर हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे में हाथ धोना केवल स्वच्छता की आदत नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन की पहली सीढ़ी है। तो आइए जानते हैं कि हाथ धोने के कुछ महत्वपूर्ण अवसर हैं, जैसे कि खाना खाने से पहले, भोजन बनाने से पहले, शौचालय का उपयोग करने के बाद, खांसने या छींकने के बाद, जब भी हाथ गंदे हो साबुन से और साफ पानी से हाथ अवश्य धोए। दोस्तों, हाथ धोते समय हथेलियों, हाथों के पीछों के हिस्से, उंगलियों के बीच और नाखून के आसपास अच्छी तरह से सफाई करें। कम से कम 20 सेकेंड तक हाथों को साबुन से रगड़े और फिर साफ पानी से हाथ धो लें। दोस्तों, याद रखिए, स्वच्छ समाज का निर्माण छोटे छोटे आदतों से ही होता है। यदि हम स्वयं हाथ धोने की आदत अपनाएं और अपने परिवार तथा मित्रों को इसके लिए प्रेरित करें तो कई संक्रमणों से बचाव में मदद मिल सकती है। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, हाथों की सफाई अपनाएं, बीमारियों को दूर भगाएं। स्वच्छ हाथ स्वच्छ शरीर, यही है खुशियों की जागीर। इसी संदेश के साथ मुझे अनुमति दीजिए गीत व संगीत की दुनिया की ओर जाने की। स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए, मुस्कुराते रहिए।

दोस्तों कार्यक्रम में इस गीत के साथ समय हो चला है कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने का। इजाजत दीजिए आपके दोस्त शेफाली कलाल को कार्यक्रम युवाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

0: अपने युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम के 5:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बाता।
1: हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 5:30 का समय हुआ है। अब सुनते हैं हमारा प्रायोजित कार्यक्रम धीणेरी बाता।
2: धीणेरी बात्या, बात्या, बात्या।

0: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनेरी बातें।
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, आज मुंडा उतार किया बैठे हो।
2: काई करूँ दाबू बेटा, भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और बिरो जीसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे भी बातिया। काकी सा ई कार्यक्रम सुनन सु मिलसी पशुपालन से जुड़ी होरी सबरी समस्या रो समाधान।
3: इस कार्यक्रम की प्रायोजित है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
4: धीनेरी बातिया, धीनेरी बातिया कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
5: बंसी भाई रा
4: मोकला मोकला
5: राम राम
4: राम राम बंसी भाई राम राम
5: राम राम हरखू भाई राम राम
4: राम राम सा। देखो वक्त हो गयो अबकी चौपाल में बैठे हालांकि मन जाओ तो देखो शेर खानी हो पर आज इच्छा कम हुई कनी आज तो चौपाल में बैठ सर की हथई कर सा।
5: हाँ और खिंचाव है नी अपना है
4: बिल्कुल सा। और देखो जुड़ा है नी आखे राजस्थान सु है और जिका मोबाइल सु जिका कार्यक्रम ने सुने बे आखे विश्व में बैठा भी कार्यक्रम ने सुन सके और सुने भी है।
5: हाँ बिल्कुल
4: सुने भी आवे
5: कागज आवे नी घना करा और बे कागज है जिका तो अपना इतनी पहचान है उनारी।
4: बिल्कुल सा। और एक पहचान हमें थोड़ी सी आ और कर लो और जिको वक्त है नी है और मौसम है और भी बदल रही है।
5: हाँ बात है सची कह दी।
4: सूरज अब जल्दी ढलन लाग गयो, सिंजा जल्दी पड़न लागी और हवा में अब ठंडक आएगी। रात रात अपन ये चीज रो एहसास हुए तो अब देखो अपन लापरवाही है बा बिल्कुल नहीं करनी।
5: आ सातरी बात कही थी कि भाई लापरवाही जे करी आदमी कठे ही भी।
4: हाँ।

0: और बिन्ने नुकसान तो मिले ही मिले
1: मिले ही मिले। और कह भी करे कि आवती सर्दी और जावती सर्दी
0: दोनों नुकसान दे
1: दोनों नुकसान दे ध्यान रखो तो नुकसान की बात ही ना सोचो थी। अपने ध्यान रखना है, ध्यान रखना है अपने टाबरिया रो, अपने बुजुर्ग रो और अपने जिगे बार्डर माने बंधुड़ा पशु है बिहारो भी इन मौसम रो इन परिवर्तन होने वाले मौसम रो अपने ध्यान रखना के पशु भी इन मौसम से कहीं हुए
0: प्रभावित हो
1: प्रभावित हुए तो वे प्रभावित नहीं हुए वे स्वस्थ रहे निरोगा रहे इन बात रो आपने ध्यान रखना है।
0: अब भाई क्या भी करें कि भाई पशु कभी है नहीं मैं देखो सा बेजुबान होया करे
1: हाँ।
0: उन्होंने एक माँ बाप की तरह आप ही तो पाला ध्यान आप ही तो रखा
1: देखो जब आप भी इन्हें टाबरी की तरह पाल सनी तो बिहार जिका भाव भी है नी पशु पालक अच्छी तरह समझे कि पशु देखो अनमनो है पशु खुश है पशु दुखी है तो ये चीज में समझ सी वो ही पशुपालक जिको भी सु मन सु जुड़ियोड़ो हो सी और आप जिका भी पशुपालक भाई है नी वो काम धंधो जिको पशुपालन नो करे वो बहुत ही मन सु करे
0: आत्मा सु करे बिल्कुल सा
1: है नी। और ई काम रे मानने थाने देखो अब आजकल नई नई मशीने भी आएगी
0: हाँ आजकल तो घर घर दिखन लाएगी
1: है नी। देखो चाहे दूध दूध भी हो चाहे कोई जांचा वाचा करवावनी हो चाहे खान पीन से संबंधित हो नई नई मशीन आएगी। काल भी अठे अपर बंशी काका जिका है नी अपर नौरंग देसर वाला बेबी चर्चा के थारी नाम
0: उचाल क्यों मैं सोचियो मारो नाम अरखू भाई क्या लेवे है।
1: देखो बहुत जना इन बात री चर्चा करी के देखो नई नई मशीने आएगी है की तो आश्चर्य कर रिया और की राजी हो रहा कि देखो आप काम में बढ़ोतरी भी हुई है और स्वास्थ्य रूप में देखा तो भी आपने अच्छी अच्छी जानकारी मिल जाए कि भाई ई पशु ने ई आंगलो रोग है ईरो ओ उपाय है। तो देखो नई जिकी भी चीज है चाहे वो मशीन हो चाहे वो खाद्यान्न हो अपन भी रो उपयोग करना चाहिए उससे पहले अपने भी बारे में जानकारी लेनी चाहिए।
0: आ बात है सच्ची कह दी कि भाई कोई भी विषय है कोई चीज है तो उन्हें जानकारी बिना तो भाई देखो सब लोग कोई मतलब ही नहीं
1: आख्या नीच भरोसा को
0: करना ही नहीं चाहिए। माइक भी कहता है
1: हाँ देखो जब आ चीज वैज्ञानिक ले रहे आप पशु विशेषज्ञ ले रहे जन आपने आख्या नीच लेनी चाहिए बहुत शोध रहे बाद रहे मायने
0: बिल्कुल
1: चाहे मशीन दूध दूगने की मशीन हो चाहे चारे की मशीने हो वे बहुत सजग होपरा बहुत ही बीपर काम करे जब वे चीजें पशुपालक तक पहुंचे और किसान तक पहुंचे।
0: क्या कहने की भाई आपनो जो को काम है नी वे सेव पहली बे डॉक्टर साहब और विशेषज्ञ जी कहनी वे कर लेने चाहे वे खोजबीन है चाहे उनरो जो को नफो नुकसान है उन सगली री खोजबीन कर करार फिर बात चीज कही है कि आप लुगा वास्त्र में रखे
1: बिल्कुल हाँ अच्छा लो क्या ये तकनीक पर ही नई मशीन पर की आज बातें करो
0: क्यों
1: सामने देखो सगड़े ही हाथ हिला रहा है राम राम राम बैठे बैठे थे
0: तो तेरे कागजिया में भी मारे ख्याल में मैंने आई बात
1: देखो जल्दी देखो मैं
0: कागजिया देखो ये आज का अपना चौपाल में बैठा जगह ये ध्यान पड़ गयो दिखे कागज रे मायने भी वही विषय लिखोड़ा है घनकरा लोग कई लोग लिखे है कि भाई मशीनीकरण की कई जरूरत है और कई जना लिखे कि आधुनिक जी की तकनीक उम्र इन पशुपालन में कई महत्व है और कई जना लिखे कि भाई पशु चिकित्सा रे मायने मशीनरी कई दरकार
1: एक करो ये सगड़ा जवाब भी दे
0: अच्छा ठीक है एक विषय तो ये बने कि भाई पशु चिकित्सा और पशुपालन में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक रो महत्व किसोग लगे
1: बहुत बढ़िया है सर और जवाब दूं सारू मैं आपने बता दूं वेटनरी कॉलेज बीकानेर से पधारे है सहायक आचार्य डॉक्टर दिवाकर चौधरी। तो सबसे पहला डॉक्टर दिवाकर चौधरी सा आप रो चौपाल में घनो घनो स्वागत है आपने मैं करा
2: राम राम सा राम राम राम राम।
0: तो जी हाँ खूब भाई देखो तो आज रो जो तकनीकी विषय नहीं हो इतना है तो एक तकनीकी इशू जुड़ो सवाल हूँ कर लू गई
1: कर लो सिद्धिगणेश।
0: तो सेव पहले तो आप महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने आप बताओ कि मशीनीकरण कई है इनकी जरूरत क्यों है।
2: देखिए जब हम किसी काम को हाथ से करने की बजाय किसी उपकरण या मशीन की मदद से करते हैं तो इसे मशीनीकरण कहते हैं।
0: अच्छा
2: जैसे चारा काटने की मशीन दूध निकालने की मशीन या गोबर हटाने का स्क्रैपर ये सब मशीनीकरण के उदाहरण हैं। और रही बात इसके फायदे की तो इसका सीधा सा फायदा है समय और मेहनत की बचत काम में सुविधा और सफाई में सुधार। लेकिन हर किसान को हर मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहले देखें कि आपके यहाँ किस काम में सबसे ज्यादा समय लगता है
1: जी।
2: और कौन सा उपकरण उस काम को सचमुच आसान करेगा। लेकिन मशीन खरीदने से पहले
0: उसकी

0: के साथ बिजली या ईंधन, मरम्मत, पुर्जे और चलाने की सुरक्षा का खर्च भी समझें। सही जरूरत के लिए सही मशीन चुनना ही समझदारी है।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि पशुपालन में सबसे उपयोगी मशीन किसी किसी होया करे।
0: सबसे पहले उपयोगी मशीनों में आती है चारा काटने की मशीन। इससे चारा छोटे टुकड़ों में कटता है और उसे खिलाना आसान होता है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि मशीन की सुरक्षा का कवर कभी ना हटाएं, चलते ब्लेड के पास हाथ ना ले जाएं और सफाई से पहले बिजली बंद रखें। दूसरी है चारा मिलाने की मशीन। जहां पशु अधिक हों वहां यह अलग अलग चारा को समान रूप से मिलाने में मदद कर सकती है। लेकिन मशीन से मिलाया गया चारा आप में संतुलित आहार नहीं बन जाता। पशु की उम्र, दूध, गर्भ स्वास्थ्य और शरीर की स्थिति के अनुसार ही आहार तय करें। और इसी क्रम में तीसरी मशीन है दूध निकालने की।
1: अच्छा,
0: यह खासकर उन डेयरी फार्मों में उपयोगी हो सकती है जहां कई पशुओं को रोज दूध निकाला जाता है। दूध निकालने से पहले थनों की सफाई करें और हर बार मशीन को सही तरीके से धोएं। गलत उपयोग या गंदी मशीन से थनों और दूध की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। और फिर है साफ सफाई। गोबर हटाने के उपकरण, पानी की निकासी और सफाई के साधन भी उतने ही उपयोगी हैं। पशुशाला साफ रहेगी तभी तो पशुओं को आराम मिलेगा और काम करने वाले लोगों की मेहनत भी घट सकती है।
1: जी देखो, बहुत बढ़िया जानकारी दी कि चारा काटने मशीन जी अपन ले रहे हैं तो अपन बहुत ही सावधानी रखनी है। साथ ही साथ दूध निकालने की मशीन भी आपने जानकारी दी कि दूध निकालने के बाद में भी अच्छी तरह धो। और धोने सब क्या प्रयास करना चाहिए, किस धोना चाहिए, खाली पानी ठीक है?
0: हाँ बिल्कुल, पानी से उनको पहले धोएं थनों को ताकि उसमें दोबारा से कोई बैक्टीरिया या जर्म्स ना लगे हों।
1: और मशीन में
0: और मशीन को भी धोएं और उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करें।
1: जी तो आपने साफ सफाई को विशेष ध्यान रखना है। देखो दूध भी खराब होने की संभावना है, साथ ही साथ पशु धन भी नुकसान होने की संभावना रहे। तो अपने छोटी छोटी बातें यह अपने ध्यान रखना है।
2: और क्या भी करें कि सावधानी हट्टी घट्टी पर बानोक बतावी नहीं।
1: हाँ
2: इन सारी तो डॉक्टर साहब अपने ज्ञान देने वास्ते बैठे है आवे है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल अब आवे की भाई बड़ा बड़ा जो डेयरी फार्म है या पशुपालक है उन्होंने वास्ते तो समझ में आ जाए की भाई मशीन है जी की जरूरी, छोटा पशु पालक करे खातिर भी मशीनीकरण जरूरी है कहीं?
0: हाँ ये आपका बहुत ही जरूरी सवाल है। छोटे पशु पालक भी इसका लाभ ले सकते हैं लेकिन उन्हें महंगी मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि रोज चारा काटने में बहुत समय लगता है तो छोटी मशीन भी उपयोगी हो सकती है। और या फिर यदि गांव में कई छोटे पशु पालक हैं जिनके पास दो या तीन पशुए हैं तो वो मिलकर एक मशीन को खरीद सकते हैं साझा मशीन के लिए। लेकिन पहले तय कर लें कि उपयोग कब कौन करेगा, सफाई कौन करेगा और मरम्मत का खर्च कैसे बांटा जाएगा। याद रखें मशीन केवल आधुनिक दिखने के लिए ना खरीदें, उसे तभी लें जब उसे आपकी मेहनत बचे, काम बेहतर हो और खर्च आपकी क्षमता के अनुसार हो।
1: बहुत बढ़िया बात बताई कि आधुनिक दिखन सारू उड़ाने के देखो नया मशीन लिए। अरे मशीन आप काम रही है या नहीं है भी तो आपने ध्यान रखना।
2: देखा देखी लावण चक्कर में आ जाओ कि भाई मशीन पीछे लग गया है और नुकसान और
1: नुकसान और हो गया। अब एक और मैं आपसे डॉक्टर दिवाकर जी मैं आपसे पूछना चाहूँ कि पशु चिकित्सा में इंजीनियरिंग और मशीनरों कई काम होया करे?
0: देखिए इंजीनियरिंग का काम केवल ट्रैक्टर या बड़ी मशीनें बनाना नहीं है। इससे ऐसे उपकरण और सुविधाएं भी बनती हैं जो पशु को देखभाल और पशु चिकित्सक के काम को आसान बनाती हैं। उदाहरण के लिए पशु को जांच या उपचार के समय सुरक्षित रखने वाले उपकरण, प्रयोगशाला की मशीनें, सफाई के व्यवस्था, पशुशाला का बेहतर डिजाइन, सेंसर या स्वचालित व्यवस्था भी कुछ कामों में मदद कर सकती हैं। लेकिन मशीन पशु चिकित्सा की जगह नहीं लेती, बीमारी की पहचान और इलाज का निर्णय योग्य पशु चिकित्सक ही करता है। इस बात का आप ध्यान रखें। मशीन का उद्देश्य पशु और पशुपालक दोनों के लिए काम को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।
2: जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बताई डॉक्टर साहब की भी उद्देश्य जो को है नी उन्हें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि उद्देश्य पर कई है। और इन सारे डॉक्टर साहब एक सवाल प्रेम जी भाई लेकर भेजे है कि डॉक्टर साहब पूछो कि भी मशीना और इंजीनियरिंग पशुआरे स्वास्थ्य और आराम में किन भात मदद क्रिया करे।
0: जैसे अगर इसको उदाहरण से समझे तो जैसे राजस्थान में गर्मी, धूल और पानी की कमी को ध्यान में रखकर पशुशाला में

0: कुछ व्यवहारिक सुधार किए जा सकते हैं। सबसे पहले छत और हवा की व्यवस्था सुधारें। छत पर गर्मी परिवर्तित करने वाला सफेद पेंट या उपयुक्त कोटिंग मदद कर सकती है। छत के नीचे गर्म हवा जमा ना हो, इसके लिए हवा निकालने का रास्ता रखें। केवल पंखा लगाने से पूरा फायदा नहीं होगा। यदि गर्म हवा बाहर ना निकल पाए, खुरली ऐसी हो कि पशु आराम से चारा खा सके और चारा बाहर कम गिरे, उसके नीचे सफाई करना आसान हो। पानी की नांद ऐसी जगह रखें जहां पशु आसानी से पहुंच सके और उसमें गोबर या चारा ना गिरे। टंकी में एक ऐसी व्यवस्था भी करी जा सकती है जिसमें फ्लोट वाल्व लगाने से पानी का स्तर अपने आप बना रह सकता है। फर्श पे उचित ढलान रखें ताकि गंदा पानी एक और निकले, फर्श खुरदरा और फिसलन रहित हो। बहुत ज्यादा ढलान भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे पशु को चलने में परेशानी हो सकती है और वो फिसल कर गिर भी सकता है। इसी तरह गर्मी में जहां पानी उपलब्ध हो वहां जरूरत के अनुसार स्प्रिंकलर या पंखे का उपयोग भी किया जा सकता है। पूरे फर्श पर बार बार पानी डालने के बजाय पशु को राहत देने वाली व्यवस्था करें। पानी की नांद हमेशा साफ पानी उपलब्ध रखें। और मैं इसी को आपको एक उदाहरण से अगर समझाना चाहूं तो हमारे राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विश्वविद्यालय ने पशुओं को आराम और कार्य क्षमता के लिए इंजीनियरिंग का एक और उपयोग का उदाहरण देता हूं। जैसे बैलों से खेत में काम लेते समय देखा जा सकता है, मैंने एक विशेष हल का डिजाइन तैयार किया है जिसके लिए मुझे भारत सरकार से डिजाइन पेटेंट भी प्राप्त है। इस हल में बैलों के बीच में लगने वाले जोड़ में शोकर यानी झटका कम करने वाला तंत्र और बैलों के ऊपर धूप से बचाव के लिए शेड की व्यवस्था शामिल है।
1: अच्छा,
0: इस डिजाइन की सोच यह है कि खेत की ऊंच नीच या हल के खिंचाव से लगने वाला अचानक झटका उसको कम करना, उसमें मदद मिले, काम के दौरान बैलों को धूप से कुछ बचाव मिले।
1: जी,
0: राजस्थान जैसे गर्म क्षेत्र में यही विचार उपयोगी हो सकता है।
1: बिल्कुल सर।
0: हालांकि वास्तविक लाभ हल की बनावट, शोकर की क्षमता, शेड का वजन और खेत की स्थिति पर निर्भर करेगा।
1: जी जी, बहुत ही अच्छी बात बताई। और देखो, बातचीत करानी जन थोड़ा अपन जी का पशुपालक भाई बैठा है, थाना बीज को मन मन दिख रही है, गीत लो सुन लो।
2: बिल्कुल तो मंदरी बात जानो भाई।
1: अरे जाना गई मन तो ध्यान है, मैं जिको वक्त है वो गीतड़ ले रो है तो ठीक हो तो सुना दू के एक।
2: बिल्कुल जल्दी से सुनाओ
1: गीतड़ लो।
2: गीतड़ लो
1: तो भाई आपसे सुनो सा, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़।

0: तो भाई आबार आप सुनियो ओ एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धूड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीनेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुने, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेड़ा आप से सुन रहे हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल री प्रस्तुति धीनेरी बातियां। और आज आप बातचीत कर रहे हैं पशु चिकित्सा और पशुपालन माय मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक रो महत्व और विशेषज्ञ है डॉक्टर दिवाकर चौधरी। आप सहायक आचार्य है वेटनरी कॉलेज बीकानेर माए।
2: डॉक्टर साहब गीत लो जब आप सुन रहे था नहीं तो सगला दिना देखो साहब अपने कागज रे माय ने सवाल लिख लिख रखने सरकार दिया कि भाई सवाल पूछो तो आगलो सवाल ओ है कि आधुनिक तकनीक से कई मतलब है क्या आ केवल मशीना तक ही सीमित रहा करे है कहीं?
3: नहीं, आधुनिक तकनीक का मतलब केवल बड़ी मशीन नहीं है। इसमें सेंसर, डिजिटल यंत्र, मोबाइल पर रिकॉर्ड रखना और कुछ कामों को अपने आप करने वाली व्यवस्था भी शामिल है। मान लीजिए किसी पशुपालक के पास कई गायें हैं, हर पशु के व्यवहार पर लगातार नजर रखना मुश्किल हो सकता है। कुछ आधुनिक प्रणालियां पशु की गतिविधियों में होने वाली बदलावों को रिकॉर्ड कर सकती हैं। इन बदलावों की मदद से पशु के मदकाल यानी हीट में आने के संभावित संकेतों का पता लगाने में सहायता मिल सकती है। इसी तरह कुछ सेंसर तापमान या गतिविधि जैसी जानकारियां दर्ज कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां पशुपालक को पशु की स्थिति पर ध्यान देने में मदद कर सकती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंसर से मिलने वाला संकेत अपने आप में बीमारी या किसी विशेष स्थिति की पक्की पुष्टि नहीं करता है। जरूरत पड़ने पर पशु चिकित्सक का सलाह लेना आवश्यक है।
0: जी बहुत बढ़िया जानकारी दी। पर एक प्रश्न और बने, देखो थे नवी नवी तकनीक की बात करो, मशीनरी बात करो, इंजीनियरिंग की बात करो
3: जी, जी।
0: तो क्या इन सारू महाराज का पशुपालक भाई है, किसान भाई है, बियाना की पढ़ियो लिखियो होना भी जरूरी है के?
3: नहीं, ऐसा नहीं है। कई उपकरण ऐसे हैं जो सामान्य प्रशिक्षण के बाद चलाए जा सकते हैं। मशीन खरीदते समय विक्रेता को उसे चलाने, साफ करने और सुरक्षित रखने की तरीके जरूर सीख लेने चाहिए। लेकिन बिजली से चलने वाली मशीन में सुरक्षा कवर ना हटाएं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जैसे। लेकिन मशीन चल रही हो तो उसमें हाथ ना डालें, सफाई या मरम्मत से पहले बिजली बंद करें।

0: क्षमता से ज्यादा काम लेने या बिना जानकारी मशीन खोलने से दुर्घटना हो सकती है। जरूरत हो तो पशुपालन विभाग, पशु चिकित्सालय, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित विशेषज्ञ से प्रशिक्षण ले। सही जानकारी के साथ साधारण उपकरण भी बहुत उपयोगी हो सकते हैं।
1: जी जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी। सेव मोटी बात है कि कोई भी मशीन खरीदो तो सेव पहले मेरी पूरी जानकारी लो क्या चाल किया है। जे कोई भाईखन है तो बढ़ जा दो पांच दिन देख लो क्या मशीन किया काम में ले, फिर बाद में खरीदने सोचो। तो आज की छोटी सी बात है लेकिन बहुत उपयोगी बात है कि आपने कोई भी मशीन है, चाहे चारो काटन भी हो चाहे दूध दूने की मशीन हो, मेरे उपयोग किया लेना मेरी अपने जानकारी पहला से होनी बहुत जरूरी है सा।
2: और जानकारी लेने से अपना जगह पशुपालक भाई ने भी बहुत ही सजग रहे। और इन सारी आगलो में सवाल भी आपने लिख भेजियो कि डॉक्टर साहब ने पूछा कि भाई डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई मशीनीकरण से लाभ होया करे भी होया करे। तो मैं पूछे कि क्या मशीनीकरण से पशुपालक रो जो खर्च है वो कम होया करे या उसे बढ़े?
0: नहीं, ऐसा कुछ परिस्थितियां तो देखिए ऐसी है जिसमें खर्च कम बिल्कुल होता है। यदि चारा काटना या दूध निकालने में सफाई में रोज बहुत समय लगता है तो सही मशीन से मेहनत और समय बच सकता है, लेकिन मशीन खरीदने के साथ बिजली, ईंधन, मरम्मत और पुर्जों का खर्चा भी जुड़ा होता है।
2: अच्छा,
0: इसलिए खरीदने से पहले तुलना करें कि मशीन में कितनी मेहनत बचेगी, उसका कुल खर्च कितना होगा। गाँव के कई पशुपालक मिलकर मशीन का उपयोग करें तो हर व्यक्ति पर खर्च कम हो सकता है। सबसे पहले कम खर्च वाले सुधार करें, साफ पानी, अच्छी हवा, छाया, उचित खुरली और आसान सफाई। उसके बाद जरूरत और बजट के अनुसार मशीन खरीदने का फैसला करें।
1: पर एक डॉक्टर साहब बात मारे मन में मायने आ रही है, मारे मन में बात कौन मारे सगला पशुपालक और किसान भाई बात आ है कि जिकी भी नवी तकनीक आया करे मशीन आवे तो मेरे बारे में कोई राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कोई प्रशिक्षण शिविर भी रखे करे कहीं ताकि भी नवी तकनीक से मारा पशुपालक भाई जिया किसान भाई वह जुड़ जावे।
0: हाँ, समय समय पर हमारी यूनिवर्सिटी इस तरह के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाती रहती है और अगर इसी में हमारे पशुपालकों को कुछ मशीनीकरण के बारे में जानकारी लेनी है तो हमारे ही यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है, तो उस सेंटर में आ सकते हैं और वहां पर उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर कोई नई मशीन आई है, जैसे मैंने अभी आपको ये जो हमें डिजाइन पेटेंट प्राप्त हुआ है इसके बारे में किसी पशुपालक को जानकारी लेनी है तो वो बिल्कुल हमारे वहां आ सकते हैं और हम उनको पूरी उसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उसकी जानकारी भी दे सकते हैं।
1: क्यों मतलब भाई है कि जिका भी भाई सजग है वह इन लाभ ले सके, जे थाने कोई शंका समाधान हुए कि मशीन के बारे में तो अपन तुरंत राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से संपर्क कर लेना चाहिए कि इन बारे में कभी कोई शिविर लाग रही होगी, जे लागे तो आपने बढ़ चढ़ हिस्सों भी लेना चाहिए। एक बात और कह दो, जे आपने मशीन अभी नहीं खरीदनी कि भाई आप अगले साल खरीदा पर ज्ञान लेने में क्या कमी है।
2: हाँ,
1: तो यहाँ अगले जब भी कोई प्रशिक्षण शिविर लगे नहीं तो आपने बढ़ चढ़कर भाग लेना है, साथ साथ दूजा ने भी जानकारी देनी है कि भाई बंसी भाई देखो बड़े कैंप लाग रहे हमें वक्त है तो चलो, है नी? तो साझेदारी भी करनी चाहिए
2: बिल्कुल। और देखो साहब, बात करें साझेदारी री कि भाई साझेदारी हर जगह पर जरूरी है, हर व्यक्ति आपकी जिम्मेदारी निभावे नहीं जने काम बने। भाई तकनीकी युग है, तकनीकारों को उपयोग तो आप घना करसा ही करसा आपा लोग, पर साथ साथ जिम्मेदारियां भी आवे तो उन बाबत डॉक्टर साहब पशुपालन में भविष्य और आपा सगलारी जिम्मेदारी बाबत आप महाराज का पशुपालक भाई है उन्होंने कई संदेश देना चाहो सर।
1: हाँ सर,
0: देखिए किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, तकनीक का असली लाभ तभी मिलता है जब हम उसे अपनी जरूरत और अपने बजट के अनुसार अपनाते हैं। चारा काटने की मशीन हो, चाहे साफ पानी की व्यवस्था करनी हो, बेहतर वेंटिलेशन हो, गोबर प्रबंधन हो, हर सुधार का उद्देश्य मेहनत कम करना और पशु की देखभाल बेहतर बनाना होना चाहिए। हमारा संदेश यही है कि सभी पशुपालकों की मेहनत सफल हो और उनका परिवार में खुशहाली बनी रहे।
1: जी, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी सर, संदेश भी काम को हो, सजग रहने वाला संदेश हो। तो अब मैं आपने बता दूं सर, देखो चौपाल में बैठे बैठे के एक बखत रो पत्तो ही नहीं चाले हो और बखत है वो देखो इशारो करने लग गए कि मैं आज्ञा ले ली जावे
2: और आपने इशारे में समझना चाहिए।
1: तो मैं आपने बता दूं पशुपालक भैया, आज चौपाल में जानकारी देने सर पधारिया राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर छू सहायक आचार्य डॉक्टर दिवाकर चौधरी और आज आप बातचीत करी पशु चिकित्सा और पशुपालन में मशीनीकरण और आधुनिक तकनीक रो महत्व विषय पर। डॉक्टर दिवाकर चौधरी जी आप चौपाल में पधारे, मैंने बहुत ही बढ़िया अनमोल जानकारी दी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा प्रायोजित कार्यक्रम थीनेरी बात्या। यह आकाशवाणी बीकानेर केंद्र की प्रस्तुति थी। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.51 मीटर।
1: अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम थीनेरी बात्या। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम के 6 बजे है। लीजिए प्रस्तुत है मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा की है। नई दिल्ली में आज एशियाई खेल में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है।
3: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार दूसरी बार मेडल जीता है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट्स से नए रिकॉर्ड, 28 साल बाद वेटलिफ्टिंग में मेडल।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद आज ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
4: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा। कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि 2047 से पहले विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। राष्ट्रपति ने आज आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के बाहर पहली बार विजयवाड़ा में आयोजित हो रहा सरस मेला स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वर्णास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद

0: निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 की मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के कारण दिव्यांग हुए लोगों को कृत्रिम अंग और अन्य सहायता उपलब्ध करा रही है। श्री शाह ने सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए। गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस वर्ष 31 मार्च तक देश से नक्सलवाद समाप्त करने का दृढ़ संकल्प लिया था और अब देश नक्सलवाद मुक्त हो चुका है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पीजी 2026 की उत्तर कुंजी और अभ्यर्थियों के उत्तर सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता की याचिका पर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधी की पीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए। अमरीका के लास वेगस में विश्वजीत रामचंद्र मोर ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर कार्यक्रम तराने ने पुराने का शेष भाग। आइए सुनते हैं जोश फिल्म से ये गाना, अभिजीत की आवाज में, समीर के बोल और संगीत है अनु मलिक का।

तरानी नई पुरानी कार्यक्रम का अगला गाना आप सुन रहे हैं हेलो ब्रदर फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। संगीत है हिमेश रेशमिया का।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन।

सोनू निगम के साथ हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन की आवाज में आप सुन रहे हैं परदेश फिल्म से गाना, आनंद बख्शी के बोल, नदीम श्रवण का संगीत।

संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर

0: दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में साजन चले ससुराल फिल्म से ये गाना समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। शाम के 6:30 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार, जिले की चिट्ठी और ठीक उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 के खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम काफी मजबूत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा स्वयं सहायता समूहों ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के नए द्वार खोले। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई स्थानों पर बारिश और ठंडी हवाओं का दौर चला। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जापान में हाल ही में हुए एशियाई खेल भारत के लिए कई मायनों में यादगार रहे हैं। देश की बेटियों ने इन खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सभी का गौरव बढ़ाया है। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 में भाग लेने वाले दल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत ने इन खेलों में कुल 85 पदक हासिल किए, इनमें से 38 मेडल महिला खिलाड़ियों ने जीते हैं।
2: मैं हमारी बेटियों खास तौर पर सराहना करना चाहता हूं। भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं उनमें से 38 मेडल हमारी वुमेन एथलीट ने जीते हैं और इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल है और ये मेडल केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की सशक्त तस्वीर है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कई खिलाड़ियों ने साबित किया कि सफलता के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। दिव्यांग खिलाड़ियों ने भी देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि गांव-गांव खेल प्रतिभाओं को तराशा जा रहा है, देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम काफी मजबूत हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज लद्दाख को 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वर्चुअल माध्यम से इन परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रगति और विकास के नए अध्याय की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने लेह के नए हवाई अड्डे टर्मिनल का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जियो थर्मल तकनीक वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा टर्मिनल है, जिसमें लद्दाख की कठिन और अत्यधिक ठंडी जलवायु में तापमान को नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी नई गति मिलेगी।
3: 650 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल इस एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। यहाँ उड़ानों की संख्या भी 3 गुना तक बढ़ सकती। इस टर्मिनल की एक और विशेषता है लद्दाख की कठिन जलवायु को ध्यान में रख इसमें जियो थर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, सौर ऊर्जा का भी इसमें उपयोग हुआ है। भारत में जियो थर्मल हीटिंग की

0: सुविधा वाला ये देश का पहला एयरपोर्ट टर्मिनल है।
1: अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय सरस मेले का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगाए गए इस मेले में देश भर की 1500 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। सरस मेले का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के उत्पादों, पारंपरिक शिल्पकला और हथकरघा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध करवाना है। इस अवसर पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों ने महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के नए द्वार खोले हैं।
2: जब एक दिन महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल, परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, परिवार के इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 3 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने अब 6 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सरस मेला अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, देश के अलग अलग राज्यों में भी सरस मेले आयोजित किए जाएंगे।
3: अलग अलग राज्यों में भी सरस मेला करेंगे ताकि दीदियों को प्लेटफॉर्म मिले। एक राज्य में एक सरस मेला, उसके आगे बढ़ के अब सीमार्ट हम बनाएंगे। सीमार्ट 10 लाख रुपया इस डिस्ट्रिक्ट हमने फैसला किया है सीमार्ट के लिए, और सीमार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि उस जिले की दीदियों को अपने सामान को बेचने का प्लेटफॉर्म मिले, मार्केट मिले।
1: अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हुए। बाली में महिला किसानों को जलवायु अनुकूल खेती के बारे में बताया गया। देश का अंतरिक्ष क्षेत्र ऐतिहासिक सुधारों से गुजर रहा है। वर्ष 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के लागू होने के बाद इस क्षेत्र में बड़े बदलाव आए हैं। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को एक स्वायत्त सिंगल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। ये निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने और अंतरिक्ष गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। फरवरी 2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों को भी बेहद आसान बना दिया गया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल शुरू किया गया है। साल 2014 में देश में केवल एक पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप था, जिनकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 हो गई है। स्काईरूट एयरोस्पेस की ओर से भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया गया, जो इस क्षेत्र के निजीकरण में मील का पत्थर है। भारत ने साल 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने का दीर्घकालिक लक्ष्य भी तय किया है। समाचार कक्ष से सलीहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट कर सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी। श्री शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजस्थान में जल प्रबंधन, पेयजल उपलब्धता और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बारे में चर्चा की। इसके बाद मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी से भी मिलने उनके आवास पर पहुंचे। पूर्व राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आज जयंती है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध डॉ कलाम महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद थे। उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। उनकी जयंती को विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। उनका जीवन सादगी और कर्मठता का प्रतीक माना जाता है। अपने आदर्शों से युवा पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करते हुए उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण के लिए लगातार काम करने की बात कही।
5: आपके नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के तत्पर तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए आप सबको

0: मेरी शुभकामनाएं और बताएं। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर भारत को एक विकसित देश बना देंगे।
1: फलौदी जिले के नौसर गांव के पास आज एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। पोलियो की ढाणी में हुई घटना की सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचा और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लिए कैमरे की मदद से नजर रखी जा रही है। राज्य में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ का असर कई स्थानों पर देखा जा रहा है। इससे कल पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों में मौसम बदल गया। दोपहर बाद बाड़मेर, बालोतरा, फलौदी और जैसलमेर तथा आसपास के क्षेत्रों में बारिश हुई। बरसात के बाद तापमान में कमी आई है। इस बीच आज भी कई जगह बादल छाए रहे और हल्की बारिश के समाचार हैं। डीग में कुछ देर गरज के साथ तेज बारिश हुई और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। भीलवाड़ा जिले के सुवाणा, हमीरगढ़, कोटड़ी, रायला और गुलाबपुरा में हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर में भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना भी जताई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल भी जयपुर और भरतपुर संभाग तथा शेखावाटी क्षेत्र में बारिश हो सकती है।
2: इस सिस्टम का सर्वाधिक असर शेखावाटी क्षेत्र के इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के जवाबों के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अक्टूबर को भी इस सिस्टम के असर से मेघ गर्जन के जवाबों के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा।
1: प्रदेश में विभिन्न फर्मों में किए गए औचक निरीक्षण में मूंगफली के बीजों की गुणवत्ता में गड़बड़ी सामने आई है। कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि सीकर, चूरू, बीकानेर और जयपुर की कुछ फर्मों में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान मूंगफली के बीजों के नमूनों के ग्रो आउट टेस्ट में 15 में से 14 सैंपल अमानक पाए गए। कृषि मंत्री ने बताया कि ये व्यापारी किसानों को गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के बजाय बाजार से अनाज खरीदकर उसकी आकर्षक पैकिंग कर किसानों को बेच रहे थे। श्री मीणा ने विभागीय अधिकारियों को इन फर्मों के खिलाफ FIR दर्ज करवाने और उनकी लाइसेंस निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। इधर विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश भर में विशेष जांच अभियान चलाया गया। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और मापतौल की गड़बड़ियों को रोकने के लिए 5 अक्टूबर से 10 दिन का ये अभियान चला। इस दौरान राजधानी जयपुर सहित अन्य स्थानों पर प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर गड़बड़ी पाए जाने पर जुर्माना राशि वसूल की गई और सुधार नोटिस जारी किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एशियाई खेल 2026 के खिलाड़ियों से मुलाकात की। कहा, देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम काफी मजबूत हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, स्वयं सहायता समूह ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के नए द्वार खोले। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। और राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आज भी कई स्थानों पर बारिश और ठंडी हवाओं का दौर चला। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख सोमदत्त त्रिपाठी ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भीलवाड़ा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने इसमें शिरकत की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन प्रसारित किया गया। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का मान पूरे विश्व में बढ़ा है। बीते दिनों भीलवाड़ा नगर निगम सहित भीलवाड़ा जिले की 10 नगर पालिकाओं में पार्षद, सभापति और महापौर के चुनाव निष्पक्ष संपन्न हुए। भीलवाड़ा नगर निगम की पहली महिला महापौर जसवंत कंवर निर्वाचित हुई। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नगर निगम की महापौर को 100 दिन की कार्य योजना बनाते हुए भीलवाड़ा को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करने को कहा। पंचायत राज चुनाव को लेकर जिले के प्रमुख राजनीतिक दलों के साथ ही

0: पंच पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के चुनाव लड़ने की इच्छुक दावेदारों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। भीलवाड़ा में दो चरणों में चुनाव होगा। प्रमुख राजनीतिक दलों ने पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। भीलवाड़ा जिला निर्वाचन विभाग की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जहां विभिन्न प्रतियोगिताओं और रैली के माध्यम से मतदाताओं को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा रहा है। जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जसमीत सिंह संधू ने सभी अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए हैं। शक्ति और आराधना का पर्व नवरात्रि बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा क्षेत्र में स्थित धनोप माता मंदिर, आसीन क्षेत्र में स्थित वक्या माता मंदिर में प्रतिदिन मां का विशेष श्रृंगार किया जा रहा है और भक्त दर्शन कर परिवार में सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं और मां दुर्गा की आराधना के साथ ही गरबा और डांडिया नृत्य के आयोजन हो रहे हैं। दुर्गाष्टमी, रामनवमी के साथ ही विजयादशमी को लेकर भी जिले में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। विजयदशमी पर्व के मौके पर भीलवाड़ा शहर सहित तमाम नगर पालिकाओं में दशहरे मेले में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। जिले के गुलाबपुरा नगर पालिका संध्या और कवि सम्मेलन होंगे। जिले में बीते दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है, वहीं दिन में गर्मी का प्रकोप रहने के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में मौसमी बीमारियों से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इन मरीजों को सुलभ उपचार मिले इसके लिए अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएमएचओ ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि गर्मी में कम पानी पीने से डिहाइड्रेशन की बीमारी होती है, ऐसे में नींबू पानी, पानी या ORS का पाउडर उपयोग में लें। दीपावली को लेकर भीलवाड़ा जिले में अभी से बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल के आह्वान के चलते स्थानीय मिट्टी से दीपक और कलश बनाने वाले कुंभकार तैयारी में जुट गए हैं। कुंभकार काली मिट्टी से दीपक और कलश का निर्माण कर रहे हैं। जिले के किसान रबी की फसल की बुवाई में जुटे हुए हैं। जिले में रबी की फसल के रूप में चना, सरसों, तारामीरा, गेहूं और जौ की फसल की बुवाई की जाती है। कृषि विभाग ने भी पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। जिले में इस बार 2,70,000 हेक्टेयर भूमि में रबी की फसल की बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने कहा कि कम तापमान होने पर सरसों की फसल की बुवाई करें और नवम्बर माह में जौ और गेहूं की फसल बोएं। इसके साथ ही भीलवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में शामिल थिया भारत रा खिलाड़ियां सागर नई दिल्ली में मुलाकात कीनी, कहो देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम मजबूत बनियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो स्वयं सहायता समूह गांवाई हल्का माए महिलावां ने माली और सामाजिक तौर मजबूत बनावन रा नुआ गेला खोलिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली माए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूजा केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी और राज्य माए आज कई छोड़ा बारिश फेवन सागे सिड़ो बायरो बाजो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि लारला दिना जापान माइफिया एशियाई खेला माए बेटियां बेहतरीन खेल रो दर्शाव कर और देश रो मान बधायो। वह एशियाई खेला माए भाग ले राया भारत रा खिलाड़ियां सागे आज नई दिल्ली रा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम माए मुलाकात कीनी। ई मौके श्री मोदी कहो कि आम खेला माए भारत का न्यू हासिल करी जिया 85 तमगा मायों 38 महिला खिलाड़ी जीतिया।
2: ये हमारी बेटियों खास तौर पर सराहना करना चाहता। भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं उनमें से 30

0: से हमारी विमेन एथलीट इक्वल है और इनमें 11 गोल्ड मेडल भी शामिल है और ये मेडल केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की सतत तस्वीर है।
1: प्रधानमंत्री कहो के कई खिलाड़ी साबित कीनो के कामयाबी सारू उम्र री कोई सीमा नहीं भय है। श्री मोदी कहो के दिव्यांग खिलाड़ी ही दुनिया माए भारत रो मान बधायो है। वे कहो के देश रा गांवा माए खेल प्रतिभावां ने बढ़ावो दियो जा रियो है और खेलां रो इकोसिस्टम मजबूत बनायो जा रियो है। प्रधानमंत्री आज लद्दाख माए विकास री 3,350 करोड़ रुपया रा खर्च वाली परियोजनावां री नी वर्चुअल तरीका शुरुआत कीनी। ई मौके वे कहो के इनो प्रगति और विकास रो नुवो दौर शुरू भयला। प्रधानमंत्री लेहरा नुआ हवाई अड्डा टर्मिनल रो जकार्ता थका देश रो पहलो हवाई अड्डा टर्मिनल है चिणमाए लद्दाख री मुश्किल और घनी ठंडी जलवायु माए तापमान काबू करण माए मदद मिलेला और सैर सपाटा में और बढ़ावो मिलेला।
2: 650 करोड़ रुपए की लागत से बना ये टर्मिनल इस एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। यहाँ उड़ानों की संख्या भी 3 गुना। लद्दाख की कठिन जलवायु को ध्यान में रख इसमें जियो थर्मोलॉजी भारत में जियो
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस रे मौके आज आंध्र प्रदेश रा विजयवाड़ा माए राष्ट्रीय सरस मेला रो उद्घाटन कीनो। ई मौके राष्ट्रपति गांवाई हलका रा विकास और खेतीबाड़ी रा हलका माए महिलावां रा योगदान री सराहना कीनी। वे कहो के स्वयं सहायता समूह महिलावां ने माली और सामाजिक तौर मजबूत बनावण रा नुआ गेला खोलिया है।
3: जब एक दिन महिलाएं पीछे रह जाते थे आर्थिक रूप से, केवल परिवार का देखभाल परिवार का सहयोग ही करते थे, छोटे छोटे चीजों के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर करते थे, लेकिन आज वो आत्मनिर्भर बन गए, दूसरों का भी और सहारा देने वाले बन गए। ये केवल उनके इनकम नहीं है, परिवार के इनकम नहीं है, ये देश का आर्थिक समृद्धि, देश का महिलाओं का विकास भी ये समाहित है।
1: ई मौके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो कि 3 करोड़ लखपति दीदी बनावन रो लक्ष्य ते बगत पहले ही हासिल कर लियो चियो है। चिंपा छ केंद्र सरकार अब 6 करोड़ लखपति दीदियां बनावन ते कीनो है। चौहान कहो कि सरस मेला अब देश रा न्यारा न्यारा राज्य माए लगाया चावेला।
4: अलग अलग राज्यों में भी सरस मेला करेंगे ताकि दीदियों को प्लेटफॉर्म मिले, एक राज्य में एक सरस मेला, उसके आगे बढ़ के अब सीमार्ट हम बनाएंगे। सीमार्ट 10 लाख रुपया इस डिस्ट्रिक्ट हमने फैसला किया है सीमार्ट के लिए, और सीमार्ट में हम ये कोशिश करेंगे कि उस जिले की दीदियों को अपने सामान को बेचने का प्लेटफॉर्म मिले, मार्केट मिले।
1: राष्ट्रीय सरस मेला में देश भर री 2,032 ग्रामीण महिला कारोबारी स्वयं सहायता समूहारी महिलावां शामिल भे रही है। सरस मेला रो मकसद गांवाई हलकानी महिलावां रा सामान पारंपरिक शिल्पकला और हथकरघा ने राष्ट्रीय और दुनिया रा बाजार ताई पुकारनो है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस रे मौके प्रदेश में आई कई कार्यक्रम राखी चिया। पाली माए महिला किसाना ने जलवायु अनुकूल खेती रे बारे में जानकारी दी रही जी। देश रा अंतरिक्ष हलका माए आजकल ऐतिहासिक सुधारा रो दौर चल रियो है। साल 2020 माए अंतरिक्ष हलको गैर सरकारी भागीदारी सारू खोलियो जावण और भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 लागू हुआ पछ ई हलका माए मोटा बदलाव आया है। पेश है एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र को एक स्वायत्त सिंगल विंडो नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। ये निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स को इसरो की सुविधाओं का उपयोग करने और अंतरिक्ष गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। फरवरी 2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नियमों को भी

0: बेहद आसान बना दिया गया। स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड शुरू किया गया है। साल 2014 में देश में केवल एक पंजीकृत अंतरिक्ष स्टार्टअप था, जिनकी संख्या अगस्त 2026 तक बढ़कर 440 हो गई है। स्काईरूट एयरोस्पेस की ओर से भारत का पहला निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 लॉन्च किया गया, जो इस क्षेत्र के निजीकरण में मील का पत्थर है। भारत ने साल 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को उतारने का दीर्घकालिक लक्ष्य भी तय किया है। समाचार कक्ष से सलेहा गाजी।
1: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर जन सेवा रा 25 साल पूरा करण पर आवाने बधाई दीनी। श्री शर्मा जलशक्ति मंत्री सीआर पाटिल सा गई मुलाकात कर राज्य में पानी रा प्रबंधन उपलब्धता और पानी रा सुविधाओं जुड़ी विगतवार चर्चा कीनी। ये पाछे मुख्यमंत्री केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सा गई मुलाकात कीनी। राज्य में नेरी नेरी फरमानी औचक जांच रे दौरान मूंगफली रा बीजा की गुणवत्ता में गड़बड़ी रीठा पड़ी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बतायो कि सीकर चूरू बीकानेर और जयपुर ने कुछ फरमानी औचक जांच रे दौरान मूंगफली रा बीजा रा नमूना रा ग्रो आउट टेस्ट में 15 मायों 14 नमूना अमानक मिलिया। कृषि मंत्री बतायो कि ए कारोबारी गुणवत्ता वाला बीज मुहैया करावन रे बजाय बाजार खरीदे कर लुभावनी पैकिंग में किसाना ने बेच रहा है। श्री मीणा एहलकारा ने आम फरमान खिलाफ FIR दर्ज करावन हरमाना लाइसेंस निरस्त करावन रा हुक्म दीना। विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ री ओर राज्य में 5 अक्टूबर 10 दिन रो खास जांच अभियान चलाई चियो। इस दौरान राजधानी जयपुर समेत नेरी नेरी ठोड़ा दुकाना री जांच कर गड़बड़ी मिलन री सूरत माए जुर्मानो वसूल करी जियो और सुधार रा नोटिस दिया जिया। प्रकोष्ठ ग्राहका ने किड़ी भांत री गड़बड़ी मिलन री सूरत माए हेल्पलाइन नंबर 14435 माथे शिकायत दर्ज करावन सारू कहो है। फलौदी जिला माए नौसर गांव कन्ना पूनिया की ढाणी माए आज एक बालक बोरवेल में पड़ गयो। इनरी जानकारी मिलता ही बचाव दल मौके पर गयो और बच्चा ने हिफाजत सागे बाहर निकाल बासारू रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कीनो। बच्चा ने बाहर निकाल बासारू कैमरा री मदद ही ली जा रही है। देश रा पहली वाला राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने आज मारी जयंती रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया रा नाम पिछले जावन वाला महान वैज्ञानिक और शिक्षाविद डॉक्टर कलाम ने पीपुल्स प्रेसिडेंट ही कहा जाता है। मानी जयंती में विद्यार्थी दिवस रा तौर मनाई जावे है। डॉक्टर कलाम की जिंदगी में सादगी और कर्मठता री प्रतीक मानी जावे है। वारा आदर्शाओं नवी पीढ़ी ने गिलो बतावन वाला डॉक्टर कलाम हमेशा देश बनावन सारू लगातार काम करन री बात कहता है।
2: आपके नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास के तत्पर तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए आप सबको मेरी शुभकामनाएं और बताएं। मुझे विश्वास है कि आप सब मिलकर भारत को एक विकसित देश बना देंगे।
1: अरे भाई मौसम राज्य में आज ही कई थोड़ा बादल मंझारे बन सागे हल्की बारिश का समाचार है। डीग में कुछ देर ताई गरज सागर तेज बारिश हुई और सिलो बायरो बाजियो। भीलवाड़ा जिला रा सुवाणा हमीरगढ़ कोटड़ी रायला और गुलाबपुरा माए हल्की बारिश हुई। राजधानी जयपुर रा कुछ हल्का माए बरसात हुई। धौलपुर और सवाई माधोपुर माए बिरखा भेवन रा समाचार मिलिया है। काली प्रदेश रा अतुणी हल्का माए मौसम पलट गयो। बाड़मेर बालोतरा फलौदी जैसलमेर रारासारे रा हल्का माए बिरखा भी चिणु पारो थोड़ो उतर गयो। बीचे मौसम विभाग आज कुछ हल्का माए तेज बारिश रा आसार जताया है। मौसम केंद्र जयपुर रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि काली जयपुर और भरतपुर जिला और शेखावाटी हल्का माए मेह विवरण री संभावना है।
3: इस सिस्टम का सर्वाधिक असर शेखावाटी क्षेत्र के इसके अलावा जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में रहेगा। इस दौरान बादल छाए रहने और कहीं कहीं मेघ गर्जन तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अक्टूबर को भी इस सिस्टम के असर से मेघ गर्जन तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर

0: जारी रहेगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित किया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात में 25 अक्टूबर दीतवार में विचार बतावेला इसारो आप ही 23 अक्टूबर ताई मुफ्त नंबर 1800117800 माथे राय भेज सको हो। इस आगे नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक और फेर सुन ले रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियाई खेल 2026 में शामिल भया भारत रा खिलाड़िया सागे नई दिल्ली में मुलाकात कीनी कहो देश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम मजबूत बनियो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहो स्वयं सहायता समूह गांवाई हलका माई महिलावा ने माली और सामाजिक तौर मजबूत बनावन रा नुआ गेला खोलिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूजा केंद्रीय मंत्री सागे मुलाकात कीनी और राज्य में आज कई ठोणा बारिश पेवन सागे सिलो बायरो बाजो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ही आमिर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। श्रोताओं शाम के 7 बजे अब कार्यक्रम होगा किसान वाणी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बोली से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। महेश भाई, आपको भी मेरा नमस्कार।
7: नमस्कार आशा जी, आपको और जो हमारे किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं किसान वाणी, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। और आशा जी
6: जी,
7: देखो आज जो कार्यक्रम है किसान वाणी, उसमें है हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम। और जो हमारे किसान भाई है वो अपनी खेती किसानी की जो भी उनकी समस्या है कृषि और बागवानी से संबंधित, उसके लिए हमारे कार्यक्रम में फोन करके जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनसे समाधान पा सकते हैं। तो आज कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ मौजूद है किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने के लिए, उनसे आपका परिचय करवा दें। किसान भाइयों, आज है लक्ष्मण राम, संयुक्त निदेशक कृषि सेवा निवृत्त। लक्ष्मण राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
8: नमस्कार किसान भाइयों।
6: और महेश भाई, जैसे कि स्टूडियो की 4 फोन लाइनें हैं जो हम हमारे किसान बहन भाइयों के लिए रखते हैं, जिन पे किसान बहन भाई फोन कर सकते हैं और आपकी खेती बाड़ी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, सवाल हैं, उनका समाधान विशेषज्ञ से सीधी बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो मैं फोन नंबर बता देती हूँ, 2200600, 2200700, 2200800, 2-3-6-6-4-7। जयपुर का जो एसटीडी कोड है 0141।

0: और आपकी जो भी समस्याएं हैं, समाधान है, खेती बाड़ी से जुड़े उनकी समस्या का समाधान विशेषज्ञों से आप पूछ कर उनका हल पा सकें।
1: तो आशा जी देखो किसान भाई फोन कर रहे हैं, फोन लेके आज का पहला।
0: बिल्कुल। हेलो में खूब खूब स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
0: नाम बताएं आपका, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताएं।
2: आजकल धर्म सिंह बोल रहा हूँ मैं, हरियाणा से।
0: जी क्या पूछना चाहते हैं धर्म सिंह जी आज बताएं।
2: हमने सरसों बोई थी
0: जी,
2: बारिश हो गई
0: जी
2: और वो डपट हो गई, पापड़ी बन गई।
3: हाँ जी बताएं, सरसों में क्या?
2: सरसों में पापड़ी बन गई, वो उगी नहीं।
3: अच्छा कितने दिन हो गए बुआई की हुई? कितने दिन हो गए बुआई की हुई?
2: सर जी 5 दिन की थी, बारिश हो गई।
3: हाँ तो बारिश होगी तो पापड़ी आ गई, तो देखो ऐसा है कि अगर ज्यादा ही पानी पापड़ी आ गई तो थोड़ा सा दोबारा रीसोइंग करनी पड़ेगी अपने को।
2: अच्छा।
3: हाँ दोबारा बुआई करनी पड़ेगी क्योंकि पपड़ी आगे तो निकलेगी नहीं, अगर निकलेगी तो भी कम निकलेगी। तो जैसा ही अब थोड़ा खेत तैयार हो जाए, नमी थोड़ी मान लो, तो खेत को तैयार करके दोबारा बुआई कर दे, मेरी तो यही सलाह आपसे।
0: धर्म सिंह जी फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: हेलो।
2: हेलो।
4: हाँ किसान भाई राम राम, कौन बोल रहे हो?
2: राम राम सर। राम राम, मैं गोरखराम भाकर गांव तामू भाकरण घाणी से बात कर रहा हूँ।
4: क्या जानना चाहते हो किसान भाई?
2: मैं ये जानना चाह रहा था, गाजर की बुआई कर रखी है बाबा, दे रखा है लेकिन उसमें लत ज्यादा लग रही है।
3: हाँ बिल्कुल, गाजर की बुआई कर रखी है आपने तो लट्टे मतलब वो पत्ते वगैरह खा रही होगी।
2: जी सर।
3: हाँ तो मेरा ये डाइमेथियोन 30 से एक दवा आती है
2: जी,
3: उसका आप 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो उस लट्टा कंट्रोल हो जाएगा।
2: 2 ml 1 लीटर पानी।
3: हाँ डाइमिथो 30 EC
2: जी।
3: हाँ
2: जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: ओके
0: धन्यवाद। हेलो किसान।
5: हेलो।
0: हेलो किसान नमस्कार।
5: नमस्कार मैडम, नमस्कार। मेरे परसों की जल्दी बोल रहे
0: जी। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं पहले ये बताएं, फिर आपकी समस्या बताएं।
5: मैडम मैं दारुआ मेघवाल गांव चौकड़ी जिला जोधपुर तहसील के पास से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी क्या पूछना चाह रहे हैं बताएं।
5: मैडम हमारे यहाँ सरसों में इस बूढ़े में लत लग गई है।
3: सरसों की बुआई कर दी क्या और करने वाले हैं?
5: अभी कर दी हुई है, उसमें थोड़ा वो पौधा हुआ उसमें लत लगी है।
3: हाँ तो जैसे मैंने थोड़ी सी क्योंकि इस समय मौसम ऐसा है तो आप डाइमेथियोन 30 EC या इमिडाक्लोपिड दोनों में से कोई सी भी दवाई 2 ml 1 लीटर में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो जो लट लग रही है उसका नियंत्रण हो जाएगा।
5: तो सर उसमें वो जो धूप पड़ रही है उस लत पर प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या?
3: धूप ताप धूप।
5: हाँ वो सर धूप तो पड़ती है अभी।
3: नहीं फिर भी एक बार स्प्रे कर दो अच्छा रहेगा।
5: तो सर स्प्रे करने से सर वो मोटा नष्ट तो नहीं होगा?
3: नहीं नहीं नहीं होगा। 2 ml 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देंगे तो लट का नियंत्रण हो जाएगा।
5: सर गए साल मैंने सरसों बोया था उसमें थोड़ा सा भी वो स्प्रे कर वो फसल नष्ट हो गई सर।
3: नहीं ऐसी बात
5: तो
3: नहीं है,
5: कोई थोड़ा ज्यादा पड़ गया तो मेरे को
3: ज्यादा ये तो ध्यान रखना। आप 2 ml 1 लीटर पानी से ज्यादा दवा मत डालना, तो ये जो लट है आप 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो 100% नियंत्रण हो जाएगा।
5: सर वही बात मैं थोड़ा
3: ज्यादा मत डालना, ये थोड़ा मेरा आपसे निवेदन है।
5: सर वैसे भी वो होता है कि डर लगता है वो कैसे हो नष्ट नहीं होते।
3: नहीं कोई दिक्कत नहीं आप छिड़क।
5: धन्यवाद सर।
4: हेलो किसान।
2: हेलो
6: हेलो नमस्कार जी।
4: नमस्कार किसान भाई, थोड़ी रेडियो की आवाज में कम करो।
6: चेक बोल रहे सर जी।
4: अच्छा कहाँ से बोल रहे हो किसान भाई?
6: चित्तौड़ जिला से बोल रहा हूँ।
4: बताओ क्या जानना चाहते हो?
6: अपना ही मौसमी का और नींबू का पेड़ पीलापन आ रही है।
3: देखो मौसमी में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो अभी आप मेरा जैसे पीलापन बता रहे ना पत्तों में पीला पीला है।
6: हाँ
3: तो एक बार थोड़ा सा नजदीक से देख लें कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा।
6: अच्छा

0: वो लट वगैरह लग रही है तब तो आपको डाइम तो 30 सी या फेमिलेट इनमें से कोई सी भी दवा 1.5 से 2 ml का स्प्रे करते हैं। और एक मेरा सभी निवेदन है, जैसे मौसमी है, दूसरा आप नींबू बता रहे हो, पीलापन का मतलब उसमें न्यूट्रेंट्स की कमी है, तो आप थोड़ा सा जिंक,
1: अच्छा
0: जिंक है ना, वो 100 से 150 ग्राम एक पौधे में डाल दें।

0: हर पेड़ में डालें तो आपका फसल भी ये जो आप पीलापन है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जिंक आप डाल ही रहे हैं तो इससे पौधे भी अच्छे होंगे, अपने को पैदावार भी अच्छी मिलेगी।
1: हेलो किसान।
2: हेलो
1: नमस्कार
2: जी।
1: किसान वाणी कार्यक्रम में आपका स्वागत है, बताएं कौन बोल रहे हैं, कहां से बात कर रहे हैं?
2: मैं मांगेलाल सिरी बोल रहा था, चेन्नई तमिलनाडु से।
1: जी क्या पूछना चाह रहे हैं?
2: मैं मेरे घर पे टेरेस पे हम लोगों ने थोड़ा गार्डन बना रखा है, वो सब्जियां उग गई है वहाँ पर।
1: जी
2: तो सब्जियां उग जाती है लेकिन फल भी जाती है पूरी छत पर, लेकिन लगता कुछ नहीं, फूल आते हैं और मतलब निकल जाते हैं।
0: देखो मेरा निवेदन है, एक तो बीज कहाँ से लाते हैं आप, थोड़ा सा अपने को बीज अगर अच्छी जगह से लाते हैं तब तो अपने को। दूसरी एक मेरी एक बात वो सुनिए, अगर अपन कंटिन्यूस जो अपने घर में सब्जी जिस कैरी में लगाते हैं, अगर कंटिन्यूस अपन सब्जी बो रहे हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो एक बार थोड़ा सा
2: क्या करते हैं कि एक बार सब्जियां पूरी निकल जाती है तो फिर हम मिट्टी को वापस नीचे गिरा के उसमें थोड़ा गोबर का खाद मिक्स करके थोड़ा टेबल सुखा के वापस लगाते हैं, ऐसा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन बार बार हम चेंज तो नहीं कर सकते मेरे क्योंकि टेरेस पे रहता है।
0: मेरे कहने का मतलब अगर अपन कंटिन्यूस सब्जियां लेंगे जैसे कोई गैप नहीं देंगे ना तो ये दिक्कत आती है। थोड़ा सा जैसे मान लो अपने रबी में ले ली तो खरीफ में अपन खाली छोड़ दें, अगर खरीफ में ले तो रबी में खाली छोड़ दें, और बीज अपन थोड़ा सा बीज कहाँ से ला रहे हैं, बीज का भी इफेक्ट आएगा।
2: तो बीज तो हम गांव से लेके आते हैं।
0: हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो थोड़ा सा गैप जरूर देंगे क्योंकि अपन लगातार एक ही फसल बोते हैं, सब्जियां बोते हैं तो उसमें ये दिक्कत आती है।
2: जी सर, शुक्रिया सर।
1: शुक्रिया आपका
3: भी। लक्ष्मण राम जी, अभी देखो किसान भाई जो है रबी फसलों की बुआई कर रहे हैं और कुछ किसान भाई थोड़ा सा रुक के करेंगे, तो अभी खेत की तैयारी की अगर बात करें तो किसान भाइयों को किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए?
0: देखो किसान भाई, मेरा सबसे निवेदन ये है कि एक तो जो भी अपने जैसे अभी इस समय अपने गेहूं का बुआई का टाइम है, जो का टाइम है, चने का है, सरसों का है, अभी रबी की बुआई का टाइम है, तो सबसे पहले तो आपको अपने को खेत की तैयारी करनी है, आपने जुताई उताई कर ली होगी। दूसरी बात, अपने को खेत में खाद डालना है, तो खाद अपने को मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपके आपकी मिट्टी की जांच करा ली होगी तो जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से आप पोषक तत्व उसमें डालें।
1: जी
3: हेलो किसान। हेलो किसान, किसान भाई आवाज आ रही है आपको? हेलो किसान भाई, आपको आवाज आ रही है? तो ऐसा जी, किसान वाणी में अपना हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम चल रहा है, तो एक छोटा सा वैसे एक विराम ले लेते हैं।
1: बिल्कुल।
4: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है इधर इधर इधर? हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: चला बोल रहा
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाए?
5: मतलब
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता चलती थी, माटी भी तंदुरुस्त। और लो तो पहली वाली बात कहा,
5: पर हम तो सब यही डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, पर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जल्दी खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
1: महेश भाई, लक्ष्मण राम संयुक्त निदेशक कृषि सेवानिवृत्त आज हमारे साथ हैं और स्टूडियो में विराजमान हैं, और जो हमारे श्रोता हैं काश्तकार भाई हैं उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक श्रोता और जुड़े हैं, बात कर लेते हैं।
3: हेलो किसान। हाँ कहाँ से बोल रहे हो किसान भाई? क्या नाम है आपका? बताओ क्या जानना चाहते हो?
7: सर नींबू का पौधा है, नींबू नहीं लग रहे।
8: मेरा आप अभी जैसे नींबू की मौसमी के बारे में किसान को मैंने सलाह दी है, देखो नींबू में तो सिट्रस कैंकर बीमारी आती है, थोड़े से पत्ते में आप देख नजदीक से देखें तो पत्ते में सिट्रस कैंकर बीमारी आती है,
0: तो उसका

0: भी अपने को नियंत्रण करना है। दूसरी बात है, एक जैसे मान लो अभी जो भी फलदार पौधे हैं उनमें पोषक तत्व देने का टाइम है नवंबर दिसंबर में, तो सभी किसान भाई से मेरा नियम, जो फलदार पौधे लगाते हैं वो नवंबर दिसंबर में 8 से 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, 250 से 300 ग्राम डीएपी और 100 से 150 ग्राम यूरिया प्रत्येक फलदार पौधे में डालेंगे तो पैदावार अपने को मिलेगी। और ये जो आप पर्टिकुलर नींबू की बात कर रहे हैं, ये सिट्रस कैंकर बीमारी एक लगती है जिसमें पत्तियों जिसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो उसका भी आप नियंत्रण डायमेथ्रो-30C या फेनवेलेट ये कोई भी कीटनाशक दवाई का स्प्रे करेंगे। और बायोस्टीन एक फंजीसाइड है, उसका तीनों दोनों फंजीसाइड और इंसेक्टाइड मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इसका इस सिट्रस कैंकर बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा।
1: हेलो किसान
2: जी, राम राम था।
1: नमस्कार, बताएं नाम अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं राजेश पुष्करना, गांव इंटरली, तहसील मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान से बात कर रहा हूँ।
1: जी, क्या पूछना चाहते हैं?
2: जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि इसबगोल की बुआई करनी है तो इसके लिए उन्नत किस्में कौन कौन सी है और बुआई का सही समय क्या है?
0: देखो इसबगोल का सबसे बड़ा, इसबगोल अगर बुआई करनी है तो अपने को 20 अक्टूबर से लेकर के 20-25 नवंबर तक बुआई कर सकते हैं।
2: जी
0: सही बात है। मैं किस्म बया आप GI1, GI2, GI3, SI5 ये 4-5 वेराइटियां हैं, इनमें 4 से 5 केजी प्रति हेक्टर बीज अपने को डालना है और बीज का बीज उपचारित बायोस्टीन से 2 ग्राम 1 किलो बीज में उपचारित करके बोएंगे तो अच्छी प्रोडक्शन आएगा अपने को।
3: हेलो किसान।
2: हेलो नमस्कार जी।
3: हाँ नमस्कार किसान भाई, कहाँ से बोल रहे हो, कौन बोल रहे हो?
2: मैं जी राजेंद्र यादव बोल रहा हूँ जी, गांव रायपुर, तहसील भाणा, झुंझुनू से जी।
3: क्या सवाल है आपका?
2: सवाल जी मेरा जी ये है कि 60 पेड़ लगा रखे हैं जी नींबू के।
3: अच्छा,
2: तो उसमें जी वो बहुत ज्यादा 10-10, 15-15 फुट के बैठ गए, उसको कोई फल वगैरह वही नहीं आ रही जी।
0: देखो यादव जी, फल अगर कितने साल होगी बुआई की?
2: ये जी 4 साल अभी पूरी नहीं हुई, 4-4 साल लग गए जी।
0: हाँ तो देखो 3 साल बाद में फल चालू हो जानी चाहिए। या तो आप तो देखो आप पौधे कहाँ से लाए हैं, सबसे बड़ी बात तो अपने को ये चीज देखनी है।
2: अच्छा जी।
0: दूसरी बात अपने को, जैसे मैं बता रहा था अभी 8 से 10 किलो सड़ी गोबर की खाद, अभी जो नवंबर दिसंबर का टाइम है, 250 से 300 ग्राम डीएपी और 100 से 150 ग्राम यूरिया हर पेड़ में ढंग से गुड़ाई करके।
2: नहीं जी ऐसे बोल रहे हैं लोग, ऊपर से कटिंग सेटिंग कर दो उसके नवंबर दिसंबर महीने में।
0: नहीं नहीं, नींबू में कटिंग मत करना।
2: अच्छा जी,
0: नींबू में कटिंग मत करना। आप तो मैंने जो बताया ना, ये खाद डालना है और एक सिट्रस कैंकर कुछ बीमारी या कीड़े का हो तो उसको कीटनाशक और फंजीसाइड का अपने को स्प्रे करना है। एक जिंक की कमी में जिंक सल्फेट भी अब डालें।
1: धन्यवाद फोन करने के लिए। और महेश भाई, अपन पूछ ही रहे थे लक्ष्मण राम जी से, भाई खेत की तैयारी के बारे में आप बता रहे थे।
0: देखो खेत की तैयारी, जैसे अभी अपन किसान भाइयों से मेरा सभी से सलाह है कि खेत की आपने तैयारी कर ली होगी, पहली चीज है बीज।
3: हाँ बीज उपचार सुनते हैं।
0: नहीं, बीज तो आप एक बिल्कुल अच्छी वैरायटी का बीज लाएं, जैसे गेहूं बोएं या जो बोएं या चना बोएं, तो अपने जो भी अपने पहचान की दुकान है या ग्राम जीएसएस है तो उससे सर्टिफाइड, या हमारे मैं तो ये कहूंगा कृषि विभाग के जो कृषि पर्यवेक्षक या डब्ल्यू है उसकी सलाह से ही बीज लाओ। अगर वो अपना घर का बीज है तो अच्छी बात है। दूसरी बात, बीजोपचार जरूर करें। बायोस्टीन है, डायमेथ्रो-30C है
3: जी। हेलो किसान। हेलो किसान।
4: हेलो किसान।
3: नमस्कार किसान भाई,
0: सरसों में 2 ग्राम बायोस्टीन 1 किलो बीज में उपचारित करके बुआई कर देंगे।
4: और
0: हाँ
4: संतरा का पेड़ है।

0: 10 फुट के लगभग बढ़ गया है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है।
1: संतरा का देखो ऐसा है कि या तो पेड़ अपने वैरायटी कहाँ से लाए हैं, कितने साल का हो गया
0: ये सर जी? 3 साल के लगभग हो गया।
1: हाँ तो अब ये इसका 3 साल बाद में फ्रूटिंग का टाइम हो गया है। तो अभी नवंबर दिसंबर में जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया था कि देसी गोबर, सड़ी गोबरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और डीएपी यूरिया जब डालें।
2: हाँ धन्यवाद फोन करने के लिए। हेलो किसान,
3: बीज उपचार की बात कर रहे थे लक्ष्मण राम।
1: हाँ तो जैसे अभी बिल्कुल बिल्कुल बीज उपचार है, जे अपने गेहूं बो रहे हैं तो बीज उपचार करें, जो बो रहे जी बीज उपचार करें, चना बो रहे हैं तो करें और सरसों बोए दो, कोई भी रबी की फसल है उसमें बीज उपचार जरूर। बीज उपचार में क्या होता है कि कुछ मान लो फंगस के जीवाणु उसमें जमीन में है या बीज में है तो उसका कंट्रोल शुरू में हो जाएगा। तो बीज मेरा नियंत्रण के लिए, बीज उपचार के लिए मेरा निवेदन है कि 2 ग्राम 1 किलो बीज में मिला करके बुआई करेंगे तो जो बीमारियां उनसे नियंत्रण हो जाएगा।
3: ठीक है। हेलो किसान।
0: हाँ जी।
3: हाँ स्वागत है आपका, बताओ किसान भाई नाम।
0: सुगंधन जी बोल रहे हो, पोत पोतली से।
3: अच्छा क्या सवाल है?
0: ये हमारा तो पालक तो बढ़िया है, बाकी मेरा छेदी छेद कर दिया, तीसरा क्या करें?
1: अच्छा पालक की बात कर रहे हैं क्या?
0: हाँ जी।
1: पालक में जैसे कितने दिन का होगा बुआई की हुई?
0: पालक को तो हम तोड़ तोड़ दे रहे हैं।
1: हाँ बड़ा हो रहा है। हाँ बड़ा हो रहा है तो देखो ऐसा है कि उसमें अगर छेद हो रहे तो लट है,
0: छेद कहाँ है? तीसरी है सफेद सफेद, ये छेद कर दिया सब।
1: हाँ लट है, लट की बीमारी है। तो मेरा टाइम तो 30 cc एक दवाई आती है, 1.5 से 2 ml 1 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देंगे। तो पर ये जरूर है कि जब छिड़काव के 7-8 दिन तक उसकी कटाई नहीं करें, ये जरूर रखना।
0: हाँ
2: हेलो किसान। हेलो
3: कटाई का भी ध्यान रखना है और बीज उपचार जो है बहुत जरूरी है, कि अगर बीज उपचार कर लेंगे फिर बाद में मतलब समस्याएं नहीं आएंगी।
1: देखो ऐसा है कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं कि जो बीज से ही पैदा होती हैं या जमीन में होती हैं, जीवाणु जिनके जमीन में होते हैं, तो अगर अपन बीज उपचार कर देंगे तो उनका नियंत्रण शुरू में ही हो जाएगा
2: जी।
1: तो आप बीज उपचार करेंगे जैसे बायोस्टीन से कर देंगे तो उसका बीमारी का नियंत्रण हो जाएगा।
2: हेलो
3: जरूरी है सब्जियों में इसमें कोई जरूरी काम जो अभी सर्दी की जो सब्जियां हैं?
1: देखो सब्जियों में जो पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, टमाटर है, इनकी पौध तैयार होगी तो उसको ट्रांसप्लांटिंग कर दे, पंखे लगा दे। दूसरी जैसे मान लो जो किसान भाई रबी का प्याज लगाना चाहें तो उसके लिए पौध तैयार करने का सबसे बड़ा उचित समय है।
3: बिल्कुल। और बात करेंगे, फोन ले लेते हैं। हेलो किसान, फोन कर जाते हैं मुझे। हाँ बताइए सब्जी के बारे में।
1: हाँ तो अच्छा जैसे मान लो किसान भाई अभी कुछ चीजें आ रही थी कीड़े और बीमारियों का भी सब्जियों में थोड़ा सा, क्योंकि टेम्परेचर सर्दी पड़ने लग जाए तब तो कम हो जाएगा बीमारियों का प्रकोप, लेकिन ये थोड़ा टेम्परेचर है इसलिए इस समय कीड़े और बीमारी का प्रकोप ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा मेरे सभी किसान भाई से सलाह है कि आप जो भी सब्जियां बो रखी हैं तो उनमें नजदीक से देख लें कोई कीड़ा तो नहीं है। अगर कहीं कीड़ा दिख रहा है, लठ कहीं दिख रही है तो नुकसान करेगी, तो डाइमिथियोन 30 cc 1.5 से 2 ml 1 लीटर में हल्का सा स्प्रे कर देंगे तो उसका नियंत्रण हो जाएगा।
3: मतलब समय रहते जो है भाई रोग का उपचार करना जरूरी है किसान भाई।
1: यस यस।
3: तो फसल में मतलब रोग का लक्षण देखे तो उसी समय जो है उसका उपचार करते।
1: एक किसान भाई मैं जैसे सामान्य रूप से इस समय किसान रबी की बुआई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे उर्वरक की बात विकास कर, तो मेरा सभी किसान भाइयों को सलाह है, मान लो डीएपी मिलता तो अच्छी बात है, अगर नहीं डीएपी मिलता है तो सिंगल सुपर फास्फेट
3: एसएसपी
1: बहुत अच्छी खाद है, वो आराम से मिल जाती है, वो काम मिले में।
2: हेलो किसान।
4: हेलो नमस्कार जी।
2: जी नमस्कार, किसान वाणी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताएं अपना।
4: मैं मोहनाथ बोल रहा हूँ, नागौर जिला।
2: जी क्या पूछना चाहते हैं?
4: मैं ये पूछना चाहता हूँ

0: बादाम के बादाम का दो तीन पौधे लगाए हुए हैं।
1: बादाम के दो तीन पौधे लगा रखे?
0: हाँ, चार पौधे हैं।
1: अच्छा, क्या हुआ उन्हें?
0: उनके बादाम में लग भी रही है लेकिन फाल ज्यादा गिरे है।
2: हाँ, तो देखो, फाल गिरने का एक तो कारण ये हो सकता है कि पानी कहीं ज्यादा तो नहीं दे रहे आप।
0: पानी तो दो तीन दिन
2: नहीं, थोड़ा गैप दे। दो तीन दिन में पानी देने से जब फूल किसी भी फल वाले पेड़ में फ्लोरिंग स्टेज पे थोड़ा पानी कम कर दें तो ये फल और झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। और अगर फिर भी देते हैं, प्लानोफिक्स एक दवा आती है।
0: अच्छा,
2: उसकी जो रिकमेंडेड डोज उस पर लिखी हुई आती है तो वो देख लें और उसका स्प्रे कर दें तो फल और फूल झड़ने की समस्या कम हो जाएगी। प्लानोफिक्स।
0: अच्छा, ठीक है,
3: धन्यवाद जी। सब्जियों की बात कर रहे थे आपसे।
1: और अभी ये जो हमारे किसान बहन भाई हैं वो खेती बाड़ी में क्या ऐसी सावचेतियां बरते हैं?
2: हाँ, तो जैसे अभी बात कर रहे थे भाई बुआई का टाइम है तो अगर मान लो डीएपी मिलता तो अच्छी बात है। अगर डीएपी नहीं मिला तो मेरा सभी किसान भाइयों से सलाह है, एक डीएपी के जो 50 किलो का बैग है उसकी एवज में अपने को 3 बैग एसएसबी के और एक बैग यूरिया का अपन डाल देंगे तो वो डीएपी का काम करेगा, उससे भी बढ़िया करेगा। एसएसबी में कैल्शियम और सल्फर भी होता है तो न्यूट्रिटिव वैल्यू भी उसकी अच्छी होगी और कीमत भी लगभग एक डीएपी के कट्टे के बराबर ही अपने को। हाँ,
3: हेलो किसान।
4: हेलो,
3: हाँ किसान भाई, कौन बोल रहे हो, कहाँ से?
4: नमस्कार सर, कोटपुतली से बोल रहा हूँ सर।
3: हाँ, क्या नाम आपका?
4: गुरुदया नाम है सर।
3: बताओ क्या जानना चाहते हो?
4: सर, एक अमरूद का पेड़ है, 3 साल के लगभग हो गए, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा, कोई फल आता है फिर गल जाता है।
2: देखिए, फलदार पेड़ में एक थोड़ी सी सभी से निवेदन है कि आपने पौधा कहाँ से लाए थे? सबसे पहली बात, अगर मान लो अच्छी वैरायटी का पौधा अपने को लगाना है,
4: नर्सरी से लिया था
2: तो फिर थोड़ा सा पानी ज्यादा तो नहीं दे रहे कहीं आप?
4: नहीं सर, पानी ज्यादा,
2: उसका भी ध्यान रखिए। और ये नवंबर दिसंबर में उसमें देखो न्यूट्रेट जो पोषक तत्व आवश्यकता है ना वो अपने को डालने हैं। अपने को मैंने पहले बताया था कि गोबर की खाद सड़ी 8 से 10 किलो, 250 से 300 ग्राम डीएपी, 100 से 150 ग्राम यूरिया हर फलदार पेड़ में डालेंगे तो बहुत प्रोडक्शन आएगा आपने।
3: जी बिल्कुल। तो आशा जी,
1: जी
3: देखो, लक्ष्मण राम संयुक्त निदेशक कृषि सेवानिवृत्त, और अपना जो कार्यक्रम है हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम, इसमें आए और किसान भाइयों को इतनी अच्छी और उपयोगी जानकारी दी, उनकी समस्याओं का इतना अच्छे से समाधान किया।
1: बिल्कुल,
3: तो लक्ष्मण राम जी को धन्यवाद दे।
1: बिल्कुल सर, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी इशारा कर रही है कि आज का जिसका कार्यक्रम है
3: किसान वाणी,
1: उसका समय पूरा होता जा रहा है।
3: तो लक्ष्मण राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: मैंने दी उसको, आप काम मिले में
1: जी। और अब दीजिए इजाजत आशा को
3: और महेश भाई को भी, देव आज्ञा, राम राम सा,
1: राम राम सा।
5: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार,
6: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना।

0: किसान मानधन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना।
1: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
0: वो कैसे?
1: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना। कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
0: कॉल 1-800-1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
2: प्रत्येक शुक्रवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इश्यूज। प्रायोजक हैं डॉक्टर वीरेंद्र लेजर फेको सर्जरी सेंटर, टोंक रोड, टोंक फाटक, गांधीनगर, जयपुर।
3: खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। महेश भाई, आपने भी मारा गणा गणा राम राम सा।
4: राम राम आशा जी। आपने और जो अपना किसान भाई कार्यक्रम सुन रहे हैं खेती बाड़ी, मैंने भी गणी मोकली राम राम। अच्छा जी,
3: जी
4: देखो, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है आज, तो ये अवसर के ऊपर देखो आपने जो कहा महिला ही बाकी अपनी जो खेती बाड़ी है भी कमाए बहुत ही ज्यादा भागीदारी है। तो प्रगतिशील किसान संतोष प्रचार सिंह आप बातचीत कराओ कि जो अपने जो किसान भाई ही वह भी सुने।
3: बिल्कुल सर। शुरू कार्यक्रम में आज फोन आउट के माध्यम से हम जुड़े हैं संतोष पचार जी से, जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं। कार्यक्रम में संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार।
5: नमस्कार
3: संतोष जी। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप खेती किसानी के बारे में, आपके जीवन के जो अनुभव हैं उसके बारे में हमारे सभी श्रोताओं को बताइए।
5: देखो मैं किसान भाई को ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम संतोष पचार है, गांव जीकर बदी है, जिला सीकर है और राजस्थान की रहने वाली महिला हूँ और प्रगतिशील महिला हूँ।
3: और जैसा कि हम आपके बारे में जानते हैं कि आपने गाजर की खेती में बहुत अच्छा काम किया है, आपकी बहुत सी उपलब्धियां भी हैं, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने जो गाजर की खेती करने का निर्णय लिया या फैसला किया या आपके मन में जो विचार आए, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली?
5: देखो ये प्रेरणा मैं किसान भाई से बताना चाहता हूँ। जो मैं जब जब मैं छोटी थी तो मेरे को गाजर का बहुत शौकीन था और मेरे पिताजी की भी खेती होती थी और फिर मेरी जो 11 साल की शादी कर दी और मेरे को 14 साल की तो मेरे को ससुराल भेज दिया, तो मेरे को गाजर का बहुत शौक था। तो मेरे ससुराल में भी मेरे गाजर की खेती होती लेकिन बहुत छोटे लेवल पर, क्यारी दो क्यारी होती थी
3: जी।
5: तो मुझे बहुत शौक था तो मैं ससुराल में वो गाजर की खेती वो करते थे तो बहुत प्यार से करवाती थी और उसके साथ रहती थी। तो मैं धीरे धीरे फिर परिवार से अलग हुई, तो अलग हुई तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, तो इसलिए मैंने एक ऐसी मतलब खेती से मैं मेरे बचपन से जुड़ी हुई हूँ, माता पिता से और ससुराल से जुड़ी हुई थी, तो मैंने एक गाजर के ऊपर फोकस डाला कि छोटी खेती से थोड़ी छोटी छोटी खेती करके मैंने देखा तो मेरी गाजर होती थी वो मतलब एक गठिया रूप में होती थी, जड़ों में होती थी, तो मैं इसका मतलब इसका मूल्यांकन करना शुरू कर दिया, उस गाजर का मतलब प्रैक्टिकल में देखना शुरू कर दिया, जैसे लंबी कैसी होती है, इसकी जड़ों कैसे चलती है, जमीन का मूल्यांकन करने लग गई। मतलब ये जैविक खेती पर मैं उतर गई थी, तब जैविक खेती का सीकर जिले में 2000 में नाम ही नहीं था, तब मैं जैविक खेती पर आ गई। तो जैविक खेती के आधार से मैं एक गाजर की खेती करती थी, तो उसकी मूल्यांकन करती थी, खेती का जमीन का करती और बीज का करती, तो मैं ऐसे करते करते मतलब आगे बढ़ती गई। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा पैसे 50 पैसे 1 रुपया मार्केट में ज्यादा नहीं।

0: लगे चादर की साइनिंग है, लंबाई है, वो जो मिठास है, तो मतलब अच्छी अच्छी क्वालिटी के उसने तार तार के अच्छी अच्छी क्वालिटी है गाजरों का बीज में करने शुरू कर दिया। जब मैंने 2007 के माह मैंने किया था
1: जी,
0: तो हम जो जब छोटे थे वहाँ छोटे छोटे पुरस्कार मिलते थे, जैसे कृषि विभाग है केवी के, इनसे मैं जुड़ गई थी। जुड़ने के बाद में हम जो अपने जिला कलेक्टर के पास गई थी तो मैडम मेरी देखी और देख के बहुत पसंद हुई, तो फिर आके मेरे फार्म पर उसने एक बड़ी मीटिंग की और मेरे को पंचायत स्तर पर सम्मानित किया था 2007 में
1: जी।
0: फिर मेरा धीरे धीरे उत्साह बढ़ता गया तो मैंने इसकी क्वालिटी भी सुधारी और बीज जो करने लगी वो मेरे किसान भाइयों को डिमांड हो गई और गाजर की खेती का बढ़ावा कर दिया। तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे चला तो मेरे को 2012 के माह मेरे को जिला स्तरीय पुरस्कार मिला था अशोक गहलोत जी से
1: जी।
0: तो फिर पुरस्कार आगे से आगे मिलता गया, फिर मैंने और ही जैसे आगे से बड़ा मेला होने लगे, बड़ी प्रदर्शनी होने लगी, जैसे पूसा है दिल्ली का आशिया, तो मैं सब जगह जाने लग गई। तो वहाँ मैं जाती था, वहाँ मैंने ये गाजर लेके जाती, तो फिर हमारा 2009 या 2010 के माह हमारे खेत का अहमदाबाद से NIFC से सर्वे चला कि भाई खेती कैसी करती है, किस हिसाब किस क्वालिटी गाजर बनाती है, क्या करती है
1: जी।
0: तो मेरा 2-3 साल मेरे खेत में सर्वे चल के फिर मेरे को 2013 के माह राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से 3 लाख का पुरस्कार देके ट्रॉफी को प्रमाण पत्र देके मेरे को सम्मानित किया था। तब मेरे को बहुत खुशी हो गई, मेरे गांव वालों को खुशी हो गई कि अपने एक अनपढ़ महिला, मेरी पढ़ाई है जो 8वीं पास ही है, तो बहुत लोगों के गांव वालों को रिश्तेदारों को सबके खुशी हो गई। इस हिसाब से मैं आगे बढ़ती गई। फिर 2017 के माह मैंने राष्ट्रपति भवन के माह 15 दिन मेहमान के रूप में रही थी, तब भी प्रणब मुखर्जी थे, तो 4 दिन उसके साथ मीटिंग के माह बैठी थी और अपने देसी बीज के ऊपर मतलब आने मतलब देसी बीज रखने के ऊपर, साज संभाल रखने पर, किसानों को बताने पर मीटिंग होती थी, तो उसके माह में बड़ा भाग लेती थी
1: जी।
0: तो हम 15 दिन राष्ट्रपति भवन में मेहमान के रूप में रही थी 2017 के माह। फिर 2020 के माह से सम्मानित हुई थी। मतलब पुरस्कार बहुत ज्यादा है, मैं इतना नहीं बताती हूँ आपको, मोटा मोटी बताया है
1: जी। तो अभी आप कितने क्षेत्र में गाजर की खेती कर रही हैं, कौन सी
0: गाजर की खेती? तो हमने मतलब 5 या 6 बीघा में 1 एकड़ में करते
1: हैं। कौन सी उन्नत किस्में ले रही हैं, कौन सी तकनीक है जिनमें
0: मतलब
1: आप...
0: मेरी गाजर की किस्म जो है SBL 101
1: जी,
0: और के नाम से मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी बना ली है, और गाजर के बीज का नाम SBL 101 है। और मैं जब बीज मतलब मेरा फोकस अब ज्यादा बहुत बीज पर हो गया कि जो मेरे किसान भाई है, जो पहले तो अड़ोस पड़ोस लेते थे, गांव वाले लेते, रिश्तेदार लेते, लेकिन आज पहले मैं इतना ही करती थी, 50 किलो, 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल बीज इतना ही तैयार करती थी। आज मैं 18 से 20 क्विंटल बीज तैयार करती हूँ और पूरे ऑल इंडिया में जाता है, जैसे अपने आके भी ले जाते हैं, ऑनलाइन भी जाता है, और मतलब पूरे मतलब बसों के द्वारा भी जाता है। इस हिसाब से मेरा मतलब 2-3 महीने पूरा मतलब गाजर का बीज चलता है
1: जी।
0: और मेरे से बहुत किसान जुड़े हुए हैं, मतलब लंबी ट्रेन है मेरी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव हमें बताया है कि कैसे आपने शुरुआत करी और कहां कहां से कौन कौन से पुरस्कार भी आपको मिले हैं। आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि आप कौन सी ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करती हैं जिससे आपको इतना अच्छा फल प्राप्त होता है। संतोष जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप ऐसी कौन सी उन्नत तकनीक का उपयोग आपके गाजर की खेती में करते हैं कि जिससे और किसान या और प्रगतिशील किसान जो बनना चाहें या हमारी जो किसान बहनें हैं वो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहें, तो कैसे शुरुआत करें, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
0: मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ जो अपने खेत के माए अच्छी बीज की को जो अच्छी बीज होता है, क्वालिटी का होता है, इसका मतलब इस्तेमाल करना चाहिए बीज का, अच्छे से अच्छे खेती के लिए अच्छे से अच्छे बीज देना चाहिए, कोई गाजर का हो तो मूली का हो तो किसी भी चीज का हो। और जो अपनी खेती है गाजर की खेती को अच्छी तरह से तैयार की जाती है, उसका कचरा वतरा हटा के और गहरी जुताई करके और फिर उस गाजर के अपने बीज का छिड़काव किया जाता है
1: जी।
0: और इसको मतलब अपनी जो खेती, और मेरी बहनों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक गाजर की खेती के ऊपर ही आधारित हुई हूँ कि आज उस गाजर की खेती से कम कमाती हूँ तो मैं 30-35 लाख रुपए कमाती हूँ। तो मैं बहनों से ये कहना चाहती हूँ, चाहे काम कोई सा भी हो, मैं खेती का कोई सा भी हो, कोई सा भी एक चीज लेके चले, हम सारी चीज लेके चलेंगे तो नहीं हुआ। जैसे अपनी एक चीज हम आधारित होंगे एक चीज के ऊपर, तो हम इस चीज को सफल बनाना है तो आराम से मेरी माता बहन सफल बन सकती है। जो आने वाली अपनी जो पीढ़ी है, अपनी युवा पीढ़ी, अपनी बेटियां हैं, बेटे हैं, तो ये अपने आराम से सक्सेस हो जाएंगे अपनी खेती पर अच्छी तरह से फुल ध्यान देंगे। तो अच्छा बीज, अच्छी खेती तैयार करना और अच्छा पानी से ध्यान रखना
1: जी। श्रोताओं संतोष जी जो कि एक प्रगतिशील किसान हैं और गाजर

0: की उन्नत खेती करती हैं। सीकर के पास एक गांव से हैं। और संतोष जी, आप गाजर की उन्नत खेती, फसल प्रबंधन, उत्पादन बढ़ाने के उपाय और गाजर को कैसे बाजार में बेचने के लिए ले जाएं, इसके बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है किसान भाइयों और बहनों की इनके द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत लाभान्वित होगी। आगे भी आप भी गाजर की खेती में नए कदम बढ़ाएंगे, अपनी आमदनी बढ़ाएंगे और एक अच्छे किसान के रूप में, एक प्रगतिशील किसान के रूप में आपकी पहचान बनाएंगे। संतोष जी, फोन लाइन के माध्यम से हमसे जुड़ने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नई कार आ जाएगी ना?
2: कार भी आएगी और हम अपने घर को रेनोवेट भी करवाएंगे।
1: वो कैसे?
2: SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स और प्रोसेसिंग फी वेवर।
1: कॉल 1800।
3: आशा जी।
4: जी
3: भाई, बहुत ही अच्छी जानकारी आप दिलाया। अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के अवसर पर प्रगतिशील किसान संतोष प्रचार से आप बातचीत करी, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित महिला है और एक प्रगतिशील किसान है। और देखो, जका अपना किसान भाई सुना, जकी अपनी महिला किसान ये बातचीत न सुनी, इको बातचीत
4: बिल्कुल। और वे भी सोचला कि आपा संतोष प्रचार जी की जी, वे भी अपनी जो बहना है, जो भाई लोग है, वे भी आवे और नया से नया नवाचार करवा का बारे में जरूर सोचला।
3: एक चोको सो भजन आपने ये बात पर ही सुनावा।

0: महेश भाई गीत तो खूब ही चोखो आप सुनाया, उम्मीद से सुनवाड़ा सगला श्रोता मैंने भी पसंद आयो लो। और अब चंचल बेन स्टूडियो में आगा छे लिया आया छे डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने जानकारी दिलावला पशुओं में परजीवी प्रबंधन और भ्रांतियां। तो आवसा सगला ही मिलर सुना।
1: अपने साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहायक आचार्य पशुओं में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य पर बात कर रहा है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कार्यक्रम में आप लोग घणो मानो स्वागत करा, राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: और जी एम की आज को आपने विषय है कि ढांडा में परजीवी प्रबंधन काई भ्रांतियां हैं काई तथ्य है और अपना जो पशुपालक है वे परजीवियां से कहीं निपट सके है एक ही बात आप करा ला। सब पहले ये जानना चाहूंगा कि परजीवी काई होवे है और आम पशुपालक किया पिछाने काई लक्षण अपना ढांडा में दिखेला।
2: सबसे पहले तो परजीवी की हम बात करें, परजीवी का संक्रमण होने के बाद पशुओं में जो आमतौर पर दिखने वाले लक्षण हैं जैसे कि बहुत कमजोर रहना, ना ज्यादा कम होना, डायरिया हो जाना या फिर शरीर में खून की कमी हो जाना, इन सभी लक्षणों को देख के हम पता लगा सकते हैं कि इसमें परजीवी संक्रमण हो चुका है। परजीवी संक्रमण भी दो किस्म से आप देख सकते हैं, एक तो पेट के अंदर पाए जाने वाले कीड़े और एक शरीर के ऊपर मिलने वाले कीड़े। जो शरीर के ऊपर कीड़े मिल रहे हैं वो आप सामने से देख के पहचान पाएंगे, लेकिन जो पेट के अंदर कीड़े हैं उन्हें हमें इन लक्षणों के माध्यम से ही पहचानना पड़ता है और इसकी जांच आप अपने करीबी पशु चिकित्सालय में जाकर करवा के और फिर उसका उपचार ले सकते।
1: जी डॉक्टर साहब बात करा कि लक्षण दिखता ही आपने आमतौर अपना ढांडा ने ले जानो है जो ढांडा को अस्पताल है बैठे और बैठे जांच करवानी है और जैसे डॉक्टर साहब कहे भैया आपने इको इलाज शुरू करना है। प्रबंधन की बात आप कर रहे हैं, लक्षण पतो चालगो, अब प्रबंधन की तरीका से करना है काई विधि है ये भी बताओ सा।
2: अपने जानवर को ले जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खाली गोबर का सैंपल अगर ले जाके वहां पर जांच करवा के रिपोर्ट ले लेंगे तो भी इसका पता लगाया जा सकता है। दूसरा, प्रबंधन में हमें उनकी साफ सफाई का और उनके रख रखाव का बहुत खास ख्याल रखना है। उनके आसपास बहुत ज्यादा गंदगी इस किस्म की ना हो जिससे मक्खियां मच्छर और दूसरे कीड़े आए। ये मक्खियां मच्छर भी बहुत सारी बीमारियां उनके लिए लेके आती हैं और उनको बहुत सारी बीमारियों से संक्रमित कर सकती हैं। उसके अलावा इनके खाने पीने का, इनके गोबर और खाने के किसी तरह से मिक्स होने का या इनके मल मूत्र का किसी खाने वाली चीज में मिल जाने का हमें खास ख्याल रखना है जिसकी वजह से इनका संक्रमण ना हो। बच्चों को खास तौर पर हमें बड़े जानवरों के साथ नहीं रखना क्योंकि उनसे निकलने वाला जो संक्रमण है वो बच्चों में और ज्यादा तीव्रता से हो सकता है और उनमें और ज्यादा तेज लक्षण देखने को मिल सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं परजीवियों का प्रबंधन भी करना है और बहुत सारी जो भ्रांतियां है बाने दूर करता हुआ जो तथ्य है जिन्हें आजकल की भाषा में ज्यादा समझे फैक्ट्स जिन्हें कहवे है, तो वहां पर आपा चला कौन कौन सी भ्रांतियां हैं जो बहुत ज्यादा देखभाल में आवे है और प्रचलन में है, आपने भी सामना करना पड़े है और सटीक तथ्य कई है बताओ सा।
2: देखिए भ्रांतियों में जैसे कि हमारा ये मानना कि जितनी ज्यादा हम दवाई दें कीटनाशक दें उतना ही असरदार वो इलाज रहेगा। दवाइयां ज्यादा ना तो इंसान के लिए अच्छी हैं और ना ही जानवरों के लिए। सही तरीके से पहले हमें उसके गोबर की जांच करवा के और संक्रमण का पता लगा के ही दवाई देनी चाहिए। दूसरा, दवाई हमें हमेशा पशु चिकित्सक की गाइडेंस में देनी चाहिए। और एक और बात की दवाई देने के बाद हमें कभी भी हमें लगता है कि दवाई दे दी हमने और हम संक्रमण से हमने अपने जानवर को बचा लिया, तो ऐसा नहीं है। जैसे हम सबको पता है राजस्थान क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ पर हर तरह की विविधताएं आपको वातावरण की विविधताएं देखने को मिलेंगी। उसी हिसाब से बहुत सारे अलग अलग किस्म के संक्रमण भी देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारी दवाइयां सभी के सभी परजीवियों पर या कीड़ों पर काम नहीं कर पाती। इसलिए बहुत ज्यादा दवाई देने से हम जानवर का भी नुकसान कर लेते हैं और अपना भी नुकसान कर लेते हैं। एक ही उसके उत्पादों का भी नुकसान होता है, तो हमें बहुत ज्यादा दवाई देनी नहीं है। हमें दवाइयों के साथ साथ इसके प्रबंधन पर ध्यान देना है जिससे इसकी इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है या संक्रमण को कम किया जा सकता है, और उसके अलावा समय समय पर इसकी जांच करवाकर सही दवाई का पता लगाएं। हर बार हम अलग अलग दवाई देंगे जिससे दवाई की मारक क्षमता हमेशा बनी रहेगी। एक ही दवाई को बार बार देने से या कम देने से उसकी मारक क्षमता कम होती है और जानवर पर असर उसका घट जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब एक बात यह भी तो है कि आप जरूरत से ज्यादा दवाई अपना ढांडा ने दे रहा हां और उत्पाद बराबर आप ले रहा हां, तो वो जो दवाई को असर है

0: दूध जो यहाँ पर ले रहे हैं तो दूध में भी आवेलो और वो मिनखा में भी जावेलो।
1: बिल्कुल, ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें बहुत ज्यादा दवाई नहीं देनी और जो भी हमें दवाई देनी है वो हमें पशु चिकित्सक के गाइडेंस में देनी है। आज का हमें जो सबसे बड़ा हमको मुश्किल जो फेस करनी पड़ती है वो ये कि जब जानवर को हमारे पास लाया जाता है तो दो या तीन बार उसकी दवाई वो पहले ही किसान करके लाता है। खासकर कीटनाशक की जो दवाई है वो किसान या पशुपालक हैं वो अपने आप से दे रहे हैं। उनको ये बताया गया समय नहीं करती, जिसका पशुपालकों को ज्ञान कम होता है। इसलिए बार बार पशुपालकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि जांच करवाएं, उसके बाद ही आप दवाई का, पशु चिकित्सक हैं उनसे पूछने के बाद ही आप उनको दवाई दिलवाएं, वो जानवर के लिए भी, आपके लिए भी और उसके उत्पादन के लिए भी सही रहेगा।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, या तो बात हुई कि मोटी मोटी जो भ्रांतियां हैं कि एक बार दवाई दे दी या कोई एक दवाई डॉक्टर बता दियो बिना जद आप आने ला गए जद दे दी, तो या तो गलत बात है ही है। अगर सही तरीका करी जाए अपना धंधा में और भी को स्वास्थ्य चौकू हो सके, कई तरीकों है और क्यों जरूरी है प्रबंधन करना परिजीविया रो, ये बताओ सा।
1: प्रबंधन अच्छा अगर होगा तो हम दवाई की मात्रा को घटा सकते हैं और दवाई की मात्रा को घटाने से पशु को भी निजात मिलेगी, उसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी और हमें भी दवाइयों से पशुपालक ये सोच रहे हैं कि बताया गया कि आप दवाई दोगे तो आप संक्रमण से निजात पा जाओगे, पर सिर्फ दवाई से संक्रमण से निजात नहीं पाया जा सकता। प्रबंधन बहुत जरूरी है, प्रबंधन के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं आपकी बीमारियां हैं इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, इनको इनकी रोकथाम बहुत मुश्किल है। मुर्गी पालन अगर इसके साथ में की जाए तो मुर्गी कहीं ना कहीं उस टिक को, उस चीचड़ को खा के पशु का भी लोड कम करती है और अपना भी पेट भर लेती है। बहुत सारी जानवरों के ऊपर दवाइयों का छिड़काव किया जाता है इन चीचड़ों को रोकने के लिए। जरूरत से ज्यादा अगर छिड़काव किया जाएगा तो वो जानवर के लिए भी हानिकारक है, जानवर के साथ में जो दूसरे उनके बच्चे हैं उनके लिए भी हानिकारक है, और दूसरा उनको चाट के और उसका टॉक्सिसिटी होने के चांसेस हमेशा बने रहते हैं। इसलिए इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना पड़ता है। दवाइयों के पाई जाने वाली जितनी भी जीवों के संक्रमण के स्टेजेस हैं उनके लिए बतख पालन किया जा सकता है। बतख पालन पानी में उन स्टेजेस को खाएंगे तो वो संक्रमण आगे नहीं फैलेगा। मुर्गी को अगर हम साथ में पालते हैं जहां पर चीचड़ और इस तरह के इन्फेक्शन है जानवरों के ऊपर, तो मुर्गी उन चीचड़ के इन्फेक्शनों को भी कम करके और अपना पेट भी भर लेगी। तो इस तरह के प्रबंधन को छोटे छोटे को अपना के हम दवाइयों का इस्तेमाल कम कर सकते।
0: और ये तो बहुत ही बढ़िया बात डॉक्टर साहब बता रहा है कि जब आप पशुपालन कर रहे हैं, आज नवाचारा की बात आप कर रहा हाँ और एक सौ ज्यादा तरीका अपनावा हाँ तरक्की के ताई पीसो कमावा के ताई, तो न सिर्फ आप मुर्गी या बतख पालन कर परजीवियों को खतरों सको, आपने साथ डॉक्टर अभिषेक गुप्ता सहचार्य पशुआ में परजीवी प्रबंधन भ्रांति और तथ्य पर बात कर रहा है। तक पालन कर सका हाँ रहबा की पशुआ का बाड़ा की भी कोई विशेष व्यवस्था आपने करनी चाहिए जी, ताकि परजीवियों से आपने थोड़ा सा निजात मिल सके।
1: प्रबंधन में बाड़े का एक बहुत खास रोल है। कैसा बाड़ा हम जानवर को रहने के लिए दे रहे हैं उसमें जानवर कितना सहज फील कर रहा है उसी से उसके प्रतिरोधक क्षमता है उसका गठन होगा। अगर जानवर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे, तो उसकी बीमारी की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत घट जाती है, जिसकी वजह से वो जल्दी संक्रमण की चपेट में आ जाता है। तो बाड़े में खुली हवा हो, साफ सफाई हो, अगर हो सके तो बाड़ा नीचे से पक्का करें, जिसकी वजह से ये चीचड़ की कई स्टेजेस हैं, स्टेजेस मतलब जो इनके अंडे, उन अंडों से निकलने वाले बच्चे, बच्चों से बनने वाले निम्फ, ये छोटे छोटे जो अगर कच्चा बाड़ा है तो उस छोटे छोटे खड्डों में, क्रैक्स में ये घुस जाते हैं और वहां पर ये अपने आप को बचा के रख लेते हैं दवाइयों। तो बहुत ज्यादा जानवरों पर दवाई अपनाने के बाद भी आप दो या तीन महीने में फिर से वो चीचड़ का इन्फेक्शन उस पर वापस देखोगे, कारण वही निम्फ जो खड्डे में घुस गया था। पक्का बाड़ा होगा तो साफ सफाई इफेक्टिव रहेगी, इस तरह के खड्डे उनको नहीं मिलेंगे जहां पर वो छुप के बैठ जाएं और उसकी वजह से इन्फेक्शन कम किया।

0: होती है कि छोटे बच्चों का जिनमें की ये प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती, उनको अगर हम बड़ों के साथ रखते हैं तो उनमें इन्फेक्शन जो होगी उसकी तीव्रता बड़ों के मुकाबले कई ज्यादा होगी, तो उनको भी अलग रखना। तो ये छोटे प्रबंधन के जितने भी मैंने आपको बताए हैं, इनको इस्तेमाल करके हम परजीवी प्रबंधन को और ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं।
1: साहब बाड़ारी प्रबंधन की भी बात करें, खान पीन का प्रबंधन की बात करें, की तरीका को खान पीनों देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा जो पशु जी सुबह रेचक क्रिया बाकी हो जावे है, तो वो सही रहे कहीं।
0: खाने पीने के प्रबंधन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, जो पशुपालक भारतीय नस्ल की जो पशु रख रहे हैं वो ये जानते हैं कि इनमें इस तरह की जो इन्फेक्शन है, कीड़ों का संक्रमण, ये बहुत कम देखने को, जो मैंने आपको शुरू में जितने भी लक्षण बताए ये भारतीय पशुओं में देखने को बहुत कम मिलेंगे, और जिनके पास क्रॉस पशु उनको ज्यादा मिलेंगे,
1: देसी नस्ल में
0: देसी नस्ल में कम मिलेंगे। और देसी नस्ल में कम मिलने का कारण यही है कि देसी नस्ल जो है उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। अगर उस प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर उनको जो खाना जितना उनको चाहिए अगर वो दे दिया जाए तो जरूर उनके उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी, है ना। जानवर के अंदर अगर किसी तरह के कीड़ों का संक्रमण है तो आप ये मान के चलें कि उसकी जितनी भी न्यूट्रिशन जो वो खाने से ले रहा है वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रही है उन कीड़ों के तरफ, तो वो कीड़ों को ना मिलके आपको मिले, इसके लिए 10% प्रोटीन अगर हम जो खाने में जितना रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर अगर 10% हम बढ़ा दें, यानी खाना जितना हम दे रहे हैं उसके ऊपर हम थोड़ा सा और दें, तो उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और पैरासाइट के होने के बावजूद यानी कीड़ों के होने के बावजूद भी उसका उत्पादन बढ़ेगा। यही जो विदेशी नस्ल की गायें हैं उसमें हमें दवाई का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है अगर संक्रमण कीड़ों का हो जाए
1: तो कुल मिलाकर आपकी बात से मैंने एक बात यह समझ में आई कि सबसे ज्यादा बड़ी भ्रांति जो पशुपालका में चल रही है कि देसी नस्ल में उत्पाद कम मिले है, यह सरासर भ्रांति है, क्योंकि उत्पाद कुछ धाना में परजीवियों का लक्षण कम दिखाई देवे है, पर बाने जो खानों चारो दानो आपा दे रहा है वो बाकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावा लाग रहे है, इसलिए उत्पाद कम आ रहे है। अगर जो खानो आपा दे रहा है बिना संतुलित मात्रा में तो देवा ही, थोड़ा सा ज्यादा देवाला बेसी देवाला तो परजीवियों से भी लड़ेला और उत्पादन भी चोखो मिले लो। डॉक्टर साहब बात करा या
2: सुनो, इस त्योहार तो हमारी नहीं कर SBI अनलिमिटेड सेलिब्रेशन है ना, कार लोन, लोन, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स पर कंसेशन 1234 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
3: और देखो तो आप
1: इन्हें
3: कहा राम राम सा
1: राम राम सा।

सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बाड़ी। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर से किया गया। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्स तथा दूरदर्शन के डीटीएच चैनल पर। जयपुर अजमेर के अलावा आप हमारे कार्यक्रम आकाशवाणी डूंगरपुर, नाथद्वारा, करौली, भरतपुर, झुंझुनू, अनूपगढ़ और कोटपुतली केंद्रों से भी सुन रहे हैं। और साथ ही आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लाइव सुन सकते हैं।

0: अरे ऐसे कहाँ चल दिए?
1: चलना है तो आप भी चलिए आकाशवाणी जयपुर अजमेर के साथ, जो आपको चलना सिखाता है, रास्ता दिखलाता है और मंजिल भी बताता है।
0: तो फिर चलिए।
1: मैं तो चला।

0: यह आकाशवाणी जयपुर अजमेर का अनिल चैनल है। अब लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बेड़ियां।
1: नमस्कार, मैं एना कर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम हमारी बेड़ियां में।
2: प्रिय श्रोताओं, क्या आप जानते हैं इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो शुरुआत में आनंद का साधन लगती है, वही धीरे धीरे जीवन की सबसे बड़ी जंजीर बन जाती है? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शराब की लत की। शराब पहले इंसान को नहीं पकड़ती, इंसान शराब को पकड़ता है, लेकिन धीरे धीरे वही शराब इंसान के जीवन, परिवार, स्वास्थ्य और भविष्य को पकड़ लेती है। एक गिलास से शुरू हुई कहानी कभी कभी एक टूटे हुए परिवार पर खत्म होती है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपनी समस्या को स्वीकार करता है और सही सहायता की ओर कदम बढ़ाता है। दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो शराब की लत से जूझ रहे हैं, या आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो शराब के आदी हो गए हैं? यदि ऐसे लोगों को अपने आसपास में ढूंढा जाए तो शराब की लत से जूझ रहे या शराब के आदी हो गए लोगों को ढूंढ पाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। शराब की लत आज केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति, परिवार और पूरे समाज को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या है। जब कोई व्यक्ति बार बार शराब का सेवन करता है और धीरे धीरे शराब उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती है, तो वह अपनी इच्छा और नियंत्रण को खोने लगता है। इसका प्रभाव उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति, पारिवारिक आर्थिक जीवन, सामाजिक संबंधों और आत्मिक जीवन पर भी पड़ सकता है। कैसे एक व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है? जी हाँ श्रोताओं, इन सभी पहलुओं पर हम विचार करने वाले हैं। आज का कार्यक्रम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर है, जिसमें हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे और शराब की लत से कैसे छुटकारा पाएं इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। प्रिय श्रोताओं नमस्कार, मैं प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम आशा करते हैं कि आप सभी अपने परिवार के साथ आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ें, हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 9414066730। जी हाँ, 9414066730। और हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001।
2: आज का कार्यक्रम शराब की लत से कैसे छुटकारा पाए इसके विषय में चर्चा करेंगे।
1: एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था। रमेश एक कंपनी में काम करता था और अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खुशी खुशी रहता था। एक दिन दफ्तर के दोस्तों के दबाव में रमेश ने पहली बार थोड़ी सी शराब चखी। उसे यह अजीब लगा, लेकिन दोस्तों की देखा देखी उसने इसे शान की बात मान लिया। धीरे धीरे कभी कभी की जाने वाली यह पार्टी हर हफ्ते की आदत बन गई। हर दिन पूरे मन से रमेश पास की शराब की दुकान पर जाता था, चाहे सुबह का समय हो या शाम का, या दुकान बंद होने का समय हो। रमेश हमेशा उसी दिशा में दृढ़ निश्चय के साथ बढ़ता रहता था। उसके मन में बस एक ही विचार बार बार घूमता रहता था, हे भगवान काश दुकान बंद हो। लेकिन फिर दुकान खुलते ही चमकती बोतल उसे अपनी

0: और खींच लेती। कुछ ही मिनटों में एक प्लास्टिक की थैली में बोतल लिए रमेश वहाँ से निकला। कभी खरीदारी से खुश होता तो कभी खुद को कोसता।
1: दरवाजा खोलो।
2: अरे रमेश, तुझे क्या हुआ? तू तो पहचानने में भी नहीं आ रहा। ये क्या हाल बना रखा है भाई, तू तो बहुत कमजोर हो गया है।
1: हाँ भाई कमल, थोड़ा बीमार हो गया हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। और तू सुना, तू कैसा है?
2: और तेरी नौकरी कैसी चल रही है? पिछली बार तो तूने बताया था कि तेरी प्रमोशन हो गई है और तनख्वाह भी डबल हो गई है।
1: क्या बताऊं भाई, शराब के कारण नौकरी भी चली गई और बच्चे का नाम भी स्कूल से कट गया, बीमार और हो गया।
2: यार जितना मैं तुझे जानता हूँ तो
1: हाँ भाई कमल, था तो ऐसा ही, लेकिन दोस्तों की संगति के कारण एक दो बार शराब पी फिर लत लग गई। अब शराब छोड़ना चाहता हूँ ताकि सब ठीक हो जाए।
2: भाई अपना ख्याल रख, और मैं तो चाहूंगा कि तू ठीक हो।

0: की हालत बहुत खराब हो चुकी है और दोनों लीवर पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। इनको बचाना मुश्किल होगा।
1: कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, किसी भी तरह इन्हें बचाने की कोशिश कीजिए।
0: देखिए, हमने अपनी ओर से सारी कोशिश कर ली है, लेकिन अब स्थिति हमारे हाथ से बाहर जा चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते।
2: सुनीता मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने केवल शौक के लिए शराब पीना शुरू किया। अब मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर देना। काश मैं तुम्हारी बात मान लेता और शराब छोड़कर अपने परिवार पर ध्यान देता।

श्रोताओ, शराब की लत अचानक नहीं लगती। कई बार व्यक्ति मजे में या फिर तनाव में आकर या फिर दोस्तों के साथ बैठकर या परिवार के वातावरण में बहुत सी समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन में परेशान होकर शराब पीना शुरू कर देता है। शराब में उसे लगता है कि वह जब चाहे शराब छोड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसका यह सेवन आदत और फिर निर्भरता में बदल सकता है। किसी भी व्यक्ति के शराबी होने के कई कारण हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के शराब का आदि होने का एक बड़ा कारण उसका वातावरण भी हो सकता है, परिवार, समाज या वो स्थान जहां वह रहता है, और बुरी संगति उसके जीवन को प्रभावित कर सकती है। जो बच्चे शराब पीने वाले परिवारों में बड़े होते हैं, उनमें ये डर हो सकता है कि वे भी अपने माता पिता जैसे बन जाएंगे। कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि अगर मेरे पिता शराब पीते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार से बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह संस्कृति और समाज का प्रभाव भी व्यक्ति पर पड़ता है। संस्कृति इसे बहुत सामान्य रूप से देखा भी जाता है। इससे विशेषकर युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है और बाद में वे इसके आदी बन जाते हैं। कई बार वर्तमान में तनाव के कारण व्यक्ति शराब की लत में पड़ जाता है। बहुत से लोग किशोरावस्था में शराब पीना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में व्यक्ति के जीवन में चिंताएं, डर, अपराध, निराशा और कई अन्य समस्याएं आ सकती हैं। कभी कभी परिवार में तनाव होने के कारण भी व्यक्ति शराब का सेवन करना शुरू कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में शराब को तनाव से बचाने कई बार टेलीविजन और फिल्मों में भी लोग ये देखते हैं कि कुछ पात्र शराब पीकर अपना तनाव करते हैं। इसके अलावा तो वह भी उनके साथ शामिल हो जाता है। इसी प्रकार मानसिक तनाव के कारण

कारण विशेषकर कुछ युवा खुश शुरुआत में वे उसे आराम या तनाव कम करने के लिए लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे लेकिन ये शराब की लत कैसे छूट सकती है, ये एक सबसे बड़ा विषय है। प्रिय श्रोताओं, कभी कभी बहुत से लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के शराब

0: योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए ताकि वो अपनी समस्याओं को उसे बता सके और वो उसका इलाज सही तरीके से कर सके। कई बार जब शराब का आदी व्यक्ति घर पर शराब छोड़ने की कोशिश करता है तो वह कुछ दिनों तक अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन जब वो फिर उसी वातावरण में जाता है पुराने सकती है। पुनर्वास केंद्र यानी कि रिहैबिलिटेशन सेंटर, उस स्थान पर ऐसे लोग एक साथ रहते हैं जो शराब छोड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। इसमें वह एक दूसरे को समझ सकते हैं, अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। वहाँ प्रशिक्षित काउंसलर भी होते हैं जो उन्हें समय समय पर मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करते हैं। शराब छोड़ना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता। लंबे समय से अधिक मात्रा में शराब पीने वाले व्यक्ति को अचानक शराब बंद करने पर गंभीर समस्याएं हो सकती हैं और ऐसे समय में उन्हें पुनर्वास केंद्र जाकर अपना इलाज कराना जरूरी हो जाता है। बहुत से लोग तनाव, अकेलापन या जीवन की कठिन परिस्थितियों के कारण शराब का सहारा लेने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसे केवल डांटना या उससे दूरी बनाना पर्याप्त नहीं है, हमें उसके करीब जाना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए और भावनात्मक सहायता देनी चाहिए। हर क्षेत्र में लोगों को शराब और नशीले पदार्थों के प्रभाव और उनके नुकसान के बारे में उचित शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। कई बार लोग शराब के वास्तविक प्रभावों को जाने बिना इसे पीना शुरू कर देते हैं। जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है उसके लिए भी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे व्यक्ति को शिक्षा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। साथ ही उसे ये भी जानना चाहिए कि शराब की निर्भरता से बाहर आने के लिए कहां से सहायता प्राप्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों से उसे बचना चाहिए। प्रिय श्रोताओं, एक बहुत पुरानी कहावत है और इस कहावत में कहा गया है कि शराब हट्टा करने वाली और हुल्लड़ मचाने वाली है। जो कोई इसके कारण भटक जाता है वह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। शराब व्यक्ति के निर्णय और व्यवहार को प्रभावित करती है। जो व्यक्ति शराब के कारण अपने विवेक और नियंत्रण को खो देता है वह व्यक्ति बुद्धिमानी से काम नहीं कर रहा। कई बार शराब पीने वाला व्यक्ति सोचता है कि वो शराब को नियंत्रित कर रहा है, लेकिन असल में जब शराब उस व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण करने लग जाती है तब वह उसके जीवन की आदत नहीं बल्कि वो उसके जीवन की जंजीर बन जाती है। समस्या तब शुरू होती है जब जिस चीज को हम नियंत्रण करने की सोचते हैं वही हमें धीरे धीरे नियंत्रित करने लगती है। पेश होता हो इसके कई बुरे परिणाम होते हैं। दुख, झगड़ा, शिकायत, चोट, गलत निर्णय, शराब की लालसा, शराब को छोड़ने में कठिनाई उत्पन्न होना, ये तमाम चीजें व्यक्ति को अपने जीवन में सहनी पड़ती है। यहाँ तक कि वो आर्थिक रूप से भी कमजोर हो जाता है। बहुत सारे लोग शराब पीने के लिए चोरी करने लगते हैं, गलत काम करने लगते हैं, घर से पैसा चुराने लगते हैं। ये तमाम चीजें उनकी डिग्निटी यानी कि उनके गौरव पर भी प्रभाव डालती है और साथ ही साथ समाज में उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। हर व्यक्ति को समाज में एक अच्छी पहचान बनानी चाहिए। परिवार में उसे आदर्श के रूप में देखा जाना चाहिए ताकि बच्चे भी उसके जीवन को देखकर प्रभावित हों और उसके जैसे बनने का प्रयास करें जो अच्छे काम अपने जीवन में करता है। प्रिय श्रोताओं, शराब की लत छोड़ी जा सकती है, लेकिन इसके लिए आपको दृढ़ संकल्प लेना जरूरी होता है। जब आप अपने जीवन में दृढ़ संकल्प लेते हैं कि आपको इस काम को नहीं करना तो अवश्य ही आप उस पर विजय पा सकते हैं और आप शराब जैसी बड़ी लत जो लोगों के जीवन और उनके परिवारों को बर्बाद करती है उससे छुटकारा पाया जा सकता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आप भी अपने विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमें लिख सकते हैं।
1: कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप अपने अनुभवों को हमसे बांटना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़ियां, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 110001 और हमारा फोन नंबर है 9414066730। जी हाँ, 9414066730। तो अब मुझे दीजिए अनुमति, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।
2: सुरक्षित हो अभी आप सुन रहे थे।

प्रायोजित कार्यक्रम हमारी बीड़ियां। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 497.5 एक मीटर यानी 603 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 101.2 मेगाहर्ट्ज़ तथा दूरदर्शन डीटीएच चैनल पर। इनका समय हुआ है, अब हमारे श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आगाज कर रहे हैं दहलीज फिल्म के इस गीत के साथ। महेंद्र कपूर भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गीत हमने लिया है। हसन कमाल के गीत, रवि का संगीत।

कुछ इस तरह से खो गए हैं ख्यालों में तुम्हारे, कुछ इस तरह से खो गए हैं ख्यालों में तुम्हारे, जैसे खुद को भुला बैठे हूँ सवालों में तुम्हारे। न तुम रहे न तुम्हारा इंतजार रहा, बस रह गई तन्हाई जो हर पल अब साथ है हमारे।

श्रोताओं, अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये बेहद खूबसूरत सनगमा दहलीज फिल्म से। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से फिल्मी गीतों का प्रोग्राम आपके रेडियो दोस्त शंकर पारिक के साथ। बने रहिए

कभी हबी हम शान से, जीते थे हम भी कभी शान से, महक उठी थी जिंदगी किसी के नाम से, मगर फिर गुजरे उस मुकाम से कि नफरत सी हो गई मोहब्बत के नाम से। लता मंगेशकर की आवाज में भी आपने सुना ये दिलकश नगमा, जिसे लिया

प्यार सभी को जीना सिखा देता है, प्यार सभी को जीना सिखा देता है, वफा के नाम पर मरना सिखा देता है। प्यार नहीं किया तो करके देख लो यारों, जालिम हर दर्द सहना सिखा देता है। मेरे अपने फिल्म में किशोर कुमार की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही आज का ये फिल्मी नगमों का प्रोग्राम संपन्न करने की दीजिए इजाजत आपके रेडियो दोस्त शंकर पारी को। नमस्कार श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से किया गया। हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं मीडियम व्यू और एफएम बैंड पर। अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम होंगे। 8:30 पर स्पोर्ट्स गेम, 8:45 पर समाचार संध्या, तत्पश्चात रात 9:00 न्यूज 8:09 और 9:15 पर होगा उर्दू में समाचारों का सिलसिला।

सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। खेल जगत की हलचल, खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मैदान से जुड़ी हर अहम खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की, कहा ये पूरे देश की सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में लगभग 3000 योजनाओं का शुभारंभ किया, कहा लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हराकर श्रृंखला बराबर की।

0: आज हम की शुरुआत करते हैं एशियाई खेलों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में एशियाई खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की। जापान के आईची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स में भारत ने कुल 85 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल रहे। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार का एशियन गेम्स हमारे लिए कई मायनों में यादगार रहा।
1: इस बार एशियन गेम्स कई मायनों में हमारे लिए यादगार रहे। हमारी हॉकी की महिला और पुरुष दोनों टीमों ने इस बार गोल्ड मेडल जीता है और खासकर हमारी महिला हॉकी टीम, आपने तो गोल्ड लाकर 44 साल के लंबे इंतजार को खत्म किया है। क्रिकेट में हमारी दोनों टीमों ने लगातार अपना ही रिकॉर्ड दोहरा दिया है। कबड्डी में भी हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने गोल्ड जीता है। इसी तरह तीरंदाजी में 5 गोल्ड और जहां पंच वहां परमेश्वर, शूटिंग में शानदार प्रदर्शन, बॉक्सिंग में, कुश्ती में बड़ी बड़ी सफलता, एथलेट से नए रिकॉर्ड। 28 साल बाद वेट लिफ्टिंग में मेडल। 1982 के बाद पहली बार मैराथन में भारत को मिली सफलता, ये वाकई बहुत सुखद है।
0: प्रधानमंत्री ने इसे देश के करोड़ों नागरिकों की सफलता बताते हुए कहा कि आप सभी खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है। श्री मोदी ने महिला खिलाड़ियों की भी सराहना की।
1: मैं हमारी बेटियों की खास तौर पर सराहना करना चाहता हूं। भारत ने जो 85 मेडल जीते हैं उनमें से 38 मेडल हमारी विमेन एथलीट्स ने जीते हैं, इसमें शामिल है। और ये मेडल्स केवल एक संख्या नहीं है, ये नए भारत की एक सशक्त तस्वीर है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने खेलो इंडिया का विस्तार करने और खेल महासंघों को मजबूत करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में 1,000 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इकोसिस्टम में काफी बदलाव आया है। इसके साथ ही चयन प्रक्रिया में आई पारदर्शिता के कारण युवा खिलाड़ियों को प्राप्त अवसर मिल रहे हैं।
2: पिछले कुछ वर्षों में देश में खेलों को लेकर स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में बदलाव आया है, अवसर बढ़े हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ा है। आज सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक साथ मिलकर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए कदम से कदम मिला के काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स विकसित भारत का एक मेजर पिलर बन चुका है।
0: खेल मंत्री ने आज राष्ट्रीय खेल महासंघों से भारत के खेल प्रदर्शन के लिए और अधिक जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। कई राष्ट्रीय खेल महासंघों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हुए खेल मंत्री ने भारत के खेल उत्कृष्टता को बनाए रखने के लिए आपसी तालमेल के साथ काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर मांडविया ने इस बात पर बल दिया कि भारत

0: कुछ पदक विजेताओं पर निर्भर रहने के बजाय चैंपियनों की एक निरंतर श्रृंखला तैयार करने की आवश्यकता है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल महासंघों की बैठक में एशियन गेम्स में भारत के प्रदर्शन की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: यहां के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।
0: और अब बात कुश्ती पर। अमेरिका के लास वेगास में विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीता। चैंपियनशिप में पहली बार किसी भारतीय पहलवान ने पदक हासिल किया। पुरुषों के 55 किलो भार वर्ग के फाइनल में विश्वजीत को जॉर्जिया के कोबा कारीमित्सी से हार का सामना करना पड़ा। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: भारतीय पहलवान विश्वजीत रामचंद्र मोरे ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के ग्रीको रोमन वर्ग में भारत के लिए पहला रजत पदक जीत लिया है। अंडर 23 विश्व स्तर पर दो बार कांस्य पदक जीत चुके मोरे पुरुषों के 55 किलोग्राम ग्रीको रोमन फाइनल के आखिरी पलों में जॉर्जिया के कोबा कारूमिद्जे से 12-13 से हार गए। मोरे इस चैंपियनशिप में दो पदक जीतने वाले भारत के एकमात्र ग्रीको रोमन पहलवान है। उन्होंने 3 कड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए ये पदक देश के नाम किया। मोरे ने मेक्सिको के इसाक मारिन माटा को 10-8 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जिससे क्वार्टर फाइनल में उनका मुकाबला ईरान के अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन आर्बिन शमसी पौर से हुआ। शमसी पौर को मोरे ने 8-1 से हराया। रूस के मलिक गिगेव के खिलाफ सेमीफाइनल भी काफी रोमांचक रहा। इसमें दोनों पहलवानों को चैलेंज का फायदा मिला। अंत में मोरे ने 6-4 से जीत दर्ज की। मोरे फाइनल में इस लक्ष्य के साथ उतरे थे कि वो इस चैंपियनशिप को ग्रीको रोमन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बनेंगे। हालांकि वो फाइनल में जॉर्जिया के कोबा कारूमिद्जे से हार गए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब बात मुक्केबाजी पर। 18 सदस्यीय भारतीय मुक्केबाजी टीम कल मोंटेनेग्रो के लिए रवाना हुई। भारतीय टीम 18 अक्टूबर से विश्व अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करती नजर आएंगी। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने सोनी यादव।
4: भारतीय टीम का उद्देश्य वर्ल्ड अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप चैंपियनशिप के पहले देश में भारत ने 17 पदक जीते, जिन इंग्लैंड के बाद दूसरे स्थान पर रहा था। दूसरे एडिशन के लिए भारतीय टीम ने इस साल की शुरुआत में जकार्ता में हुई एशियन अंडर 19 बॉक्सिंग चैंपियनशिप से स्वर्ण और रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी और दूसरी वेट कैटेगरी में हुए सिलेक्शन ट्रायल के विजेता भी शामिल। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अजय सिंह टीम को शुभकामनाएं देते हुए कहा, मोंटेनेग्रो जाने वाली हमारी टीम बहुत मजबूत है और स्क्वाड का लगभग हर खिलाड़ी पूरे साल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारत ने एशियन अंडर 19 चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण, 8 रजत और 4 कांस्य पदक जीते थे। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अधिक अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विशेष। बेहद ही अहम और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है। दोनों ही वर्ग में कौन से खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं?
5: पुरुषों महिला कैटेगरी में टीम की अगुवाई एशियन अंडर 19 गोल्ड मेडलिस्ट प्राची करेंगी, साथ ही सिल्वर मेडलिस्ट जयश्री देवी, चिरोम चाहत, अंशिका मेघा और प्राची तोकस भी शामिल रहेंगी। अगर पुरुष दल की बात करें तो एशियन अंडर 19 सिल्वर मेडलिस्ट आदित्य और ध्रुव के साथ अनुभवी मौसम सुहाग भी टीम में शामिल है।
0: विशेष प्रतियोगिता में इस बार दोनों ही वर्गों में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है?
5: प्रशांत, अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो हिमांशी 48 किलोग्राम, जयश्री देवी 54 किलोग्राम, प्राची 57 किलोग्राम, चाहत 60 किलोग्राम, हर्षिका 65 किलोग्राम, लक्ष्य 70 किलोग्राम, अंशिका 75 किलोग्राम, मेघा श्योकन 80 किलोग्राम और प्राची टोकस को हैवी वेट कैटेगरी में मौका मिला है। वहीं पुरुष वर्ग में अमन देव 50 किलोग्राम, आदित्य 55, शिवम 60, मौसम सुहाग 65, प्रशांत 70, लोके

0: इस 80, त्रिदेव 85, ध्रुव 90 और क्रिश को हेवीवेट कैटेगरी में मौका मिला है।
1: तो उम्मीद करेंगे कि इस टूर्नामेंट में भी भारतीय टीम अपना परचम लहराए। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA ने सीनियर महिला T20 ट्रॉफी के पहले दो मैचों के लिए आज 16 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ ने सोनी यादव को कप्तान और श्वेता शहजावत को उप कप्तान नियुक्त किया है। ये प्रतियोगिता 26 अक्टूबर से 20 नवंबर तक राउंड रॉबिन और नॉकआउट प्रारूप में जीता है। 2026-27 सीजन में 37 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें एलीट और प्लेट के अंतर्गत 5 समूहों में बांटा गया है। महाराष्ट्र पिछले सीजन में पहला खिताब जीतकर वर्तमान चैंपियन है। इससे पहले DDCA ने कल 2026-27 घरेलू क्रिकेट सीजन के लिए दिल्ली महिला अंडर 15 टीम के ओपन चयन ट्रायल के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किए। खिलाड़ियों को 18 अक्टूबर तक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। शशांक, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर चौथे T20 क्रिकेट मुकाबले में वेस्टइंडीज ने भारत को 24 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 3 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 223 रन पर सिमट गई। 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। विशेष, पूरे मैच का हाल कैसा रहा कल का?
3: प्रशांत, अगर कल मुकाबले की बात करें तो भारतीय टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन यह निर्णय उनके लिए बहुत ही खराब साबित हुआ क्योंकि कप्तान शे होप ने 50 गेंदों पर 102 रन की शानदार पारी खेली। वहीं ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड ने अंतिम ओवरों में 26 गेंदों पर 49 रन बनाकर पूरा समीकरण बदल दिया, जिससे भारतीय टीम को 248 रन का लक्ष्य मिला, जिसे भारतीय टीम चेज नहीं कर पाई।
1: अगर हम पूरी श्रृंखला की बात करें तो लगातार पूरी श्रृंखला में गेंदबाजों ने निराश किया। कल उनका प्रदर्शन कैसा रहा?
3: बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा प्रशांत, क्योंकि मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी तीनों ने ही 13 की इकोनॉमी से रन दिए। सिर्फ अर्शदीप सिंह ही थे इन तीनों गेंदबाजों में जिन्होंने एक विकेट लिया। वहीं प्रिंस यादव की बात करें तो उन्होंने सधी हुई गेंदबाजी करने की कोशिश की, जहां 4 ओवर में 36 रन देकर एक विकेट लेकर। श्रृंखला में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि 5वें मुकाबले में किसी नई रणनीति के साथ वापसी करते हैं।
1: टारगेट कोई भी हो, विशेष जो बल्लेबाजी क्रम है, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स हो या उससे पहले भी, हम 2 बार विश्व कप जीत चुके हैं और बैक टू बैक हमने एशियन गेम्स भी जीता। यह दर्शाता है कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। कल कोई भी टारगेट रहा हो भारतीय टीम के सामने, हम बल्लेबाजी में प्रदर्शन,
3: बल्लेबाजी भारतीय टीम की हमेशा से ही डोमिनेटिंग रही है और पिछले कुछ समय में अपना लोहा मनवा चुकी है। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने शानदार शुरुआत दिलाई। वहीं नीतीश रेड्डी और तिलक वर्मा के ओवरों में पारी को संभालने की कोशिश करी। भारतीय गेंदबाजों से जो चूक हुई थी कि जो 18 रन एक्स्ट्रा दिए थे, शायद वही एक बड़ा अंतर समझ में आया जहां भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा।
1: और अंतिम और निर्णायक मुकाबले
3: गेंदबाजों को बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, जहां मयंक यादव, अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे और अक्षर पटेल और नमन धीर को स्पिन गेंदबाजी में काफी कुछ महत्वपूर्ण साबित करना पड़ेगा।
1: तो अब देखना दिलचस्प होगा कि 17 अक्टूबर को कौन सी टीम यह श्रृंखला अपने नाम करती है। और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। गायत्री गोपीचंद और तिशा जॉली की महिला डबल्स जोड़ी ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। संक्षेप में बताइए विशेष की क्या कुछ अलग अलग वर्गों का हाल आज।
3: प्रशांत, पुरुष सिंगल्स में किदांबी श्रीकांत अलेक्स लेनियर के खिलाफ पहला सेट उन्होंने 21-11 से जीता, लेकिन अगले 2 सेट 21-15 और 21-15 से हार कर बाहर हो गए। वहीं वुमेन सिंगल्स में अश्विता चालिहा जापान की अकाने यामागुची से 21-18 और 21-10 से हार गई। तन्वी शर्मा का मुकाबला अभी कुछ ही देर में खेला जाएगा।
1: और अब सभी प्रशंसकों की निगाहें महिला डबल्स जोड़ी पर होंगी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख

0: योजनाओं का लोकार्पण किया, कहा केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया। मतदाता सूची से कथित नाम हटाने के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। भारतीय वायुसेना के लिए संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र खरीदे जाएंगे। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। सेंसेक्स 2% से अधिक बढ़कर 74,316 पर बंद हुआ और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की, कहा देश वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लद्दाख का विकास केंद्र सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। श्री मोदी ने लद्दाख में लगभग 3,350 करोड़ रुपए की 5 प्रमुख विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से लद्दाख में संपर्क सुविधाएं मजबूत होंगी।
1: लद्दाख की प्रगति और विकास में एक और अध्याय जुड़ रहा है। आज लद्दाख में कई अहम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसकी विकास जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नई प्रौद्योगिकियों को सीखने के अवसर और दूसरे शहरों में निर्भरता कम करने पर ध्यान दिया जा रहा है।
1: यहाँ के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर न रहना पड़े, यह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लेह में एक प्रमुख उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। श्री मोदी ने बताया कि लद्दाख की नई खेल नीति के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत GSAT-7C संचार उपग्रह और भारतीय नौसेना के लिए टॉर्पीडो वरुणास्त्र की खरीद की जाएगी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अपर सचिव और अधिग्रहण महानिदेशक ए अम्बारासु की उपस्थिति में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। GSAT-7C उपग्रह के लिए 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध बेंगलुरु की न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ किया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित ये उपग्रह मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत लगभग 100 देशों को स्वदेशी रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 के मात्र 686 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025-26 में 38,000 करोड़ रुपए हो गया। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में एक रक्षा सम्मेलन के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत ने गोला बारूद मामले में 90% से अधिक आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। सरकार ने 1 नवंबर से उपयोगकर्ताओं के लिए कॉल करने वाले का नाम दिखाने की सेवा अनिवार्य कर दी है। दूरसंचार विभाग ने सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 1 नवंबर से सभी सेवा क्षेत्रों में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP सेवा शुरू करने का निर्देश दिया। इस सेवा के अंतर्गत कॉल करने वाले दूरसंचार सेवा प्रदाता के ग्राहक डेटाबेस में दर्ज नाम कॉल प्राप्त करने वाले के मोबाइल पर दिखाई देंगे। वहीं जिन अंतर्राष्ट्रीय नंबरों को फोन में सेव नहीं किया गया है उनसे आने वाली कॉल पर इंटरनेशनल कॉल लिखा दिखाई देगा। दूरसंचार विभाग ने बताया कि सेवा प्रदाता 4G और इससे आगे के वायरलेस नेटवर्क पर इस सेवा का परीक्षण कर चुके हैं। विभाग ने कहा कि 2G और 3G तकनीक वाले वायरलेस नेटवर्क तथा सार्वजनिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर CNAP सेवा शुरू करने के बारे में अलग से

0: सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर अदालत परिसर तक मार्च निकालने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने टिप्पणी की है कि कोई भी न्यायपालिका पर दबाव नहीं बना सकता। न्यायालय ने SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जाने और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राहुल गांधी तथा अन्य विपक्षी नेताओं की अलग याचिका पर निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी से भी जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस याचिका को पहले से लंबित मामलों के साथ संलग्न किया जाएगा। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से संबंधित अन्य याचिकाओं पर भी केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किए हैं। ये सुनवाई के इस्तीफे की मांग के बीच हुई है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने सोमवार को अपनी याचिका दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक मार्च निकाला था। न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से भी SIR से कथित नाम हटाने पर जवाब मांगा है। सरकार ने कहा है कि शुल्क संबंधी बाधाओं के बावजूद इस वर्ष अप्रैल से सितंबर के दौरान अमरीका को भारत का वस्तु निर्यात बढ़कर करीब 51 अरब डॉलर हो गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि में ये निर्यात 45 अरब 73 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रस्तावित भारत अमरीका व्यापार समझौते पर बातचीत सही दिशा में बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, इंजीनियरिंग वस्तुओं, रसायनों और कृषि उत्पादों के अधिक निर्यात से इस वृद्धि को समर्थन मिला है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश के युवाओं से नई तकनीक अपनाने, कौशल बढ़ाने और 2047 तक विकसित भारत बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि अमरीका के साथ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने और कानूनी मसौदा तैयार करने का काम जारी है।
1: न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते 20 अक्टूबर को यानी दशहरे के दिन से लागू हो जाएगा। वहीं 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता फरवरी या मार्च 2027 तक लागू होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय रणनीतिक व्यापार कमान केंद्र का शुभारंभ किया। यह केंद्र भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी, विश्लेषण और प्रबंधन मजबूत करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस केंद्र को वरिष्ठ नीति निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों को भारत के व्यापार प्रदर्शन, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं, नियामक मंजूरियों, आवेदनों के निपटारे और अन्य कामकाज की एकीकृत जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। जन सेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण के साथ सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम बताएंगे कि गिव इट अप अभियान जैसी पहलों के माध्यम से
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में गिव इट अप अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत लोगों से स्वेच्छा से LPG गैस सब्सिडी छोड़ने की अपील की गई थी। इस अभियान के तहत 1,13,00,000 से अधिक LPG उपभोक्ताओं ने अपनी गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ दी। इससे हुई बचत से गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। इस योजना से खास तौर पर ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ, जो पहले खाना पकाने देश भर में गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को अब तक 10,56,00,000 से अधिक मुफ्त LPG कनेक्शन दिए हैं। वर्ष 2015 में दिल्ली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गिव इट अप अभियान में लोगों

0: को एकजुट होकर गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया।
1: We introduce the Give It Up campaign seeking the cooperation of the public in voluntary giving of cooking gas subsidy. We promise that for every connection given up, one poor family currently without gas would be given a connection. This will enable us to liberate many poor women from the health hazard of living firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
0: उत्तर प्रदेश की रहने वाली संजू देवी ने बताया कि गैस चूल्हे से खाना बनाना काफी आसान हो गया है और उन्हें अब खाना बनाते समय धुएं का सामना भी नहीं करना पड़ता।
2: पहले जब चूल्हे पे खाना बनाया करती थी मैं तो मेरे धुएं से चेहरे से एलर्जी हो जाती थी। अब मुझे इतनी सुविधाएं मिल गई हैं कि अब आराम से खाना बना लेती। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी।
0: गिव इट अप अभियान ने लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा दिया है, साथ ही हर परिवार तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने के सरकार के प्रयासों को मजबूती दी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। नई दिल्ली में आज वर्ष 2026 के एशियाई खेलों में भारत तिरंगे का मान बढ़ाया है। उन्होंने क्या कुछ हासिल किया जा सकता है।
3: हमारी हॉकी की महिला और पुरुष टीम, महिला हॉकी टीम अपने को गोल लाकर 44 साल गेट में हमारे दोनों टीम परमेश्वर शूटिंग में शानदार प्रदर्शन 1982 के बाद मैराथन में भारत को मिली सफलता ये वाकई बहुत सुखद है।
4: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1534

0: पैसे बंद हुआ है।
1: शिमला से हमारे संवाददाता ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी और निचले तथा मैदानी इलाकों में रुक रुक कर वर्षा हो रही है।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और कुल्लू के रोहतांग दर्रे सहित ऊंची चोटियों पर आज सुबह से ही रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। वहीं कांगड़ा, मंडी, चंबा और शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों में अब यातायात सुबह 6 बजे से 5:30 बजे तक ही चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने पर्यटकों व स्थानीय लोगों को रोहतांग दर्रे पर जाने से पहले ताज़ा आधिकारिक निर्देशों की जानकारी लेने को कहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के 4 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अंधड़, आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: मौसम विभाग ने कल कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,300 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। कहा, केंद्र शासित प्रदेश का विकास केंद्र की प्राथमिकता। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR के विरोध में न्यायालय परिसर तक मार्च को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और के मामले में निर्वाचन आयोग से भी जवाब मांगा। रक्षा मंत्रालय ने 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने 1 नवंबर से मोबाइल उपयोगकर्ताओं के लिए फोन करने वाले का नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से बातचीत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ।